0: पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
1: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

0: देंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
5: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shondipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
4: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland today. Our correspondent reports that the 3-day session being organized by the UNCTAD, United Nations Trade and Development, will continue till Wednesday.
6: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. The Intergovernmental Group of Experts is the principal intergovernmental platform for cooperation and dialogue on consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs, Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the three-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
4: India will host a two-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship, beginning today in Kochi, Kerala. Ministry of Women and Child Development said that senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Women Working Group meeting will provide an opportunity for member countries to deliberate and build consensus to advance women-led development. The BRICS Heads of Anti-Drug Agencies meeting will begin today in Guwahati, Assam. The two-day event is being organized by the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs. The meeting will bring together heads of anti-drug agencies and senior officials from BRICS member countries to strengthen cooperation against drug trafficking and substance abuse. A report.
7: The BRICS Head of Anti-Drug Agency meeting in Guwahati will focus on combating synthetic drugs and precursor diversion, strengthening intelligence sharing and operational coordination, and enhancing capacity building and institutional cooperation. Delegates will discuss emerging challenges such as new psychoactive substances, darknet-enabled trafficking, cryptocurrency-linked financial flows, and abuse use of precursor chemicals. India will also showcase its effort to combat drug abuse and trafficking, including the recently released vision document on Narcotic Control 2026-29. During the meeting, member countries will deliberate on strategies to address evolving drug-related threats and strengthening international cooperation. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. Earlier, the meeting was scheduled to take place at Maniram Chowani around 3 p.m., but now the venue has been changed and the meeting will be held at the premises of the Ram Temple. Our correspondent has the details.
8: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited income and expenditure statement, balance sheet and other financial documents for the financial year 2025-26. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
4: The nation pays homage to Bharatiya Jan Sangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Ministry of Culture in association with the West Bengal government will organize a program in Kolkata to mark the occasion. The program will be organized as part of the two-year official commemoration of the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, announced by the ministry last year. Union Home Minister Amit Shah will preside over the program along with Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. More from our correspondent.
9: Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata this afternoon to attend events of 125th birth anniversary celebrations of Shyama Prasad Mukherjee. He will head towards Eco Park in New Town. There, he will participate in the groundbreaking ceremony for the construction of a 125-foot statue of Shyama Prasad Mukherjee. Later in the afternoon, during the event at Mukherjee's ancestral residence in Bhavanipur, Amit Shah will pay tribute by garlanding his statue. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
4: Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, describing him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. In an article, the Prime Minister said Dr. Mukherjee's public life was defined by his unwavering commitment to the indivisibility of India. He said Dr. Mukherjee stood firm during partition to ensure that West Bengal remained an integral part of the country and later dedicated himself to the cause of Jammu and Kashmir. Mr. Modi said the revocation of Articles 370 and 35A in 2019 was the most fitting tribute to his martyrdom. The Prime Minister also noted Dr. Mukherjee's role as an independent India's first Minister for Industry and Supply, saying he laid the foundation of modern industrial India through initiatives such as the Damodar Valley Corporation and the Sindri Fertilizer Plant, while supporting handlooms, cottage industries and artisans. Incessant rain with gusty winds continue to lash Mumbai and coastal Maharashtra. A red alert has been issued for Raigarh district, where major rivers have crossed the danger level. Torrential rains have wreaked havoc in Raigarh and Ratnagiri districts. Building collapses have claimed many lives in Mumbai and Navi Mumbai. We have a report.
3: The IMD has issued an orange alert for Mumbai, Thane, Palghar, Ratnagiri and Sindhudurg for today, forecasting heavy rainfall accompanied by gusty winds. A red alert has been issued for Raigarh district, warning of extremely heavy rainfall. All government, municipal and private schools and colleges in all the coastal districts and Pune will remain closed today as a precautionary measure. Collapse of 2 to 3 houses in a 3-story kacha, that is makeshift or unauthorized chawl, in Mankurd area of Mumbai resulted in the death of a total of 6 people, including 5 children and 1 woman. Strong winds led to 142 incidents of trees or branches falling across Mumbai and claimed 2 lives. Heavy rains continued to wreak havoc in Thane and Palghar districts yesterday, claiming 2 lives and triggering multiple structural collapses. With Sangeeta Godbole's report, Komudi Parikh, Akashwani News, Delhi.
4: And in sports, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the 5-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup 2026 round of 16 last night. He finished his international career as the all-time leading scorer for Brazil. The 34-year-old forward brought the curtain down on his international career moments after Brazil's hopes of a 6th World Cup title were ended. His retirement brings to an end one of the most celebrated international careers in Brazilian football. In cricket, Australia defeated England by 7 wickets to lift the ICC Women's T20 World Cup at Lord's in London last night. Chasing a target of 151 runs set by England, Australia scored 153 for 3 in 17.1 overs. Beth Mooney was the highest scorer for Australia with 64 runs. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. In a bilingual live phone-in program, Public Speak at 9:30 tonight, we will bring an insightful discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology, with Gulshan Rai, cybersecurity expert. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskEIR. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
10: Thank you, Anuja. All the dailies have covered Prime Minister Narendra Modi's tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary. Quoting the Prime Minister, the Tribune, under the headline, "Mukherjee, a lamp that still burns bright," says, "The one ideal that defined Shyama Prasad Mukherjee's public life above all else was the indivisibility of India. The pioneer citing the PM's article writes, Dr. Shyama Mukherjee stands out for his humanitarian efforts, especially during the famine-struck Bengal in 1943, and how he stood firm during the upheaval of partition to ensure that West Bengal remained an integral part of India." A top front-page headline in the Indian Express states, "Armed forces seek larger retention of Agniveers after end of 4-year tenure with Navy, likely to seek 75% retention, Army and AIAF up to 50%. The Hindu reports government issues notice to Meta on child sexual abuse ads. Hindustan Times writes about the International Cricket Council meet discussing proposals for a structural overhauling of the sport, including shortening ODIs, introducing continental championships, a World Cup championship for T20s, and a fixed window for formats. The Times of India mentions about a survey's report which says childcare housework keeps 69% urban women out of labour force in India. And finally, the Pioneer mentions the passing away of the legendary Pandavani exponent Tijan Bhai, whose commanding voice became the global face of Chhattisgarh's folk tradition under the headline, "A voice that brought beam alive falls silent. Her legend lives forever." And with that, it's back to you, Anuja.
4: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's ninth session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host two-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting of its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after five-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
11: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में यूएनसीटीडी सीटीएडी के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये 4था दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं, तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामानिकार की एक रिपोर्ट।
12: उम्मीद है कि जनाब प्रावो सुबियांतो और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामे दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे, जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन, तजारत और सरमायाकारी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा, जिसमें मुल्क के बाली, मैदान, सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हजारों भारतीय शहरी और भारत नजाद लोग यकजा होंगे और अपने मादरे वतन से अपने राबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे। 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परम्बरन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
11: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का यह पहला दौरा होगा। सारिफिन उमूर खुराक और तकसीम आम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक बैन अल अक्वामी

0: करने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई, जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले यह मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी, लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब यह मीटिंग राम मंदिर के अहाते में मुनाकद होगी। तफसील हमारे नमनिगार से।
1: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट के अतिया बक्सों के जरिए मौसूल अतियात की गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है, और इखराजात के बारे में बयान, बैलेंस शीट और माली साल 2025-26 से मुतालिक दीगर माली दस्तावेजात की मंजूरी भी शामिल है। नोटिस में चेयरमैन की इजाजत से दीगर मामलों पर भी बातचीत की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है, जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे, जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नमानिकार से।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब शाह सबसे पहले न्यू टाउन के इको पार्क जाएंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनाब शाह भवानीपुर में वाकई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आबाई रिहायशगाह पर मुनदा तकरीब में उनके मुजस्मे पर गुलाह अकीदत पेश करेंगे। शाम के वक्त मरकजी वजीर दाखिला बीसवा बांग्ला मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने उन्हें जुरत, हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वजीर आजम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजू खिराज अकीदत है। मुंबई और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाकये में कई अफराद हलाक हो गए। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने रायगढ़ जिले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली जिलों और पुणे के तमाम सरकारी, म्यूनिसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्राजील के तजर्बेकार फुटबॉलर निमार जूनियर ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 34 साल निमार ने ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा बैन अल-अक़वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राजील की 6वीं मर्तबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त खत्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग हालांड ने

0: मैच के आखिरी लम्हात में दो गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए एक गोल जरूर किया, लेकिन वो शिकस्त का फर्क कम करने के सिवा कुछ न कर सके। नेमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राजील की फुटबॉल के एक शानदार बैन अलाक्वामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राजील के लिए यह मुसलसल सातवां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-2331-4444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289-094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में एलएनजी सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर तवानाई तजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है जिनेवा में मस्नूई ज़हानत AI से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क्यादत वजीर ममलकत बराए खारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म किस्मत कनेक्शन से अलका याग्निक और आतिफ असलम की आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म खट्टा मीठा का ये गाना। आवाज थी के और सुनिधि चौहान की। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म प्यारे मोहन से। इस गीत को गाया है उदित नारायण, शान और कृष्णा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स का अंतिम गीत है फिल्म दोस्ताना से, विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल और अमानत अली की आवाज़ों में।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: स्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने अधिकारियों और मेला समिति के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कावड़ मार्ग पर सड़क, पेयजल, प्रकाश, सफाई, चिकित्सा सुरक्षा और मोबाइल शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कावड़ मार्ग की झाड़ियों की कटाई, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग और विद्युत पोलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सूचना विभाग की ओर से कावड़ यात्रा ऐप तैयार किया जाएगा, जिसमें QR कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेला, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। मेला परिसर और कावड़ मार्ग पर CCTV कैमरे, अग्निशमन उपकरण, एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल, निशुल्क ई रिक्शा और व्हील चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। डीएम ने अधिकारियों से श्रावण मास की इस कावड़ यात्रा और मेले की जीरो वेस्ट महोत्सव के रूप में बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। दानवीर भामाशाम की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम अस्मिता लाल ने की। इस अवसर पर ADM एवं संयुक्त आयुक्त राज्यकर सहित राज्यकर विभाग के अधिकारी, व्यापारी, उद्यमी और अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जनपद में सर्वाधिक जमा कर करने वाली 5 प्रमुख फर्मों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। डीएम ने सम्मानित व्यापारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईमानदारी से कर अदा करने वाले व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान राज्य कर विभाग के अधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जनपद भर में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक संस्थानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण में कई संस्थान बिना अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC के संचालित पाए गए। कई स्थानों पर आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और फायर ब्रिगेड वाहनों के पहुंच मार्ग जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं मिली। प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ौद शहर की खतरी गढ़ी समेत जनपद भर में 65 से ज्यादा स्थानों पर फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों से अग्निशमन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। सरूपुर गांव में उत्तर प्रदेश स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पिछड़ी जातियों की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ गांव में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने आयोग को बताया कि गांव में पिछड़ी जाति के कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अभी भी अनेक लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय निकायों में उनके समुचित प्रतिनिधित्व और आरक्षण के संबंध में उचित संस्तुतियां शासन को भेजी जा सके। बागपत बड़ौद खेगड़ा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी भवन या कॉलोनी का विकास शुरू करने से पहले मानचित्र, लेआउट और अन्य आवश्यक अनुमतियां लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आम नागरिकों और भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता का सत्यापन करें। सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री से सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन का विस्तार कराने की मांग की थी। शहरी विकास राज्य मंत्री तोखान साहू ने उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव UP सरकार को भेज दिया है। इसकी जानकारी शहरी विकास राज्य मंत्री ने सांसद को पत्र भेज कर दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के साकार होने पर बागपत एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
2: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
3: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट में बीबीजी रामजी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं जन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों, लाभों और सहभागिता आधारित विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ी करण हेतु विभिन्न विकास कार्य गतिमान हैं। दिनांक 1 जुलाई 2026 तक जनपद की 35 ग्राम पंचायतों में मास्टर रोल निर्गत किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 11 जल संचयन कार्य, तालाब, चेक डैम तथा 24 अन्य विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने जानकारी दी कि जनपद चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु 11.77 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इको टूरिज्म पर आधारित श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क का काम चल रहा है। परियोजना के अंतर्गत इको लॉज, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, नेचर ट्रेल, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, एमपी थिएटर, एडवेंचर गेम्स, सोलर लाइटिंग, पार्किंग, जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना जनपद चित्रकूट को एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करने के साथ स्थानीय रोजगार, पर्यटन गतिविधियों एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।
4: गणेश पार्क के पास टूरिज्म विभाग

0: के माध्यम से श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है। इसकी धनराशि लगभग 12 करोड़ की धनराशि से ये प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। और इस पार्क का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि वहाँ पे बैठने के लिए एक अच्छा एम्फी थिएटर है लगभग 200 की क्षमता का, साथ साथ बहुत अच्छे श्री राम और रामायण से जुड़े जो हमारे म्यूरल्स हैं उसकी कहानी पूरी उसमें उकेरी जाएगी। वहाँ पे सभी लोगों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, एक अच्छा हॉर्टिकल्चर का जो पार्क है वो विकसित और पूरे पाथवे के साथ लगभग 70% कार्य इसका पूरा हो चुका है। अगले 3 से 4 महीनों में इसका लोकार्पण जो है वो कर लिया जाएगा।
1: तहसील मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1984 में निर्मित बरदहा बांध के पुनरुद्धार कार्य कराया जा रहा है। साथ ही 11.40 किलोमीटर लंबी बरदहा मुख्य नहर एवं उससे संबंधित 14 महत्वपूर्ण संरचनाओं के पुनरुद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत आगामी मानसून में नहर संचालन के माध्यम से कृषकों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा छेरिया बंदी बरा माफी टैंक एवं जरिया टैंक को भी जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
0: लगभग 12 से 14 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया है और इससे सभी किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और जितनी फसल वर्तमान में जो लेते थे उससे 2 या 3 गुना उससे ज्यादा फसल जो है वो वहाँ पर ले पाएंगे। बरदहा डैम को चौड़ा भी किया जा रहा है, वहाँ पे सारे जो होल्स हैं उनको भी भरा गया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रदेश में लागू नई टेक होम राशन व्यवस्था के अंतर्गत जनपद चितपुर में आंगनवाड़ी लाभार्थी हेतु नई पोषाहार रेसिपी के अनुसार वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जनपद की 4 विकास परियोजनाओं के अंतर्गत चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती एवं धात्री माताओं शिशुओं तथा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित श्रेणियों में पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र ही जनपद के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। चितकूट जिले में मानसून सत्र के मद्देनजर बालू और मोरम के खनन पर 3 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चंद्रशेखर ने जनपद के संचालित सभी बालू एवं मोरम खनन पट्टा धारकों तथा अनुज्ञा धारकों को निर्देश जारी करते हुए 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक नदी तल से उप खनिजों के खनन और परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने को कहा है। यह प्रतिबंध भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन और सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 के तहत लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। चित्रकूट जिले के पशुपालकों के लिए मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर 11.80 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान 2 चरणों में दिया जाएगा। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि 10 गांवों की डेयरी इकाई की कुल अनुमानित लागत 23.60 लाख रुपए है। इसमें लाभार्थी को 15% अंशदान स्वयं करना होगा जबकि 35% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत 50% लाभ महिला पशुपालकों और दूध उत्पादकों को दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग।

0: ये प्रेरक प्रसंग महात्मा गांधी के जीवन से है। राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल की घटना है। स्कूल का मुआयना करने के लिए लोग आए हुए थे और उनमें प्रमुख थे शिक्षा विभाग के तत्कालीन इंस्पेक्टर जाइल्स। नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को उन्होंने इंगला के रूप में अंग्रेजी के 5 शब्द बोले। एक शब्द था कैटल। कक्षा का एक विद्यार्थी मोहनदास इस शब्द की हिज्जे ठीक से नहीं लिख सका। मास्टर साहब ने उसकी कॉपी देखी और उसे अपने बूट की ठोकर से इशारा किया कि वो अगले विद्यार्थी की कॉपी से नकल करके स्पेलिंग ठीक लिख ले। पर मोहनदास ने ऐसा नहीं किया। अन्य सभी विद्यार्थियों के सभी शब्द सही थे। अकेले मोहनदास इस परीक्षा में 100% रिजल्ट न दिखा सके। इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद मास्टर ने कहा, तू बड़ा बुद्धू है मोहनदास, मैंने तो तुझे इशारा किया था, पर तूने आगे वाले लड़के की कॉपी से नकल तक नहीं की। अकल नहीं है तुझे, मोहनदास ने दृढ़ता से कहा। मास्टर साहब, ऐसा करना धोखा देने और चोरी करने के बराबर है। यह मैं हरगिज नहीं कर सकता। यह घटना सिद्ध करती है कि बापू वास्तव में सत्य के अनुयायी थे। उनकी नजर में सत्य ही ईश्वर था और इसी साधना में वो जीवन भर लगे रहे। अपने जीवन काल में ही पौराणिक पुरुष बन गए थे बापू। उनके विद्यार्थी जीवन की एक और घटना है। उन्होंने बचपन में 2 नाटक देखे, सत्य हरिश्चंद्र और श्यामा कुमार। बड़ा असर हुआ उन पर। सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर बापू ने जीवन भर सत्य बोलने का व्रत लिया और श्यामा कुमार नाटक देखकर मातृ पितृ भक्ति का। एक बार उनके स्कूल में खेलकूद जरूरी कर दिया गया। उनकी रुचि नहीं थी खेलकूद में, फिर भी नियम पालन के लिए वो समय से स्कूल पहुंचने की कोशिश करते। बापू एक दिन अपने पिताजी की सेवा में लगे हुए थे। आसमान में बादल भी छाए हुए थे। उन्हें समय का अंदाजा नहीं हो पाया। वो स्कूल पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी, सभी चले गए थे। अगले दिन हेडमास्टर ने उन्हें बुलाकर पूछा, कल खेल में क्यों नहीं आए? मैं तो आया था, पर वहां कोई नहीं था। तुम ठीक समय पर क्यों नहीं आए? मेरे पास घड़ी नहीं थी, आसमान में बादल भी थे, इस नाते मुझे समय का ठीक से ज्ञान नहीं हो सका, बापू ने सफाई दी। लेकिन हेडमास्टर को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने समझा कि यह लड़का झूठ बोल रहा है। मास्टर ने उस पर 2 आने का जुर्माना कर दिया। बापू रोने लगे। वो जुर्माने के लिए नहीं रो रहे थे, दुख तो उन्हें इस बात का था कि उन्हें झूठा समझा गया है। हेडमास्टर से वो कहते रहे कि मैं झूठा नहीं हूं, फिर भी हेडमास्टर ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन बापू इससे निराश नहीं हुए। उन्होंने उसी समय अपने मन में निश्चय किया कि जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। अपने अंदर एक ऐसा आत्मबल पैदा करेंगे कि लोग भी उसे सच ही माने। पुणे अस्पताल में महात्मा गांधी का ऑपरेशन हुआ था। स्वर्गीय मोतीलाल जी उनसे मिलने गए और बातों बातों में अपने लाडले बेटे की करतूतों का बयान करने लगे। जवाहरलाल से 1-2 बातें आपको कहनी ही होगी। एक तो यह कि वो चना चबेना खा लेता है, भरी गर्मी में 3rd क्लास में सफर करता है। ये हमसे कैसे देखा और सहा जा सकता है? त्याग और कष्ट को मैं पसंद करता हूं, पर इस तरह की चीज तो जहालत है। दूसरे, उसके बंदरपन की एक हरकत सुनिए, माघ मेले पर संगम के।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:30 होने को हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
2: प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज सुनिए आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश।

0: अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर कर लें कि आप म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो किस चीज के लिए लगा रहे हैं। आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ खरीदना है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और सिर्फ हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्ट ना करें।
1: तो बहुत उम्दा बात कही कि म्यूचुअल फंड तवील मुद्दत में बेहतर मुनाफे का जरिया बन सकता है जैसा भी आपने कहा, लेकिन इसमें मार्केट का खतरा लगा रहता है, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। सरमायाकारी से पहले अपने माली मकसद, खतरा बर्दाश्त करने की सलाहियत और माहिरीन के मशवरे को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, तभी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाएं। बहुत उम्दा बात आपने कही। अभी म्यूचुअल फंड के साथ साथ आपने, क्योंकि आप सीए भी हैं, तो आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड का बड़ा दौर है। हर शख्स जो है क्रेडिट कार्ड से उधार पैसे ले रहा है, कर्ज ले रहा है। एक सवाल ये करेंगे कि कर्ज लेकर जरूरियात या ख्वाहिशात पूरी करना किस हद तक ये सही है और बाद में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: मेरे हिसाब से कर्ज तभी लेना चाहिए जब उसकी वाकई में आपको जरूरत हो और उसका कोई मकसद हो,
1: जी,
0: जैसे तालीम, घर खरीदना या कारोबार शुरू करना या बढ़ाना। ऐसे कर्ज को जिम्मेदाराना फैसला माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ दिखावा, महंगी चीजें खरीदना या गैर जरूरी ख्वाहिशें को पूरी करने के लिए अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इससे आगे चलकर बोझ बढ़ सकता है। कर्ज लेने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि उसकी किश्त यानी ईएमआई हम अपनी आमदनी में से आसानी से दे सकते हैं कि नहीं। तो कर्ज लेने से पहले आप ये जरूर देखें कि आप किस मकसद के लिए उसे ले रहे हैं।
1: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जरूरियात के तहत कर्ज लिया जा सकता है और लेना मुनासिब हो सकता है, लेकिन ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर्ज लेना दानिशमंदी नहीं है, अकलमंदी नहीं है। इससे कर्ज का बोझ, सूद की अदायगी और माली मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है, जैसा कि आपने भी कहा, तो इससे बचना चाहिए। एक और सवाल यहाँ पर करेंगे, माली शमूलियत के तहत बैंक खाते, डिजिटल अदायगी, बीमा और पेंशन जैसी सहूलियात आम आदमी की माशी सलामती यानी जिंदगी में किस हद तक मामिन साबित हो सकते हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: माली शमूलियत का सीधा मतलब है कि हर इंसान तक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच हो।
1: जी।
0: जब किसी के पास बैंक अकाउंट होता है तो उसका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहता है और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधा उनके बैंक अकाउंट में आ सकता है। इसके अलावा बैंक से जुड़ने पर लोगों में बचत की आदत बढ़ती है और जरूरत पड़ने पर आसानी से कर्ज या दूसरी सुविधाओं का फायदा भी मिल सकता है।
1: तो बहुत उम्दा बात कही कि बैंक खाते, डिजिटल अदायगी, बीमा और पेंशन जैसी सहूलियात माली तहफ्फुज फराहम करते हैं, बचत को फरोग देते हैं और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के फवाइद बराए रास्त अवामुन नास तक पहुंचाने में मददगार भी साबित होते हैं, इसलिए इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आखिर में हमारे सामीन को आज के इस प्रोग्राम के तहत आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ताकि वो अपनी आमदनी, खर्च, बचत और सरकारी स्कीमों से फायदा उठाते हुए एक मजबूत और मुतवाजिन मुआशी जिंदगी गुजार सके।
0: मैं अपने सभी लिसनर्स से बस इतना कहना चाहूंगी कि आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा, पैसों का सही इस्तेमाल और थोड़ी बचत करना बहुत जरूरी है। सोच समझकर खर्च करें, जितना हो सके बचत की आदत डालें और सरकार की फायदेमंद स्कीम्स की जानकारी लेकर उन सबका लाभ जरूर उठाएं। याद रखिए, आज की छोटी छोटी आपकी बचत सही फाइनेंशियल डिसीजन कल को सुरक्षित बनाता है। बचत की आदत हमें घर में शुरू से डालनी चाहिए ताकि वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। आजकल कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि SIP हो गया, बैंक अकाउंट खुलवाना हो गया। बैंक अकाउंट जरूर खुलवाएं, उससे आपकी बचत की आदत बनती है। हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखें अपनी आमदनी से ताकि जरूरत आने पर उसको इस्तेमाल किया जा सके।
1: तो बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया, बहुत ही उम्दा आपने मैसेज दिया है कि अपनी आमदनी के मुताबिक खर्च करें, बाकायदा बचत करें, सोच समझ कर सरमायाकारी करें, सरकारी स्कीमों से फायदा उठाएं और माली नज्म व जब्त को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही माशी खुशहाली और पायदार तरक्की का रास्ता है। सामीन, आज की संजीदा और बामकसद गुफ्तगू से ये हकीकत वाजे होकर सामने आती है कि माशी इस्तेहकाम का राज ज्यादा आमदनी में नहीं بلکہ آمدنی اور اخراجات کے درمیان مناسب توازن قائم رکھنے میں ہے۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو ترجیح دیں، فضول خرچی سے بچیں، بچت کی عادت اپنائیں اور مالی منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی گزاریں تو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خاندان کی معاشی زندگی کو بھی زیادہ محفوظ اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اور اب ہم اپنے مہمان خصوصی سی اے محترمہ اروبا ممتاز صاحبہ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی اچھی اور عمدہ معلومات فراہم کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:50 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। आज कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शहनाई वादन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। अप्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनना चाहा है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर सिंह संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। मालेगांव से दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सनिका घयाल और गजानन घयाल। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता, संजना, गणेश और कार्तिक खड़से। नाज मंजिल महसोल सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। रामपुर लिसनर्स क्लब नालापार से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद, जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हमाद। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी काव्या और भाई सुच्चा पाठक। और चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत फिल्म बेताब से।

शुदाव कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म एक दूजे के लिए से, और इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवीन राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, सुभाष चंद्र, बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल और ज्योति। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित, समर राज वर्मा, बेबी अरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पोंड्रा छत्तीसगढ़ से दिलीप कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। किदवई नगर एटा से जमील अख्तर, रेशमा यास्मीन, अदीबा जमील, बुशरा और असरा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाद अंसारी, वसीम अकरम, सोनम, मियाँ कुरैशी और असलम सैफी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है फिल्म एक दूजे के लिए से गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म लावारिस से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, और इस गीत को सुनना चाहा है जिला अमरोहा नई बस्ती पति खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सलीम, फहीम यासीन और सुदेश चौहान। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, शेरकोट जिला बिजनौर से, गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबिदा सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी बी के, कैलाश, रामा और आर एस पुरी, ग्राम घाटमपुर से रामभजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव सैनी, संजय सैनी, मुकेश, आशा, अंशिका, पूजा सैनी और राम प्रकाश सैनी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है फिल्म लावारिस का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 1960 के दशक के कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुनहरा दौर का पहला गीत है फिल्म आस का पंछी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुनहरा दौर में आज आप सुन रहे हैं 1960 के दशक के कुछ सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म बम्बई का बापू से, आवाजें हैं रफी और आशा भोसले की।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुनहरा दौर में अगला गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म है तीसरी मंजिल।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुनहरा दौर का अंतिम गीत है फिल्म राजकुमार से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरा दौर अब यहीं संपन्न होता है। आज कार्यक्रम में आपने सुने 1960 के दशक के कुछ सदाबहार नगमे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत नाटक ये धुआं सा कहां से उठता है। प्रस्तुति है असीम सक्सेना की और लेखन है नफीस अहमद सिद्दीकी का।

0: कौन आया होगा? ओह, 9 बज गए। आदिल होगा। अच्छा हुआ तुम आ गए आदिल, बड़ी तन्हाई महसूस कर रही थी। ये क्या लाए हो?
1: अरे भाई, मैं खुद नहीं लाया, इसी ने मुझे आवाज दी कि मियां खाली हाथ जा रहे हो, हमें भी साथ ले लो। अब इसकी इल्तिजा को भला मैं कैसे ठुकरा सकता था। मैंने कहा चल भाई तू भी साथ चल।
0: आखिर है क्या?
1: चंगेज खां की औलाद है।
0: ओ, चिकन चंगेजी है।
1: पता नहीं क्यों सबा, मेरा दिल कह रहा था कि आज तुमने खाना नहीं बनाया होगा।
0: हाँ, बनाया तो नहीं है, अकेली जान है, अक्सर रात को नहीं बनाती हूँ, सो जाती हूँ आराम से, जल्दी आ गई थी।
1: समझा नहीं, जल्दी आ गई थी?
0: हीरोइन साहिबा की तबीयत खराब थी, बुखार आ गया है उन्हें। प्रोड्यूसर कहने लगे अगला सीन शूट करते हैं। आई वॉज नॉट प्रिपेयर, मैंने पैकअप कर दिया। दिल नहीं चाहा काम करने को, पता नहीं क्यों। लंच करके आ गई थी, सोचा तो मैं फोन करूं। फिर सोचा पता नहीं किस सिचुएशन में हो तुम, अचानक बुलाने पर क्या सोचो। लेकिन सुनते हैं दिल को दिल से राह होती है। कैसे हो गया तुम्हें मेरी बेचैनी का एहसास?
1: काले कौवे ने खबर दी थी कि तुम उदास हो।
0: रियली आई एम सीरियस, मजाक ना उड़ाओ।
1: अच्छा बाबा, मैं किचन में जा रहा हूं और खाना।
0: ओह नो, प्लीज बैठ जाओ, खा लेंगे खाना। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है?
1: अरे नहीं बाबा, मेरा कौन इंतजार कर रहा है, बस एक कमरा है, लॉक करके आया हूं, कभी भी चला जाऊंगा।
0: नहीं, आज नहीं जाओगे, यही ठहर जाओ मेरे पास।
1: ये आज क्या हो गया है सभा तुम्हें, ऐसी बात तो तुमने पहले कभी नहीं कही।
0: तो क्या हुआ, आज कह रही हूं, मुझे अपने ही वजूद से डर लग रहा है आज। प्लीज आज ना जाओ।
1: अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा। खुश?
0: बहुत खुश, थैंक यू। भूख तो नहीं लग रही है?
1: नहीं नहीं, अभी तो नहीं।
0: ओके, पहले कॉफी पीते हैं फिर खाएंगे खाना। अभी तो रात शुरू हुई है, अभी आई मैं। यू एंजॉय म्यूजिक।
1: ओके।
0: बहुत प्यारी गजल है मेहंदी हसन साहब की।

0: यार क्या हो गया है इसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह भाई वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है।
1: हाँ मुझे भी कॉफी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है।
0: हाँ लगती तो अच्छी है, लेकिन
1: लेकिन क्या क्या कहना चाहते हो?
0: कितनी देर के लिए? बस जब तक कप में कॉफी है तब तक।
1: नहीं, जब तक कॉफी का सुरूर है अपने अंदर से खुशबू आती रहती है। इस तरह क्या देख रहे हो मेरी आंखों में, बोलो क्या देख रहे हो? पढ़ना जानते हो आंखों की भाषा? मोनालिसा का पोर्ट्रेट देखा है तुमने? उसकी मुस्कुराहट उसके अंग अंग से झलकती है, सिर्फ आंखों और होठों से नहीं।
0: डोंट बी सो फिलोसफिकल।
1: मैं बताना चाह रही हूं, मर्द आंखों में झांक कर कितनी ही गहराई में उतर जाए नहीं समझ पाएगा औरत के जज्बात को।
0: हाँ, सो तो है।
1: यूनिवर्सिटी में पेंटिंग पढ़ाते वक्त प्रोफेसर मुजीब ने कहा था, दुनिया की कोई भाषा मोनालिसा की स्माइल को बयान नहीं कर पाई है एक्सेप्ट फारसी भाषा के। इसे कहते हैं मुस्कुराहट ज़ेर-ए-लब। सिर्फ होठ मुस्कुराते हैं और ये मुस्कुराहट औरत के अंग अंग से फूट पड़ती है। और ये कैफियत उस वक्त होती है जब औरत प्रेग्नेंट होती है। कहां की बातें लेकर बैठ गई मैं भी, मैं तो इस हालात से गुजरी भी नहीं। यूं ही याद आ गई थी प्रोफेसर मुजीब की बात।
0: या अल्लाह, कोई मर्द औरत को समझ नहीं सकता।
1: समझना ही नहीं चाहता, उसके जिस्म की हद तक ही पहुंचने की ख्वाहिश होती है। शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसके जज्बात और एहसासात को तो जानना ही नहीं चाहता है मर्द। मैं भी कहां की बातें लेकर बैठ गई, दोस्त हो और हमदर्द भी, इसलिए कह दी दिल की बात, दिल हल्का हो गया। लेकिन तुम्हारे जहन पर एक और बोझ डाल दिया मैंने।
0: कोई बात नहीं, दुनिया तो इसी तरह चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। पहले औरत को महबूबा बनाता है मर्द, नाज नखरे बर्दाश्त करता है, और शादी के बाद वो सिर्फ बीबी बनकर रह जाती है।
1: बीबी नहीं, फीडिंग बॉटल। खुद गर्म होती है, खुद भरती है, और जिसे भूखा देखती है उसके मुंह में लग जाती है। सबकी सुनना पड़ती है और सबकी सहना पड़ती है। बोर कर दिया यार मैंने तुम्हें। पर दिल की बात तो सिर्फ दोस्त से ही कही जा सकती है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन आदिल, दोस्त दोस्त बनकर रहता कब है? शौहर बनना चाहता है और शौहर बनकर हाकिम बन जाता है। और अगर दोस्त बनकर रहना चाहे तो समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं करता।
0: मजबूर हैं हम सामाजिक बंधनों में बंधने पर। तुम अकेली रहती हो, रात है, मैं साथ हूं तुम्हारे, तुम्हें दोस्त की मदद की जरूरत है। देखने वाली आंखें दोस्ती के पाकीजा रिश्ते पर इल्जाम लगा देंगी। इस समय एक शेर याद आ रहा है मुझे।
1: सुनाओ।
0: देखती रहती हैं आंखें कौन है किस रंग में, सोचती रहती है दुनिया किसको रुसवा कीजिए।
1: वाह वाह वाह।
0: समाज में रहना है तो समाज की सहना भी है, और रिश्तों में बंधना सामाजिक जरूरत भी है। आज भी जी रहे हैं बहुत से लोग तन्हा, लेकिन मैं नहीं जी सकता।
1: सो लेट अस ड्रॉप दिस टॉपिक, जो होगा देखा जाएगा। तन्हा जीना पड़ा तो जी लेंगे।
0: ये बात फरहान ने सुन ली तो क्या सोचेगा?
1: क्या सोचेगा वो, ये जानकर कि सारी रात तुमने मेरे साथ मेरा दर्द बांटने में गुजारी है दोस्त बनकर। वो तो मेरे पास दुबई से आ नहीं सकता, मैं उसकी बीवी तो नहीं। कहता है मुझसे प्यार करता है, दौलत कमाने गया है, दौलतमंद हो जाएगा, तो क्या सोचेगा? आई डोंट केयर, उसके पास पैसे नहीं थे, मैंने दे दिए, चला गया। कब लौट कर आएगा? आएगा भी या नहीं? आई एम नॉट श्योर। भूख लग रही होगी तुम्हें?
0: हाँ बाबा, लग तो रही है, खा लेते हैं, अभी तो रात बाकी है।
1: चलो, खाना भी तो गर्म करना है। ओ माय गॉड, सुबह के 4 बज गए।
0: जी जनाब।
1: बातों में पता ही नहीं चला। हेलो वरान, हाउ आर यू? मिल गई आपको बात करने की फुर्सत?
0: साबा, तुम बात करो, मैं खाना गर्म करता हूँ।
1: ओके ओके।
2: कौन है तुम्हारे पास?
1: आदिल है।
2: इतनी रात को?
1: हाँ, घबराहट हो रही थी, रोक लिया है मैंने आदिल को।
2: ओके, यू एंजॉय विद आदिल, बाय।
3: अरे भाई, मैं भी बात करूंगा साबा।
1: खाना गर्म करो, वो भाग गया।
0: भाग गया? क्यों भाग गया?
1: क्यों भाग गया? एक ही मर्द तो रह सकता है एक औरत के पास।
0: ये क्या कह रही हो तुम?
1: हाँ, सच ही तो कह रही हूँ, वो ऐसा ही समझता है, इडियट बीवी समझ रहा है मुझे अपनी। आदिल, सब मर्द एक जैसे होते हैं, सॉरी एक्सेप्ट यू, जल जाते हैं दूसरे मर्द का नाम सुनकर।
0: मैं भी तो मर्द हूँ सबा।
1: श्योर, मर्द हो तुम, बट आशिक नहीं मेरे, दोस्त हो। एतबार किया जा सकता है दोस्तों पर, आशिक पर नहीं।
0: ये क्या किसी स्क्रिप्ट के डायलॉग बोल रही हो तुम?
1: यू नो, आजकल जिस सीरियल को डायरेक्ट कर रही हूँ, एक ऐसे ही आशिक का करेक्टर है। पहले खाना खा ले, सो जाएं, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे इस मैटर को।
0: ओके।
1: आई मीन फरहान को। बहुत दिनों से महसूस कर रही हूं मैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। कौन आ गया इस वक्त?
2: पता नहीं, देखता हूं। आदिल, तुम? अरे, यहां दुबई में अचानक?
0: मजा आता है भाई सरप्राइज देने में, अंदर आने को नहीं कहोगे?
2: अंदर? हाँ, अरे अंदर क्यों नहीं, आओ ना आओ।
0: अरे यार, इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या कोई आफत आ गई है?
2: घबरा? नहीं तो, अरे मैं कब घबरा हूँ, अरे मैं कब घबरा रहा हूँ तुझे अचानक देखकर।
4: फरहान कौन है?
0: फरहान, अंदर कोई मेहमान है क्या?
2: अरे नहीं, शमा है शमा।
4: फरहान कौन है?
2: तुम अंदर आओ ना।
4: हेलो, आई एम शमा।
0: हेलो, आई एम आदिल।
2: दोस्त है मेरा, बेतकल्लुफ, अरे बिना बताए ही यूं ही चला आया, सरप्राइज देना चाहता था।
4: ओके ओके, अच्छा लगा आपसे अचानक मिलकर। आप चेंज कर लीजिए, चाय या कॉफी?
0: अरे भाई, जो भी आपकी पसंद हो बना दीजिए।
4: फरहान को कॉफी पसंद है।
0: ओके, तो कॉफी ही बना लीजिए। हाँ तो फरहान मियाँ, शमा आपकी दोस्त हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, गुड लक फरहान।
2: तुमने ये नहीं पूछा शमा है कौन?
0: बता जो दिया तुमने, दोस्त है तुम्हारी, और दोस्ती से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं होता, पहले तो सब दोस्त ही होते हैं ना।
2: सब अभी यही कह रही थी, तुम दोस्त हो उसके।
0: बिल्कुल सच कह रही थी, मैं दोस्त हूं उसका, और दोस्ती निभा भी रहा हूं। लेकिन तुमने तो सबा के बारे में कुछ पूछा भी नहीं, फिर भी तुम्हारे लबों पर सबा का नाम आ ही गया।
2: क्या पूछूं, तुम हो जो उसके साथ।
0: आई सी, तो ये बात है कि मैं उसके साथ हूं, इसलिए तुमने उससे दूरी बना ली। देखो फरहान, जब तक मैं जिंदा हूं उसके साथ दोस्त बनकर रहूंगा, लेकिन तुम्हारा तो सबा से प्यार का रिश्ता है ना, तुमने क्यों बुला दिया उसको? कितनी मदद की है उसने तुम्हारी, और तुमने सब कुछ भुला दिया।
2: क्या यही सब कुछ कहने के लिए आए हो यहां?
0: नहीं, आया तो ऑफिशियल टूर पर था। तुम ही मुझसे सभा के बारे में बातें किया करते थे, साथ रहते थे, खाते पीते थे, इसलिए सभा का जिक्र छोड़ दिया मैंने। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, और सच तो यह है कि मुझे खुशी भी होगी तुम और सभा हमेशा साथ रहो।
2: क्या तुम्हें सभा ने भेजा है ये सब कुछ कहने के लिए?
0: नहीं भाई, कहा ना मैंने, मैं ऑफिशियल विजिट पर आया हूं, दोस्ती के नाते तुम्हारे घर आ गया। और भी लोग आए हैं मेरे साथ, सब होटल में ठहरे हैं। और वैसे भी ये तुम्हारा सभा का पर्सनल मैटर है, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं कल होटल में चला जाऊंगा, प्लीज डोंट माइंड। हेलो
4: हेलो आदिल साहब, आइए बैठिए बैठिए। बहुत खुशी हुई आदिल साहब, आपने मेरा दावतनामा एक्सेप्ट कर लिया। मुझे महसूस हुआ आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं।
0: सो कैसे?
4: पता नहीं फरहान ने मेरे बारे में आपको बताया या नहीं, मैं बताती हूँ। हमारा मॉल है, फरहान मैनेजर है मॉल का, और डैडी भी उसे पसंद करते हैं।
0: और आप?
4: करती थी, अब नहीं, डबल गेम खेल रहा है वो। आपने सभा का कांटेक्ट नंबर दिया था, बात की थी मैंने बड़ी तफसील से, आई थिंक बट आई एम श्योर वो लालची कुत्ता है।
0: शमा जी, कुत्ता तो वफादार होता है, वो लालची, सेल्फिश, चीटर किसी भी बुरे नाम से पुकारा जा सकता है।
4: श्योर, मैं सभा से बात करूंगी, कल से वो हमारा नौकर नहीं रहेगा, उसे इंडिया जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब, चलिए कहीं डिनर करते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू।
4: अरे हाँ, ये पूछना तो भूल ही गई, आपका सभा से किस हद तक का रिलेशन है? माफ कीजिएगा, मैंने घुमा फिरा कर नहीं डायरेक्ट पूछ लिया, सही किया या गलत आई डोंट नो।
0: देखो शमा, दिल साफ हो तो सच बात जबान पर आ ही जाती है, क्या सिर्फ दोस्त कहना काफी होगा?
4: टू माई माइंड माँ बाप के बाद सिर्फ एक ही रिश्ता काबिल एतबार होता है, दोस्त। दिल खुश कर दिया आपने, थैंक यू। चले
0: चलिए।

0: ओह, आप वेलकम, तशरीफ लाइए, प्लीज बी सीटेड। मैडम कहाँ हैं?
1: मैडम,
0: हाँ मैडम, तुम्हारी वाइफ
1: वाइफ,
0: महबूबा, मिसेस फरहान। समझे नहीं, क्षमा को पूछ रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आई है।
1: जी वो तो दुबई में है।
0: इज्जत से नाम लीजिए, तुम्हारी बॉस है। हमने सुना है कुत्ता वफादार होता है, भूखा रहकर भी घर नहीं छोड़ता। हो सकता है इंसानों की सोहबत में रहते रहते उसमें भी बेवफाई का वायरस घुस आया हो। किसी नॉवल में पढ़ा था मैंने, फासले मोहब्बत को बढ़ा देते हैं, लेकिन तुमने तो इस बात को भी झूठा साबित कर दिया। याद है तुम्हें फरहान, तुम ये गाना बहुत सुना करते थे। हाँ, कभी उस गली का कूचा, कभी उस हंसी की महफिल, मुझे दर बदर फिराया मेरे दिल की सादगी ने।
1: हाँ सबा, वो भी एक जमाना था।
0: यू नो आई एम डायरेक्टर, कभी कभी सिचुएशन के लिहाज से स्क्रिप्ट में चेंज भी करना पड़ सकता है। जिंदगी की स्क्रिप्ट में भी तुम जैसे हीरो को देखकर चेंज करना पड़ रहा है। अब मेरे हीरो को गाना गाना चाहिए, मुझे दर बदर फिराया मेरी लालची आदत ने। पहले पहले मेरी गली की चक्कर लगाए, घर के अंदर आए, फिर मेरे दिल में घुस आए। तुम्हारी ख्वाहिश पर मैंने तुम्हें दुबई भेज दिया। शमा के घर में दाखिल हो गए और दुम हिलाने लगे उसके इशारों पर, और मैं राह देखती रही तुम्हारी। थैंक्स गॉड, आदिल ऑफिशियल विजिट पर दुबई चला गया। पता है आदिल से शमा ने क्या कहा था? तुमको कैसे मालूम होगा, मैं बता देती हूं।
2: पराए घर के कुत्ते को मैं अपने आंगन में नहीं बांधूंगी।
0: और तुम्हें दिल से ही नहीं, नौकरी से भी निकालकर तुम्हारी औकात याद दिला दी उसने।
1: प्लीज मेरी बात तो सुनो।
0: आज की सोसाइटी को गौर से देख रही हूं, ऑब्जर्व कर रही हूं, शूटिंग की स्क्रिप्ट की तरह साफ सुथरे, वेल डिजर्व। हेलो हेलो, बाय बाय, सी यू। बातें ऐसी जैसे दिल में उतर जाए, लेकिन अंदर से अपॉर्चुनिस्ट, सेल्फिश, मौका परस्त।
1: नहीं
0: आई
1: सब,
0: कॉल देम सोशल डॉग। और तुम भी सोशल डॉग हो।
1: नहीं सबा,
0: गेट आउट लालची कुत्ते फरहान,
1: नहीं सबा, नहीं
0: गेट आउट लालची कुत्ते फरहान।
1: सबा,
0: सही पहचाना शमा ने तुम्हें, बाहर निकलो मेरे घर से, गेट आउट
1: नहीं सबा,
0: सोशल डॉग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर। नाटक के अंतर्गत ये धुआं सा कहाँ से उठता है, प्रस्तुति थी असीम सक्सेना की और लेखक थे नफीस अहमद सिद्दीकी। आइए सुनते हैं अब कुछ ज़रूरी संदेश।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर। आपका अपना आकाशवाणी रामपुर, जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी।

मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे बाबुल सुप्रियो द्वारा गाए कुछ नगमे।

कार्यक्रम मन भावन सुनने वाले सभी साथियों को प्रीति दिवाकर का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वादा से, और गाने के बोल हैं मैं इश्क उसका।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डोली सजा के रखना से। इस गीत को अपनी आवाज दी है बाबुल सुप्रियो और श्रीनिवास ने।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म साक्षी से। कया कलाकार हैं बाबुल सुप्रिय और कविता कृष्णमूर्ति।

0: मिस सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे अब आप अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
7: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
6: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक।

0: सार्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। अब सुनिए कुछ सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में।

हमारी पहली सूचना प्रभारी निरीक्षक थाना धनारी जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि नूर बानो पुत्री श्री हसमुद्दीन निवासी ग्राम गड़ा थाना धनारी संभल विगत 3/4/2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 14 वर्ष है। इनका रंग गोरा है। कद 5 फीट है और चेहरा इनका सामान्य है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना धनारी जिला संभल मोबाइल नंबर 9450441718। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9450441718।

हमारी दूसरी सूचना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जिला मुरादाबाद हमें सूचित करते हैं कि शुएब अख्तर पुत्र नसीम अख्तर निवासी लाल मस्जिद बाड़ा शाह शफा कोतवाली मुरादाबाद विगत 21/1/2026 से लापता हैं। इनके उम्र 24 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फीट और चेहरा सामान्य है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जिला मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 9454444044। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9454444044। सूचना समाप्त हुई।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल alwaysuse112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता,
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।

0: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर। आपका अपना आकाशवाणी रामपुर, जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
1: बात तो है ये सदियों पुरानी, लेकिन है जानी पहचानी। पानी है सबकी जिंदगानी, सोचो समझो बचाओ पानी।
0: जल की बचत का करो जतन, जीवन का ये अमूल्य रतन।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम गीत आपके नाम सुनने वाले सभी साथियों को प्रीति का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गीत आपके नाम कार्यक्रम में पहले गीत की फरमाइश करने वाले हैं आप सभी श्रोता। रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एचडी गुप्ता, रामेश्वर, ये हैं रायपुर से। पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। पुराना तालाब, डुमराप से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड, बक्सा से राज, एस डी अंसारी और फातमा नाज। चर्म पार्क दिल्ली से, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर आदिबा। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुर्बानी फिल्म का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी है कंचन मनहार और आनंद ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है जेल रोड जलंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां और जीनत जहां ने। बेताब रेडियो लाइंस क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सलेहा खातून और गुड़िया खातून। सादल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। जेल रोड झांसी से महेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, नरेंद्र डोम और कशिश डोमेन। उमरखेड़ से वैशाली जाटव और शैलेश जाटव। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, अनिल तमरकार, अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक, लालू सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ से सजाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान। कासम कॉलोनी सनावत से यूसुफ खत्री, शफी खत्री, इतरिशिक खत्री, नीरू मीना, इरफाना मीना, कासिफ मीना। विनोद चौरसिया शंकर मार्केट पांच कंदीला से संतोष कुमार, सनी मुन्ना, रथ चौक बहादुरपुर से खानदेश महाराष्ट्र, रोहिदास चौक परनपुर शहर से एनी, प्रशांत, यशराज और सुनीता व उनके साथ ऋषि। बड़ा बम चौक खांडवा मध्य प्रदेश से ममता, संजय और बेबी। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ, अर्जुना, प्रणय, हिरामण और प्रतिभा। कांवर कॉलोनी बडवाहा से प्रवीण और मीना। मेरठ कैंट दिग्दर्शन और कविता गौड़। बरकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, निप्पी व मोहम्मद अफजल मलिक। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा व उनके साथ स्वीटी छाबड़ा। हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, उत्तम जमदड़। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गाव्या और सुच्चा सिंह पाठक व उनके भाई जयपाल। गांधी समाधि रोड से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रुमा खान, माहिदा खान और सुभान व फिरोज खान। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये प्यारा सा नगमा।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम। कार्यक्रम के अंतर्गत अगले गीत की फरमाइश करी है आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंज डुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। मंसूर रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून, शबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबाना और यश मंसूरी। पटियाला रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी अरीबा हबीबा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दूबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनके साथ प्रांजल राय। जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद असलम सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित अहूजा। बाबा साहेब पोर्डे मीनाक्षी रजनी, रामपुर लिसनर क्लब नालापार छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंगल दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। मध्य प्रदेश छिदवाड़ा बेडी से नाना।

आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म थोड़ा सा प्यार हुआ है का ये प्यारा सा नगमा, और नगमे को अपनी आवाज से सजाया है सोनू निगम ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार। गांव नथाना से पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। ग्राम व पोस्ट हरारपुर मटकली, जिला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। सहारनपुर से सुरेश नारंग, अंशु नारंग, सोनाली, शेख वल्ला, अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप और एस के सरगम। ग्राम लोहडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, रघिवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया रेणु, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव। राहत गांव कैंप अमरावती महाराज से हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और रामेकर परिवार। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, पवन गौड़, योगेंद्र नायक। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में फिल्म बॉर्डर का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से श्री सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार सचिव, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरबद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख। जेल रोड रामगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ, प्रकाश, बल्लू, तरुणा यादव, श्रीनिका और श्रीनिजा। छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबलू और प्रियांशी साहू। कुमाल रोड हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरिंदर सुंद, अनीता सुंद, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। फ्रेंड्स करौनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांडा और जी एस रामगढ़िया। आदर्श नगर मटोल पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत अंजू, संस्कृति और पौरुष। राम कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, संचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। साथी हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष चैतन्य और मेघा। फातिमा कॉलोनी रामपुरा महाराज से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा से जुनेद, साहिबा मिलाखाई और जनेब। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म मैंने प्यार किया का ये प्यारा सा गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

0: अभी आपने सुना ईमेल आधारित फरमाइशी संगीत कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। We'll be right back.
0: मिनिमम 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

दोपहर 1:15 पर आप सुनिएगा धरती गाती है के अंतर्गत लोकगीत कलाकार होंगी मोनालिका सक्सेना। वहीं 1:30 पर आप तक पहुंचेगा कार्यक्रम आंचल। शाम 5:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 6:20 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: ठीक 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा वार्ता रहेगी शिक्षा संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमिका। 7:31 पर आप सुनेंगे वृषेश प्रस्तुति के अंतर्गत जो सही है वो बात हम बोलेंगे, प्रस्तुति रहेगी असीम सक्सेना की। रात ठीक 8 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत गाता चल। 9:30 पर आप सुनेंगे सबरस लोकगीत के अंतर्गत इंदु शर्मा द्वारा गाए कुछ लोकगीत। 10 बजे आप तक पहुंचेगा आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो रामपुर। ये था कार्यक्रम विवरण, आइए सुनते हैं अब एक जरूरी संदेश।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आपने सुना धरती गाती है के अंतर्गत मोनालिका सक्सेना और मधु वर्मा द्वारा गाए कुछ लोकगीत। आइए आप सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: अरे अरे सुनो, देखो देखो एक्सीडेंट हो गया।
2: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
3: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
4: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
5: नहीं, 112 लगाओ।
6: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
5: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
7: हेलो 112।
8: नमस्कार 112 यूपी।
7: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है।
8: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
7: सुनील।
8: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
7: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
8: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है। डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
9: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।
10: एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे? तरस जाओगे बूंद बूंद को, जो व्यर्थ में जल को बहाओगे।
11: बिन पानी जीवन बदहाली, पानी से ही है खुशहाली।
12: जल है असली सोना, इसको कभी मत खोना।
10: अगर चाहते हैं भविष्य सुरक्षित बनाना, तो बेहद जरूरी है जल को बचाना।
11: पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा।
13: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए अगली प्रस्तुति।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम आंचल, और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही हैं मीना।

आंचल कार्यक्रम सुनन वाली सभी बहनों को मीना की राम राम। और सुनाओ बहनों, कैसी हैं आप और आपके बाली बच्चे? आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी और स्वस्थ होंगी। बहनों, बात जब स्वस्थ रहने की आ जाता है तो हम सब हर समय अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते ही हैं, जिससे हम सब बीमार न पड़ें। लेकिन कभी कभी सावधानी बरतने पर भी अनजाने में हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। बहनों, अब आप कह रही होंगी कि जब हम परेशान रहेंगे तो बीमार कैसे पड़ सकता? तो बहनों, हम सब गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और पशु भी पालते हैं, दूध वाले, काम वाले, और कुछ बहनें कुत्ता पालती हैं, बिल्ली पालती हैं और बंदर भी पालती हैं। बहनों, पशुओं में कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो यदि पशु में हो गई और हमने सावधानी न बरती तो हमें भी हो जाती हैं। और हाँ बहनों, हर साल बहुत सी जान भी चली जाती हैं। बहनों, ये दिन जानवरों से इंसान में फैलने वाले संक्रामक बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके बचाव के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। बहनों, पहली बार रेबीज को टीका 6 जुलाई 1895 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने तैयार करो, और तभी से पहले रेबीज के टीका की याद में प्रत्येक साल 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाता। बहनों, रेबीज एक अत्यंत खतरनाक बीमारी है जो संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर या अन्य पशुओं के काटने से मनुष्य में फैलता है। यदि समय पर उपचार ना कराया जाए तो यह जानलेवा हो जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को कोई पशु काट ले तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोकर डॉक्टर के पास जाएं। ब्रुसेलोसिस, बर्ड फ्लू इत्यादि अनेक रोग हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। इसलिए बहनों, ऐसी कोई भी बीमारी किसी को ना होए जाके ले सावधानी से रहें। और यदि बचाव की बात करें तो कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनसे हम बचाव कर सकते हैं। जैसे पालतू पशु का समय पर टीकाकरण करावें। अगर आपको आपके पशु को कोई बीमारी हो तो बाको दूर रखें, दूध उबाल कर पिए और मांस को अच्छी तरह से पका कर खाएं। पशुओं को छूने के बाद अपने हाथन को साबुन से धो लें। आवारा पशुओं से अपने पशुओं को दूर रखें। अगर कोई बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बहनों, जोनोटिक रोग से बचाव हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब खुद भी बच कर रहें और दूसरों को भी बचाने को जागरूक करें। बहनों, जो तो बात रही जोनोसिस

0: कुपोषण की समस्या पाई गई है। ये कुपोषण कैसे दूर हो सकता है और कैसे बच्चे हष्ट पुष्ट हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज है श्री दीपक कुमार जी, जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी है। दीपक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद विनय जी।
0: सबसे प्रमुख बात यही है कि किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गांव में, दूर दराज के इलाकों में जो बच्चे रह रहे हैं, पुष्टाहार उन्हें मिल सके और वो उनकी जो माताएं बहनें हैं वो समझ सके कि ये पुष्टाहार उनके लिए कितना जरूरी है और बच्चों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सके।
1: पहले मैं, जो आपने मुझसे पूछा कि पोषाहार व्यवस्था के बारे में, मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा थोड़ा सा। हमारे यहाँ ICDS विभाग शुरू से ही पोषाहार व्यवस्था उसका एक अभिन्न अंग रहा है।
0: हाँ।
1: ताकि बच्चों को, जो पुष्टाहार देने का मुख्य कारण है कि बच्चों को जो उनका घर का खाना होता है उसमें उनको अगर किसी कारण

0: जो पैकेट पोषाहार आता था जिसको हम दलिया बोलते थे, वो करीब अलग अलग प्रकार का हर तरह के गर्भवती धात्री और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग तरह से आता था। तो वो व्यवस्था बंद कर दी गई है। अब शासन द्वारा स्वयं सहायता समूह को पोषाहार व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसमें अभी वर्तमान में माह नवंबर से आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए अपने कोटे के माध्यम से गेहूं चावल और स्वयं सहायता समूह द्वारा क्रय करके दाल की उपलब्धता, और हमारे यहाँ पराग कोऑपरेटिव द्वारा दूध और घी की आपूर्ति की गई है जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर, जिसका वितरण अभी चल रहा है।
1: आपने पुष्टाहार का जिक्र किया और पैकेज्ड जो पुष्टाहार है वो भी वितरित किया जाता है। इसी पुष्टाहार में या पैकेज्ड जो पुष्टाहार होता है, इसमें क्या क्या होता है, किन बातों का ध्यान रखा गया है ताकि वो सारे जो पौष्टिक पदार्थ है, न्यूट्रिशंस है, वो बच्चे को मिले?
0: ये देखिए, अगर हम देखें सामान्य तौर पे, हम आप हों चाहे गाँव का बच्चा हो, जो बेसिक चीजें हैं जैसे एनीमिया है, एनीमिया का कारण है आयरन की कमी, और वो आयरन की कमी आहार के ही कारण होती है। जो आहार हम ऐसा लेते हैं जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती, तो आयरन हुआ, ज्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व तो बोलते हैं, ज्यादातर उनकी कमी होती है। तो वो कमियां पूरी करने के लिए ये जो हमारा पोषाहार आता है, अब वर्तमान में तो पोषाहार जो है वो ड्राई राशन के रूप में अलग अलग दिया जा रहा है, ताकि सभी जैसे घी है, दूध है, तो इनमें आयरन की मात्रा होती है, दाल से प्रोटीन मिलता है, तो गेहूं भी दिया जा रहा है प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन और ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो बहुत जरूरी हैं बच्चे के विकास के लिए, तो इनका समायोजन उसमें रहता है किसी भी तरीके से हम दें, चाहे वो पैकेट हो चाहे वो ड्राई राशन के रूप में।
1: प्राय समस्या रहती है, शिकायत भी रहती है कि जो परिवार है जिनके घर में बच्चे है उन सब तक जो पुष्टाहार है वो सही तरीके से समुचित व्यवस्था ऐसी नहीं है कि पहुंच सके, और शिकायत बनी रहती है। ये शिकायत कहां तक सही है और इसके लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं?
0: देखिए विनय जी, कुछ जगह पे कुछ लोगों द्वारा गलत किया जाता है, उनको बीच बीच में शिकायतें होती हैं, उनका जांच करके कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ये अब काफी हद तक खत्म हो चुका है, और शासन भी निरंतर इस प्रक्रिया में सुधार की ओर अग्रसर है, और शासन द्वारा निरंतर इस संबंध में नवीन संशोधन किए जाते रहे हैं। वर्तमान संशोधन ये किया गया है इसी लूप होल्स को बंद करने के लिए, कि अब जो भी आंगनवाड़ी राशन जिस लाभार्थी को देगी उसका नाम और मोबाइल नंबर ऑनलाइन पोर्टल एक बनाया गया है, उस पोर्टल पर उस बच्चे का या गर्भवती महिला का नाम और उसका मोबाइल नंबर फीड किया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से, और लखनऊ में 30 लोगों की क्षमता का एक कॉल सेंटर भी सिर्फ इसी के लिए बनाया गया है कि उस कॉल सेंटर से इन लाभार्थियों को रेंडमली फोन करके उनसे पोषाहार प्राप्त होने का सत्यापन किया जाएगा, और अगर उसमें कहीं गलती पाई जाती है, अगर कहीं बताया जाता है कि नाम चढ़ा है उसको पोषाहार नहीं मिला, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
1: ये पुष्टाहार वितरण की जो बात की जाती है, ये घर में जाकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ती वितरित करती है या फिर इसके लिए कोई निर्धारित स्थान है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, बच्चे महिलाएं, वहां पर वितरित किया जाता है?
0: जी, इसमें अभी विनय, जैसे आपको याद होगा कि हमारे यहाँ कोरोना काल जब से लॉकडाउन लगा था मार्च से, तब से आंगनवाड़ी केंद्र बंद चल रहे थे, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती विभिन्न रूपों में सेवा प्रदान करती रही है पूरे कोरोना काल से लेकर अभी तक। अभी तक कोरोना काल में तो आंगनवाड़ी द्वारा घर घर जाके डोर टू डोर राशन का वितरण किया जाता था, चाहे अनुपूरक पोषाहार हो चाहे वो गेहूं हो, और अब माह 1 फरवरी से हमारे यहाँ शासन द्वारा आंगनवाड़ी

0: बता सकते हैं कि बच्चा कुपोषित है।
1: जी
0: कुपोषण कोई एक मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसकी कोई जांच करके हम पता कर सकें।
1: जी
0: और सबसे सामान्य तरीका तो आप बच्चे को देख के, जैसे बच्चा है अच्छे से खा नहीं रहा है, उसकी हड्डियां निकली या पेट सिर्फ बाहर है, हाथ पैर दुबले हैं, तो ऐसी कंडीशन में देख के हम समझ सकते हैं कि बच्चे को जो उसको इस उम्र में जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं किसी भी कारण से, इसलिए वो अक्सर बीमार रह रहा है, कमजोर रह रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा सबसे जो आसान तरीका हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, हर माह वजन लिया जाता है बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्रों पे जाके या घर में जाके, जैसे सहूलियत रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को, और वजन के माध्यम से हम लोग अल्प वजन अंडरवेट बच्चों का चिन्हांकन करते हैं प्रतिमाह, और उनको दो श्रेणियों में वजन के हिसाब से लाल श्रेणी और पीली श्रेणी में विभाजित करते हैं, और उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, और फिर उन्हीं बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती काउंसलिंग के माध्यम से, पोषाहार के माध्यम से उनको उस श्रेणी से निकालने का प्रयास करती है। और विनय जी मैं ये भी बताना चाहूंगा, इसमें जो चिन्हांकन के दौरान कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जो बहुत ज्यादा ही वो होते हैं कमजोर, जिनको देख के लगता है कि इनका बचना भी संभव नहीं है, कुछ इनको एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं ज्यादा, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हमारे यहाँ जो पोषण पुनर्वास केंद्र जिला अस्पताल में है यहाँ भर्ती कराया जाता है, जहाँ 14 दिन तक माँ को 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसका भत्ता मिलता है, और बच्चे को डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार वहां पे आहार दिया जाता है, 14 दिन तक मॉनिटरिंग की जाती है बच्चे के सभी तरह की जांच, अगर खून भी चढ़ना होता है कुछ बच्चों का, हमारे यहाँ NRC में वो भी सुविधा है, तो वहां भी बहुत गंभीर किस्म के बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ सुविधा है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा इसमें अपना भरपूर सहयोग किया जाता है।
1: चूंकि विभाग द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है, वेट भी किया जाता है, तो इससे क्या लगता है कि कितने प्रतिशत लगभग बच्चे ऐसे हैं जो गांव में रह रहे हैं और कुपोषण की श्रेणी में आते हैं?
0: देखिये विनय जी, कुपोषण अगर हम एक सामान्य तौर पे लें तो बच्चों में, खास तौर से ग्रामीण परिक्षेत्र में अगर हम देखें, तो हर दूसरा तीसरा बच्चा किसी न किसी वजह से कुपोषित होगा। अगर वो मान लीजिए वेट के अनुसार कुपोषण की श्रेणी में नहीं है, तो अगर हीमोग्लोबिन हम उसका चेक कराएं तो वो एनीमिक भी निकल सकता है, और एनीमिया का परसेंटेज हमारे यहाँ लगभग 50% है, चाहे महिलाएं आप लें चाहे बच्चों को लें। और हमारे यहाँ पोषण अभियान में लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि एनीमिया के लिए भी 2-3% प्रतिवर्ष इसमें कमी की जाए, तो उस पर भी हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। ये कुपोषण एक व्यापक रूप में है, अभी हम इससे मना नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम उनको ट्रैक कर रहे हैं उतने ही ज्यादा निकल रहे हैं बच्चे,
1: तो इसका मतलब यह है कि अभी कमी नहीं हो पा रही है इतने प्रयासों के बावजूद भी।
0: कमी निश्चित तौर से कमी हो रही है, लेकिन हम नए चिन्हांकन भी हमारे बढ़ रहे हैं, इसलिए संख्या में वो कमी हम नहीं ला पा रहे हैं अभी, क्योंकि हम चिन्हित भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो हम ज्यादा लोग लक्षित कर पा रहे हैं।
1: एक तो पुष्टाहार दिया गया है जिससे निश्चित रूप से उनके अंदर सुधार हो रहा है, साथ ही साथ ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके माध्यम से गांव के लोगों को, गांव की महिलाओं को यह समझाया जाए कि ऐसे खाद्य पदार्थों का घर में सेवन करें जो बहुत महंगे नहीं है, आसानी से घर में उपलब्ध है, खेतों पर उपलब्ध है, हरी साग सब्जी है, ताकि इससे जो है पौष्टिकता बढ़ सके।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज आपने पूछी विनय जी। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कुपोषण पे कभी बात करते हैं, तो कुपोषण का मुख्य कारण ही यही है कि हम लोग अपने दैनिक आहार में आज हम उन चीजों को वरीयता नहीं देते जो पहले हम लोग खाने पीने में एक सामान्य अंग हुआ करती थी। हरी सब्जियों की जैसे आप बात करें तो हरी सब्जियों का सेवन अब धीरे धीरे घट रहा है लोगों में, लोग फास्ट फूड की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। गांव में मैं देखता हूं, खुद घर में जाके अगर बच्चों से पूछता हूं या माँ से पूछता हूं कि आप नाश्ते में क्या देते हैं, तो पता चलेगा कि चाय और ब्रेड सुबह नाश्ते में दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं ये कमी है हमारे दैनिक आहार में ग्रामीण परिक्षेत्र में, और ग्रामीण परिक्षेत्र में सब्जियों की कोई कमी नहीं है, बस उनको ये इसलिए इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है कि वो हरी सब्जियों का सेवन तो निश्चित रूप से अपने दैनिक आहार में करें, और इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती घर पे जाके और केंद्र पे जब भी कोई आयोजन करती है, गोद भराई, अन्नप्राशन या अन्य सामुदायिक गतिविधि, तो वो लोगों महिलाओं को बुला के उनको इस संबंध में परामर्श भी देती है। और इसमें एक नवीन हमारे शासन द्वारा एक विनय जी बताना चाहूंगा, इसमें प्रयास किया जा रहा है कि अब जो ड्राई राशन व्यवस्था हमारे यहाँ चालू की गई है, इसमें प्रत्येक माह आंगनवाड़ी केंद्र पे पोषण उत्सव मनाने का प्रावधान किया गया है। उसका लक्ष्य यही है पोषण उत्सव मनाने का कि उस दिन बच्चे जो ड्राई राशन लेने आएंगे उनके माँ बाप भी साथ में आएंगे, वहीं पे उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उनको प्रदर्शित करके वहां पे दिखाया जाएगा चित्रों के माध्यम से।

0: कि आपके आहार में किन किन चीजों की आवश्यकता है, प्रोटीन कहाँ से आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट किन चीजों को खाने से मिलेगा, आयरन किन चीजों को खाने से मिलेगा, तो ये खाने पीने के संबंध में उन्हें उचित पूरा परामर्श भी दिया जाएगा।
1: जी, बहुत अच्छा प्रयास है जो विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में कि कुपोषण के शिकार बहुत सारे बच्चे और माताएं बहनें हो रही हैं, लेकिन प्रयास से ये दूर किया जा सकता है, समय लग सकता है, और सही तरीके से यदि लगन के साथ इस कार्य में जुटा जाए तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों का भविष्य सुंदर कर सकते हैं, उनको स्वस्थ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और विभाग की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में बताया।
2: बहनों, अभी आपने जो भेंटवार्ता सुनी, हमें उम्मीद है आप भी अपने बच्चन को अच्छे से खान पान रखेंगे और अच्छे से उनको ध्यान रखेंगे। बहनों, कार्यक्रम में अब सुनवाता क्षेत्र संकलित कार्यक्रम गांव की बातें, हमने काका बातें करें, हम आपको सुनवाते हैं। आप हैं नवीन कुमारी ग्राम जादोपुर मिलक रामपुर से, तो सुनता जाए गाँव की बातें।
3: दीदी राम राम।
4: राम राम राम राम।
3: दीदी, सबसे पहले अपना पता और नाम बता दे हमारी बहन को।
4: मेरा नाम नवीन कुमारी है, मैं ग्राम जादोपुर की रहने वाली हूँ, पोस्ट दमोरा, जिला रामपुर।
3: दीदी, आप दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होंगी?
4: हाँ, हम जुड़े हुए हैं।
3: स्वयं सहायता समूह से कब से जुड़ी हुई है?
4: ये होगा 5 साल।
3: अच्छा, तो आपका कोई लाभ मिला है?
4: हाँ, लाभ मिला है। पहला लाभ मिला था हमें, जैसे हमने समूह बनाया, समूह के ठीक 3 महीने बाद हमें मिला रिवाल्व फंड, जिसमें पैसा आता है 15,000 रूपए।
3: वो काय के लाता?
4: आता तो काम के लिए है। 15,000 में 12 महिला होती हैं, 12 होती हैं, 12 एक ही समान होती है। मैंने
3: तो 1,000 में कौन सा काम खुल जाए?
4: हाँ, तो उसके हिसाब से वो हम वो जो 15,000 रूपए है हमारा, उसी में पड़ा रन दिया हमने समूह के खाते में। फिर हम अपनी बचत जमा करते रहे उसमें। फिर हमारा कम से कम 6 महीने बाद हमें मिला CIF, तो 1,10,000 जो होता है।
3: तो CIF को ऐसे कोई फॉर्म भरने पड़ता है या ऐसे ही मिल जाता?
4: हाँ, इसका CIF को फॉर्म भरना पड़ता है, बना के देनी पड़ती है लिस्ट उसकी, जो CIF बना हुआ होता है हमारा। जैसे हमने ग्राम संगठन बना, हमारा 5 समूह बन गए। हमारे 5 समूह के बाद हमारा ग्राम संगठन बना। ग्राम संगठन हमारा जब ग्राम संगठन बना, उसके ऊपर हमारा CIF बनता है।
3: अच्छा,
4: CIF में हम जो कागज जमा करते हैं, वहाँ से हमें जितने हमारे समूह हैं, चाहे 10 है या 9 है, 8 है या 5 है समूह, उसी हिसाब से एक समूह के लिए 1,10,000 रूपए आता है। तो उसमें अपने महिला चाहे कोई भी काम कर सकती है, उसमें अपना रोजगार कुछ भी कर सकती है।
3: तो आप जैसे 1,10,000 रूपया निकालो तो अब ऐसा कोई काम खोलो?
4: हाँ, हमने अपना रोजगार खोला था।
3: अच्छा, क्या रोजगार खोलो?
4: हमने परचूनी की दुकान खोली अपनी।
3: अच्छा,
4: परचूनी की दुकान खोली थी, उसमें हमें काफी बरकत है, हम समय से किस्त भी जमा करते हैं। छोटा कार्य, थोड़ा छोटा तो होता ही है, छोटे से बड़ा होता चला जाता है। और हमने अपना जो पैसा हमारा था, और हमने उसी में अपनी जो दुकान थी उसी में हमने झाड़ू का काम भी कर लिया है, परचूनी की दुकान में।
3: अच्छा, तो झाड़ू खुद बनाती हो या झाड़ू लाए कर बेचती हो?
4: झाड़ू हम घरे बनाते हैं, वहाँ से हम मतलब लेके आते हैं, झाड़ू पैकिंग करते हैं उसकी।
3: अच्छा, झाड़ू को सामान ले आती है, बनाती है।
4: हाँ, अपने घर आके बनाते हैं उसे।
3: तो मैं 10 बहने जैसे जुड़ी हुई है, तो वो भी बनाते हैं या आप अकेले?
4: नहीं, हम और भी है ना, हमने इसमें शामिल कर ली है झाड़ू वाले काम में। उधर हमने जो पैसा लिया है, जो 1,00,000 हमारा, वो भी समय से वापसी हो रहा है, ब्याज तो नहीं है, और अपना भी काम चल रहा है।
3: आप जैसे समूह में है, तो समूह में आप कौन से पद पाए?
4: मैं समूह सखी हूँ।
3: समूह सखी तो काम भी करती है?
4: हाँ, समूह सखी का भी काम करती हूँ।
3: समूह सखी में का काम करने होता है?
4: समूह सखी में जैसे अब ये ले लो, जैसे हमारा गांव है, गांव का एक प्रधान होता है। ऐसी समूह में जो 12-10 समूह होते हैं, उसका यही लेवल होता है समूह सखी का। वो सारे समूह को देखती है, जो बाहर से काम आते हैं वो बैठक में समूह सखी अपनी महिलाओं को बताती है, ताकि समूह आगे चले।
3: अच्छा, कोई ऐसे काम मिलता है या जैसे कोई जगह निकलती है तो समोसा की बताती है।
4: हाँ सब समोसा की बताती है, अपने गांव में आके अपनी महिलाओं को बैठक करती है, उसमें बात खोल देती है कि आज फला काम में यहाँ जगह निकली है, वहाँ पे ऐसा करना है, जो जिस महिला के समझ में आए, समूह की महिला के समझ में आए वो काम शुरू करके कागज हमें दे देती है, हम बिलोक जाके जमा कर देते हैं।
3: जिसकी इच्छा हुआ जैसे कोई कार्यकरण की तो वह जुड़ सकती है वहाँ।
4: हाँ हाँ हाँ, अब तो एक प्रक्रिया और भी निकली है, और भी समूह बनने हैं, जैसे नए समूह बनने हैं, जिस जिसने गांव में जैसे रह गए हैं समूह में जुड़ने को, जैसे राशन ले रहे हैं तो वो भी समूह में जुड़ना बहुत जरूरी है ताकि राशन अगले को पा सके वो लोग।
3: अच्छा, जो समूह में जुड़े हुए होंगे उन्हीं को राशन मिलेगा?
4: हाँ।
3: अच्छा, और समूह में नहीं होंगे उन्हें राशन नहीं मिलेगा?
4: नहीं मिलेगा।
3: तो ये जानकारी आपको ब्लॉक वाले देते होंगे?
4: ब्लॉक से मैसेज आज ही आया था हमारे पास।
3: अच्छा, आप समूह चला रही हैं, तो समूह में कितनी महिलाएं जुड़ती हैं?
4: एक समूह में 12 हो या 15 हो, 15 ना हो पाए तो 12 से, मतलब 9 का नहीं चलेगा, 10 तक रह जाएं, 12 तक रह जाएं।
3: अच्छा, आप कितने कितने रुपए जमा करती हैं?
4: हम महीने के एक महिला से 100 रुपए बचत, सप्ताह में 25 रुपए।
3: हाँ, तो आपके समूह में कितने लोग हैं?
4: मेरे समूह में 12 महिला हैं।
3: तो एक महीना में कितने रुपए जमा करती है? हर महीने करती है या दो तीन महीने बाद?
4: एक महिला हर महीने 100 बचत जमा करती है।
3: अच्छा, तो वो महिला आपके पास करती है, आप बैंक में करती होंगी?
4: इसका भी एक उपाय है, इसका भी एक निर्धारण बैठक होती है।
3: अच्छा, तो बैठक में क्या होता है?
4: जैसे मान के चलो अगर हम महीने में 2 बैठक नहीं कर पाए तो महीने में 1 बैठक हमें करना बहुत जरूरी होती है।
3: अच्छा,
4: तो उस बैठक में सब अपनी अपनी बचत लेके आते हैं। बैठक चाहे दोपहर में लगा लो, चाहे दिन में 10 बजे लगा लो, या शाम को 4 बजे लगा लो, जैसे अपनी
3: इच्छा है। हाँ,
4: इच्छा हो, उसी में सबके पैसे जमा हो जाते हैं।
3: अच्छा,
4: अब वो यही नहीं कि मैं ही जमा करके आऊँ, समूह में 12 हैं तो 12 का अधिकार है, ये हर महीने एक महिला जरूर बैंक जाए क्योंकि उसे भी पता लगे कि हाँ, समूह में क्या बात है, कैसे क्या होता है, क्या होने हैं, इस तरह से एक एक महिला को बारी बारी हर महीने जाने चाहिए।
3: तो अंत में नवीन कुमारी जी, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नहीं नाया, उनसे आप क्या कहना चाहोगी?
4: उनसे मेरा यही कहना है कि वो अधिक से अधिक समूह बनाए और समूह में जुड़े, आगे का लाभ उठाएं। समूह से लाभ बहुत है और फिर समूह ही एक ऐसी चीज है जो गरीब रेखा को पार कर सकता है
3: और महिलाओं को जागरूक
4: भी कर सकता है। एक जो मुट्ठी बन जाती है तो इसमें बहुत ताकत होती है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो महिला समूह से जुड़ने को रह गई है वो अधिक से अधिक समूह में हर गाँव में जुड़नी चाहिए।
3: तो ठीक है नवीन कुमारी जी, आपने हमें दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी स्वयं सहायता समूह के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुनो, हमें उम्मीद है आप भी दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ेंगी और लाभ उठाएंगे। बहनों, अब कार्यक्रम के अंत में कर लेता मनोरंजन, तो सुनते जाओ लोकगीत।

बनो अभी आपने जो लोगी सुनो, हमें उम्मीद है आपको पसंद आओ है। वो कलाकार थी आयुषी बहनों। अब वो कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब अपनी बहन को मीना को दो अनुमति। राम राम।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आंचल, ये कार्यक्रम अब तक पहुंचा रही थी मीना। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over parts of Madhya Maharashtra, Gujarat, Goa and Chhattisgarh for today. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals, defeating world number one Aryna Sabalenka. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to the three countries will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision, as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership, which was elevated during his 2018 visit and follows President Prabowo's state visit to India as the chief guest at the Republic Day celebrations in 2025. Prime Minister Modi said he will also interact with the Indian diaspora and visit the Prambanan temple complex in Yogyakarta with President Prabowo. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. He said the visit will strengthen the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership through discussions on defence and security, trade and investment, education, mobility, emerging and critical technologies, sports and people-to-people ties. He will also interact with the Indian diaspora. The Prime Minister will then visit Auckland at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. He said the visit will build on the momentum in bilateral ties following Prime Minister Luxon's visit to India in March last year, with discussions focusing on economic, trade and commercial engagement. Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today said that the cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Addressing the fifth foundation ceremony of Ministry of Cooperation, Mr. Shah said a ranking framework has been announced to recognize the 5 best performing cooperative societies in every region.
2: I would like to begin by saying that the Modi government's decision has taken the country to a new stage of development. Throughout the country's 75-year journey, the cooperative movement remained largely neglected and was often treated as a second-class sector. By establishing the Ministry of Cooperation, PM Modi has given the cooperative movement renewed importance and laid a strong foundation for its growth and expansion over the next century.
1: Home Minister Mr. Shah lauded the Ministry of Cooperation for bringing change in the lives of millions of people by following the mantra of prosperity through cooperation for the past 5 years. The government has said that over 104 crore health records have been linked to over 93 crore Ayushman Bharat health accounts or ABHA. This marks a significant progress in India's journey towards a connected digital public health ecosystem. ABHA is a 14-digit unique identifier like Aadhaar that securely links individuals to the wider health system. It helps patients access digital health services. They can connect to insurers, healthcare facilities, doctors and other services with all their medical history intact through this network. The Election Commission has announced by-elections to three seats of the Rajya Sabha from West Bengal. The seats fell vacant following the resignations of Rajya Sabha members Sukhendu Shekhar Rai, Sushmita Dev and Prakash Chigbaraik. The notification for the elections will be issued tomorrow, while the last date for filing nominations is the 14th of July. Scrutiny of nominations will take place on the 15th of July. Polling for these seats is scheduled to be held on 24th July and the counting of votes will be taken up the same day. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. Our correspondent has the details.
3: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited income and expenditure statement, balance sheet and other financial documents for the financial year 2025-26. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: The National Testing Agency, NTA, has extended the deadline to update bank account details for the fee refund of National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 exam till the 7th of this month. In a social media post, the NTA informed that refunds have already started for candidates who have confirmed their bank account details. It said only 8,29,510 candidates have so far corrected or updated their bank details. The refund process is being carried out by NTA after the cancellation of NEET UG 2026 examination held on the 3rd of May this year over allegations of a question paper leak. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Large parts of Maharashtra continue to reel under the impact of relentless monsoon rains, with Mumbai and the Konkan region witnessing widespread flooding, landslides, building collapses and major disruption to road, rail and air transport. Authorities across the state remain on high alert as heavy rainfall is expected to continue through the day. Authorities have appealed to citizens to avoid unnecessary travel. Chief Minister Devendra Fadnavis reviewed the situation at SDRF and instructed to take prompt coordinated action by all authorities. A report.
4: In Mumbai, intense rainfall accompanied by gusty winds of 80 to 90 kilometers per hour has affected vehicular, local train movements and flight operations. BMC has declared half-day leave to non-essential government staff. The private sector is advised to give work from home. All government and municipal private schools and colleges across the coastal districts and Pune remain closed today. Railway and road transport services between Mumbai and Pune have been severely affected. Traffic on the Mumbai-Pune expressway has also been affected. State transport has suspended all bus services. In Raigarh district, torrential rainfall for the past 5 days has resulted in 5 of its 6 major rivers flowing above the danger mark, inundating residential areas. Heavy rainfall has also triggered multiple landslides across the Konkan region, affecting traffic along Mumbai-Goa National Highway. Heavy rainfall has created flood-like situations in several parts of Ratnagiri and Sindhudurg districts. Devapriya Bhattacharji, Akashwani News, Mumbai.
1: Meanwhile, the Indian Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra and Chhattisgarh for today. The weather agency said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into some more parts of the North Arabian Sea, Gujarat, the remaining parts of Haryana and Punjab and some more parts of Rajasthan during the next 3 days. Railways Minister Ashwini Vaishnav has said more than 300 special trains will be operated for the Rath Yatra of Lord Jagannath this year. These are additional trains to the regular more than 800 trains. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Vaishnav said he will review the railway preparations for the upcoming Rath Yatra to ensure smooth operations.
5: We will be operating 300 plus special trains during the Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji, and during Onam festival we will be running about more than 100 special trains. This is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We will continue to work in that direction.
1: With elaborate preparations underway for the world-famous Rath Yatra in Puri, the Odisha government has entered the final phase of its administrative readiness. More from our correspondent.
6: Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has directed all departments to ensure a faultless, safe and incident-free Rath Yatra through impeccable interdepartmental coordination and meticulous execution of every arrangement. Chairing the final meeting of the Rath Yatra Coordination Committee in Puri this morning, Mr. Majhi described the annual chariot festival as an enduring embodiment of Odisha's rich spiritual and cultural legacy, attracting millions of devotees from across the world. He laid particular emphasis on the security, safety and dignity of women, devotees and reviewed preparedness for crowd management, multi-layered security, traffic regulation and other essential civic services. Expressing confidence in the collective efforts of all stakeholders, the Chief Minister said every ritual should be conducted with precision and according to schedule to ensure a flawless Rath Yatra, scheduled to be held on 16th of this month. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
1: India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection, Law and Policy in Geneva in Switzerland today. Our correspondent reports that the 3-day session being organized by the United Nations Trade and Development will continue till Wednesday.
7: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. The Intergovernmental Group of Experts is the principal intergovernmental platform for cooperation and dialogue on consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs, Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the 3-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
1: In Ukraine, at least 10 people were killed and 46 others were injured after Russia launched a ballistic missile attack on the capital Kiev this morning. This came a day before a key NATO summit in Turkey, which US President Donald Trump is expected to attend. Ukraine's Air Force said Russia used ballistic missiles, cruise missiles and drones in the attack. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. announced his retirement from international football after the 5-time world champions suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. For Brazil, the defeat marked a 7th consecutive World Cup knockout loss to European opposition. In Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovic Fokina in the quarterfinals. In another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 to reach her first quarterfinal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai Pune Expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
9: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
8: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
10: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
8: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
10: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
8: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
11: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
12: जगन्नाथ तकानेन।
13: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
12: जगन्नाथ तकानेन।
8: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
8: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
12: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
8: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
3: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।

प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूँ

आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओ। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल एनसीईआरटी के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में

0: टेका टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
0: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के

0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, दूसरा विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं, एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है, वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हम

0: बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का
1: चाहिए।
0: संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना।

0: उसको कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स
1: राहत
0: फील
1: मिल
0: करता
1: जाती
0: है,
1: है। जी
0: राहत
1: हाँ
0: मिलती है।
1: जी
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं
1: जी
0: कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट।
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर
1: जी
0: ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है। समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो
1: जी
0: बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे
1: अच्छे
0: बहुत अच्छे
1: खिलाड़ी हैं।
0: रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और
1: बिल्कुल
0: वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए।
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं। जैसे मान लीजिए, सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक
1: जी
0: कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या
1: जी
0: रहेगी।
1: हाँ जी
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं
1: जी
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे, अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो, आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से, कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम
1: बिल्कुल
0: बोलते हैं,
1: जी हाँ
0: कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता
1: जी
0: करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो
1: क्योंकि
0: इससे भी
1: अक्सर
0: अच्छा कर
1: होता नहीं है।
0: सकते
1: जी
0: हो।
1: हाँ
0: तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी, एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है
1: हाँ
0: और
1: मनोबल
0: वो
1: बढ़ता है।
0: मनोबल बढ़ता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए
1: जी
0: कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना।

0: हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं, तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है,

करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि

0: जी
1: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है,
0: जी
1: उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
0: जी
1: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
0: बिल्कुल,
1: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
0: जी उसी को
1: इसके अलावा
0: बिल्कुल
1: हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं।
0: जी
1: जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
0: हाँ होती है,
1: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया
0: प्रयास
1: वो सफल
0: किया।
1: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
0: जी
1: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
0: हाँ होता
1: तो
0: है।
1: तो इसका मतलब क्या हुआ,
0: जी
1: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
0: जी
1: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी

0: अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता
0: तो
1: है।
0: इसका मतलब क्या हुआ
1: जी।
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन।

0: यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही समय में दिन के 3 बजने वाले हैं। अभी तक आप हमारी प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे थे। अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर 5 बजे तक विविध भारतीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: तो दीपा तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को भीगा भीगा सा नमस्कार। जहां पर गर्मी पड़ रही है वहां पर हम कहेंगे कि मेरी आवाज से, दीपा की आवाज से और हमारे जो सखी सहेली में गाने बजेंगे उसको मिला करके एक भीना भीना सा प्यारा प्यारा सा नमस्कार।
0: बिल्कुल। और यहाँ तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है साथियों कि ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सा इस बरसात का वहां चला जाए जहाँ अब तक बरखा रानी बरसी नहीं।
1: बिल्कुल, है ना? बहुत जरूरी है सब जगह बैलेंस होता रहे बरसात का, तो ज्यादा ठीक है
0: जी।
1: क्योंकि यहाँ और पर तो लग रहा है बस अब रुक जाओ थोड़े दिन, सांस ले लें दो हमको, थोड़ा धूप हमें भी दे दो, ऐसी हालत।
0: कुछ ऐसा ही हाल है। और इस बदलते मौसम में हम आशा करते हैं आप सब अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, तो आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
1: बिल्कुल। और चलो दीपा हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन। सबसे पहले तो खान पान की बात, क्योंकि दीपा आ गई, मंजरी आ गई है, तो कुछ ना कुछ
0: कैसे
1: तो बनेगा,
0: नहीं हो कि बातें भोजन पान की होगी
1: होगी बिल्कुल, क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का, है ना?
0: शायद आ रहा होगा। और ये देखिए ना, इस मौसम में ऐसी कुछ चीजें चटपटी और कुछ तली भुनी चीजों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बिल्कुल लेना भी चाहिए,
1: लेना भी चाहिए। और अब हम बात उसके लिए बात करेंगे, अगला विषय मेरा है वन महोत्सव, तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज है कथा सुधा
0: जी
1: में कहानी का दिन है, तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
0: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनें, इस कहानी का हम सुनेंगे भाग एक
1: जी।
0: और फिर देखो महीने की ये शुरुआत है, शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना, जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं, तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं, घर में जो आपके काम करते हैं, जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं, स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है। उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू होने
1: जाती है कि भाई अब बजट बनाए, खर्चा
0: क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
1: अब कोई कुछ कहता तो नहीं भाई अभी रुक जाओ, अभी नहीं,
0: सही बात।
1: बचत करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती है, हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मनमर्जी की, लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं गीतों के द्वारा, तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी तो सावन आया नहीं है, लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं कि आए। लेकिन फिलहाल आषाढ़ के महीने में ये जो बरसात है हर जगह पहुंचे, हमारी तो यही शुभकामना है।
1: क्योंकि हरियाली छा जाती है, तो हरियाली छाते बस सावन याद आने लग जाता है, और सावन का मतलब होता है कि बस अब हाथों में मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, हरी हरी चूड़ियां पहनेंगे,
0: सब होगा, सब होगा मंजरी। लेकिन पहले चलो सुन लेते हैं कहानी,
1: कथा सुधा।
2: सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र, दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है, धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत हो उठती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए, यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की

0: और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जम्पर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहां छुपा रखा था।
1: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, यह हुस्न नहीं महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
0: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है, उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहां कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद व खाल बेऐब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नजर फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
1: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन अहमकों को कौन समझाए। से राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे, वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने, जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगे, शौहर की घुड़कियां खाएंगे, रोएंगे, रूठेंगे, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए।

0: राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है।
1: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाट ही तो है। अकड़ कर बोली,
0: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर, तेरा शौहर अब बीए में होगा?
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन। पढ़कर औकात खराब करना था और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना?
0: वो तो है भाई।
2: 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं और उसमें 100 रुपये मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते?
1: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें एक चौथाई से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है। अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी? उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
0: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? भला बताओ जरा, हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: रामदुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहां गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
0: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला? ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
0: वो तो है भाई।
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कल्ब भी करनी पड़ती है। औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो सवाल न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं। मगर अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
0: सही कहती हो।
1: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
0: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती? ये कहां का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूं, तमीजदार हूं, किफायत शियार हूं, अपने शौहर पर जान देती हूं, बच्चों को जान से अजीज समझती हूं, इस खस्ता हाथ

0: गली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तन परवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
1: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली,
0: तब तो शायद 1,000 मिलने लगे होंगे। हाँ
2: 1,000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
0: हाँ ऐसे ही कोई आंख का अंधा मालिक बन गया होगा।
2: बहन व्यापारी आंख के अंधे नहीं होते। हाँ जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
1: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
0: हाँ वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
2: अरे इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
4: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ
5: बिल्कुल।
4: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बढ़ती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईबीएफ या आईयूआई हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा,
1: भाई।
0: बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो है वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहां पे खर्चा करना है कहां पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि

0: लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना ले, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दे,
1: हाँ
0: है ना,
1: इस तरह से
0: इस
1: भी
0: तरह
1: कर
0: से
1: सकते
0: बचत
1: हैं,
0: कर सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 30, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग
0: हाँ
1: अलग रख
0: वो
1: के
0: भी रख
1: ये
0: सकते
1: भी
0: हैं
1: करके हम देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है, और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम
1: बिल्कुल।
0: कटौती करते हैं। और दीपा एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को,
1: बिल्कुल।
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं कि
1: हटा
0: नहीं भाई ये
1: सकते हैं
0: हमारे लिए
1: जी,
0: आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किलें, देखिए बोलना आसान होता है करना बहुत
0: करना बहुत
1: मुश्किल होता है,
0: मुश्किल होता है।
1: लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने की 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या
0: क्या
1: नहीं करें,
0: करें
1: और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसा पैसे की जरूरत है, तो
0: बिल्कुल
1: आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
0: बच जाएंगे। और दीपा देखो पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो हैं दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देती थी, या अपनी साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी, और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो शुरू किया जाए। और आप
1: बिल्कुल।
0: गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले
0: किसी
1: महीने ले
0: किसी
1: लेंगे।
0: की आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाले की, अब कुछ कुछ तो कर ले कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता
1: बिल्कुल।
0: है
1: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा,
0: जी
1: बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना
0: ऑनलाइन नहीं
1: करिएगा,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा,
0: बिल्कुल,
1: 12 घंटे के बाद
0: या
1: आपके
0: अभी
1: मन में वो जो उतावलापन
0: जी
1: है ना वो हम बिल्कुल कम
0: शांत
1: हो
0: हो जाएगा।
1: जाएगा।
0: और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है, तो
1: बिल्कुल।
0: इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा हम खुद को एक वित्तीय

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के जमाने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी जरूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा है। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ
0: है,
1: तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है, और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था पैसा, पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल
1: रखी है।
0: और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहां की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहां पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो बड़ा मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती
1: हैं, कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ।

0: नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने फलने फूलने तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है उसको, कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी इनके द्वारा हुई थी। तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
0: बिल्कुल, और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, लेकिन सुनते हैं क्या
0: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं हैं ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखारा नहीं, इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं, दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो, लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है।

0: वन्य जीव पक्षी जो है वो वहाँ पर, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से, उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए, और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
1: बिल्कुल, सफलता, सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़े?
0: कोई भी पढ़ सकता है,
1: पढ़िए, आप पढ़िए।
0: चलिए। तो हमारे एक साथी लिखते हैं, छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगे हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें, और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, आधा चम्मच छोला मसाला लेना है, इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूनें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा, इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी। तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो, और गर्म तेल में मध्यम तेज आंच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए, और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा सुनहरा तल लें, और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं, और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
1: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है।
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते, हमारी सखी ने लिखा है जंगल की, जो हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियां साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियां और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से, तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशालता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशालता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस?
2: पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी। तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है
1: जी।
2: ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
2: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
2: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं कभी।

0: होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर। चिन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है।
1: जी, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है। इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन साथ में।
0: हाँ वो थोड़ा तो

0: और
1: जी।
0: डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: अच्छा, एक पैर का नगमा।
1: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। पहले जांच पद्धति बताइए,
1: हाँ,
0: किस तरह
1: तो
0: से ट्रीटमेंट
1: जब
0: है उसको।
1: इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं।

0: पीपी, और उसमें कुछ आ गया 120 120 के आसपास, तो HbA1c ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है। इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस वो करते हैं।
1: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है, तो क्या
0: हाँ,
1: उस
0: वो
1: समय
0: थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लेप्रोस्कोपी या IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस
1: जी
0: सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के, उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है।
1: जी
0: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। हाँ
1: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इरेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
0: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को। अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
1: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
0: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है,
1: जी तो
0: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको।
1: जी तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
0: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट ही देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है उसकी।
1: जी तो एक गाना और सुने, आपकी पसंद का
0: अजीब
1: कौन सा?
0: दास्ता,
1: अजीब दास्तां है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली। जब वो अच्छे से समझाते हैं तादा का इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है
0: जी।
1: और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: हाँ। तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज
0: जी,
1: और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाई आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें, राइस जैसे
0: जी।
1: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन डी,
0: और विटामिन डी धूप से
1: सनलाइट,
0: और आजकल धूप की बहुत कमी
1: बहुत
0: है,
1: कमी है।
0: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना।
1: नहीं नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है,
0: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है।
1: डाइट का बहुत सारा योगदान
0: हाँ,
1: है।
0: तो और
1: और
0: क्या-क्या डाइट्स ले सकते
1: हाँ,
0: हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे
0: जी,
1: कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया।
0: चॉकलेट
1: हाँ,
0: नहीं ले
1: आर्टिफिशियल
0: सकते।
1: स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है, और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना
1: नॉइस, हाँ,
0: चाहिए,
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के
1: उससे
0: शौकीन
1: ट्रांस
0: के
1: फैटी,
0: लिए मुश्किल
1: हाँ
0: है।
1: हाँ ये ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है, और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट, बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड,
0: जी।
1: नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी
1: हाँ,
0: महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या
1: वो
0: करना
1: फ्रूट्स
0: चाहिए?
1: से नेचुरल शुगर मिल जाती है उनको।
0: जी,
1: हाँ, तो फ्रूट्स
0: मतलब
1: इनटेक कीजिए।
0: जब अगर
1: हाँ,
0: शक्कर
1: खजूर,
0: छोड़ें तो फल जरूर
1: हाँ,
0: खाएं।
1: फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ,
0: जी,
1: बिल्कुल गलत है।
0: हाँ।
1: शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है।
0: मीठा वो भी है,
1: मीठा, हाँ,
0: नुकसानदेह
1: हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है।
0: है।
1: और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इस खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती
0: वो
1: है,
0: खा सकते
1: खा
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ, क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है, क्या
1: हाँ,
0: निजात
1: क्रॉनिक
0: कैसे
1: स्ट्रेस
0: निजात
1: होता है,
0: पाए?
1: बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट
0: जी
1: की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस।

0: और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, अनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
1: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
0: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
1: चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना
0: चलिए,
1: सुनवाए?
0: झिलमिल सितारों के।
1: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ
1: अभी
0: कहिए
1: जो
0: आप।
1: है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है।
0: जल्दी आ
1: हाँ,
0: जाता है
1: जल्दी
0: पीरियड।
1: आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12th से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ है, डरने जैसी।
0: तो
1: तो
0: क्या
1: क्यों,
0: वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं।
0: ओ
1: हाँ, कोक, ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन
1: हाँ,
0: जाता है तो,
1: गर्भाशय में
0: हाँ,
1: सिस्ट
0: तो
1: बन जाता है,
0: ये क्या
1: तो
0: समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
1: गर्भाशय रहता गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में 2 गर्भनलिकाएं रहती है, और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, थर्टी
0: जी
1: ट्वेंटी एट थर्टी। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
0: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है? क्या ऑपरेशन होता है या दवाओं
1: वो
0: से ठीक
1: सिस्ट
0: होता
1: तो
0: है?
1: नेचुरल सिस्ट, तो मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं। नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है,
0: जी,
1: होते हैं।
0: तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो,
0: सुरमई अखियों में नन्ना
1: नन्ना
0: मुन्ना
1: मुन्ना
0: एक
1: सब
0: सपना दे
1: सपना।
0: जा रहा। सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: मौजूद है। डॉक्टर हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ चलो, तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है। उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं, और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन दे के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: IUI क्या है
1: आईयूआई
0: बताइए।
1: है, इंट्राउटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं।
0: जी के
1: आईयूआई जब
0: माध्यम से।
1: करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो, और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजियोस्पर्मिया उसको जो बोलती है, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है,
0: लैब
1: और
0: से भी डोनेट
1: हाँ
0: करवा
1: डोनर
0: लेते
1: डोनर
0: हैं
1: कर
0: जी।
1: देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है, पेशेंट को नहीं, पेशेंट को पता नहीं रहता। ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ, आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: वो जो
1: और
0: परक्टली
1: हाँ सीरिज,
0: बच्चा है।
1: हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं। और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में ट्रांसफर
0: तो
1: करते हैं।
0: इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर, फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस,
0: जी
1: और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है। क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, वो उस समय कैसे, फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा
0: और
1: पेनफुल प्रोसीजर रहता है,
0: हाँ
1: तकलीफ तो होती है उनको, लेकिन
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता है?
1: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है। और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में,
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं अभी तो सब लैब टेस्ट टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकेंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट लास्ट है,
0: जी
1: लास्ट स्टेप है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते।
0: जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ होती है, पीसीओडी में पीरियड्स ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है, ये भी होता है।
0: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी
1: हाँ
0: और
1: नींद की कमी, डाइट, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है,
0: जी
1: हार्मोनल इम्बैलेंस प्लस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: कम
0: होती
1: हो
0: है,
1: जाती है स्केंट में,
0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो
0: जी
1: महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
0: तो
1: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
0: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
1: तो इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है
0: क्या कुछ
1: यूटेरस में,
0: खतरा होता है?
1: हाँ यूटेराइन कैंसर भी होता है एंडोमेट्रियम के।

0: कैंसर और इसका कैंसर हो सकता है बाद में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा।
1: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे?
0: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और कैंसर का डर पैदा होता है, तो ऐसा कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है
1: जी।
0: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका
1: जी।
0: हाँ कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी
0: सिस्टिक
1: हाँ
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है।
1: यूरिन के रास्ते से यूरिन पानी आता है ऐसा?
0: हाँ वो अलग चीज है, यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो वाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है
1: जी।
0: हाँ।
1: तो उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है।
1: जी तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी
1: ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना
0: हाँ।
1: है, सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ।
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जिसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेज़र कर देते मशीन से, हेयर लेज़र रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है इसका थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठी जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मैमोग्राफी?
1: मैमोग्राफी कर,
0: तो
1: मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, FNAC, नीडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत होता है,
1: होते हैं।
0: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से ही, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसे, वो इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
0: जी,
1: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए
0: जी,
1: अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है हॉबीज है कुछ, उस पर ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
0: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब बाहर निकलने के लिए।
0: जी,
1: पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है।
0: बिल्कुल,
1: पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक जीवन शैली।
0: डॉक्टर आशा लता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक। संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप विविध भारती मुंबई के प्रसारण सुन रहे थे। शाम के 5 हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

हम सफ़र। साथियों, हम सफ़र एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में साथ, भरोसा और अपनेपन का एहसास जाग उठता है। हम सफ़र वो होता है जो हमारे साथ चलता है, हमारे साथ निभाता है और हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। अक्सर लोग हम सफ़र का मतलब सिर्फ जीवन साथी से जोड़ते हैं, लेकिन असल में हम सफ़र कोई भी हो सकता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, गुरु या कोई ऐसा इंसान जो मुश्किल वक्त में हमारा हौसला बढ़ाए, वो भी हमारा हम सफ़र है। दरअसल ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है। इस सफ़र में कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी चुनौतियां। ऐसे वक्त में अगर कोई हमारा हाथ थाम ले, हमें समझाए और हमें समझे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे, तो सफ़र आसान हो जाता है। एक अच्छा हम सफ़र मंजिल तक पहुंचने का हौसला भी देता है।

सफ़र, हम सफ़र। हम बात कर रहे हैं उस हम सफ़र की, जो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, गुरु हो, या कोई भी ऐसा इंसान जो हमारा साथ देता है, हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। साथियों, हमें भी किसी ना किसी का एक अच्छा हम सफ़र ज़रूर बनना चाहिए। दूसरों की बात ध्यान से सुनना, उनका सम्मान करना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करना और मुश्किल वक्त में उनका साथ देना, यही एक अच्छे और सच्चे हमसफ़र की पहचान होती है। और साथियों, कभी कभी रास्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अच्छी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इसलिए रिश्तों में विश्वास, प्यार और सम्मान बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, और यही बातें किसी भी रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती हैं और उस रिश्ते को हमेशा कायम रखती हैं। याद रखिए, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो सफ़र होता है जिसमें साथ देने वाला एक अच्छा हम सफ़र हो। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों की कदर कीजिए जो हर मुश्किल में आपके साथ रहे, आपका साथ दिया, आपका हौसला बढ़ाया और आपको आगे बढ़ने की सीख दी। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन का हर सफ़र खुशियों से भरा हो और आपको हमेशा अच्छे हम सफ़र मिलें, क्योंकि साथियों, ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। किसी की ज़िंदगी 4 पल की है तो किसी की 2 पल की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
2: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
1: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
2: आपातकाल में साथ निभाए,
1: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
2: 112।
1: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
2: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
1: यदि चाहिए पुलिस सहायता
2: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
1: बुलाना हो एम्बुलेंस को
2: मिटाकर हर सस्पेंस को,
1: डायल 112।
2: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
1: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
2: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
1: या फिर भेजें ईमेल always use 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
2: जब घेरे कोई भी आपदा,
1: तुरंत मिले सहायता,
2: डायल 112।
1: चिंता से पाएं छुटकारा,
2: पुष्पा झुकेगी नहीं,
3: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
4: एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे, तरस जाओगे बूंद बूंद को, जो व्यर्थ में जल को बहाओगे।
5: बिन पानी जीवन बदहाली, पानी से ही है खुशहाली।
6: जल है असली सोना, इसको कभी मत खोना।
4: अगर चाहते हैं भविष्य सुरक्षित बनाना, तो बेहद जरूरी है जल को बचाना।
5: पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा।
0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम यूंवाणी में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो साथी आफताब खान
1: और मैं नव्या अग्रवाल। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और सुन रहे होंगे अपना दैनिक कार्यक्रम यूंवाणी में। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किस मंत्रालय की पहल है?
0: दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किस मंत्रालय की पहल है? इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने जवाब, और सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों का नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के अंत में।

0: आफताब, आजकल हर जगह वन महोत्सव सप्ताह की बात हो रही है। लोग पेड़ लगा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन क्या तुमने ये जानते हो कि एक छोटा सा बीज भी पर्यावरण बदलने की ताकत रखता है? और इसी सोच से जुड़ा है सीड बॉल का आइडिया।
1: बिल्कुल नव्या, सीड बॉल यानी मिट्टी और बीज से बनी छोटी गेंदें, जिन्हें खाली ज़मीन पर डाल दिया जाता है। बारिश होने पर ये बीज पौधों में बदल जाते हैं। ख़ास बात यह है कि इसे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है।
0: लेकिन आफ्ताब, कई लोग सोचते हैं कि पेड़ लगाना बहुत मुश्किल काम है, जगह चाहिए, समय चाहिए, देखभाल चाहिए, लेकिन सीड बॉल इस काम को बहुत आसान बना देती है।
1: बिल्कुल नव्या, और ये सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। इससे हरियाली बढ़ती है, मिट्टी मजबूत होती है, पक्षियों और जानवरों को सहारा मिलता है और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है।
0: आफ्ताब, अगर कोई तुम अगर ये बॉल बनाना चाहते हो तो ये बहुत सिंपल तरीके से बन सकती है। 3 हिस्सा मिट्टी लेना, 1 हिस्सा गोबर या कंपोस्ट लेना और उसमें अपनी पसंद का बीज मिला देना।
1: फिर थोड़ा पानी डालकर छोटी छोटी गेंद बना लीजिए। इनसे धूप में रखिए और बाद में किसी खाली स्थान पर डाल दीजिए। बारिश आते ही प्रकृति अपना काम शुरू कर देगी।
0: वन महोत्सव सप्ताह हमें सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझाने की सीख देता है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा नव्या, अगर हर व्यक्ति इस सप्ताह कुछ सीड बॉल्स बनाकर फैलाए तो आने वाले समय में हजारों नए पौधे उग सकते हैं। ये एक छोटी सी कोशिश है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। दोस्तों, अपने दोस्तों और अपने परिवारों के साथ भी सीड बॉल्स बनाने का आइडिया ज़रूर शेयर कीजिए और हरियाली बढ़ाइए, क्योंकि आज लगाया गया एक बीज आने वाले कल को बेहतर और सुरक्षित बना सकता है। प्रकृति बचाइए, पेड़ बढ़ाइए और पर्यावरण को अपना साथी बनाइए।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाड़ी में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता, शिक्षाविद और राष्ट्रवादी विचारक की जिन्होंने भारत की राजनीति और राष्ट्रीय एकता को एक नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जिनकी आज जयंती भी है।
3: साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षावादी और कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बचपन से ही डॉक्टर मुखर्जी पढ़ाई में बेहद तेज थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी अलग पहचान बना ली थी।
0: साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बाद में इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। सिर्फ 33 साल की उम्र में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वे चाहते थे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा सके।
3: दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ एक शिक्षावादी नहीं थे, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक नेता भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी।
0: आजादी के बाद जब देश का पहला मंत्रिमंडल बना, तब उन्हें उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया। उन्होंने देश के औद्योगिक विकास के लिए कई अहम कदम उठाए, लेकिन कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
3: साथियों, डॉक्टर मुखर्जी को सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर उनके विचारों के लिए याद किया जाता है। उस समय जम्मू कश्मीर में अलग संविधान, अलग झंडा और अलग व्यवस्था लागू थी। डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि एक देश में अलग अलग कानून और प्रतीक नहीं हो सकते।
0: साथियों, इसी सोच के साथ उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पूर्ण एकीकरण की मांग को लेकर आंदोलन भी किया। साल 1953 में बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान ही 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु आज भी चर्चा और इतिहास का महत्वपूर्ण विषय मानी जाती है।
3: डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि देश की एकता, शिक्षा, संस्कृति और आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी है। वो हमेशा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की बात करते थे।
0: उनकी जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम

0: कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में उनके जीवन और विचारों को याद किया जाता है। लोग उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में याद करते हैं जिन्होंने अपने विचारों के लिए संघर्ष किया और देशहित को सबसे ऊपर रखा।
1: दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक व्यक्ति भी देश की सोच और शिक्षा को प्रभावित कर सकता है।
0: तो आइए उनकी जयंती पर हम भी देश की एकता, शिक्षा और जिम्मेदार नागरिकता का संकल्प लें।

0: आइए साथियों अब बात करते हैं विश्व जूनोसिस दिवस की, जो हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को उन बीमारियों के बारे में जागरूक करना है जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं।
1: दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिरकार जूनोसिस होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो ऐसी बीमारियाँ जो जानवरों से इंसानों तक पहुँचती है, उन्हें जूनोटिक डिसीज कहा जाता है, जैसे कि रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियाँ।
0: आपको बता दें कि दुनिया में फैलने वाली कई नई बीमारियों का संबंध जानवरों से रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 75% नए संक्रमित बीमारियाँ जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है।
1: साथियों बात करते हैं बचाव की। सबसे पहले अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं तो उनका समय समय पर टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी है।
0: जानवरों को छूने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं, खुले में रखा खाना या अतपका मांस खाने से बचें, बीमार जानवरों से दूरी बनाए रखें और आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें।
1: अगर किसी जानवर के काटने या खरोंचने की घटना हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, खासकर रेबीज जैसी बीमारी में देरी खतरनाक साबित हो सकती है।
0: दोस्तों हमें ये भी समझना होगा कि जानवर हमारी जिंदगी और पर्यावरण का अहम हिस्सा है। जरूरत है सुरक्षित और जिम्मेदारी भरे व्यवहार की।
1: तो दोस्तों इस विश्व जूनोसिस दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम खुद भी जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि सही जानकारी और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।
0: साथियों कुछ खास है आज में, आज बस इतना ही।
2: कुछ ख्वाबों की बात, कुछ अपनों का साथ, नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।

0: साथियों अब चलते हैं आज की बात युवाओं के साथ में, जिसमें आप सुनेंगे कनिष्का गुप्ता जी को।
1: साथियों हमारी आज की बातचीत में हमारे साथ जुड़ रही हैं कनिष्का गुप्ता। कनिष्का जी, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, आप हमारे युवा साथियों को अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम कनिष्का गुप्ता है और मैं रामपुर से हूँ। मैंने अभी अपना कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 92% अंकों से पास करी है और इस समय मैं बीए में जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ।
1: तो जैसे कि आपने भी बताया कि आपने क्लास 12th बोर्ड में 92% जो कि एक काफ़ी सम्मानजनक स्कोर है, उसके साथ आपने अपना 12वीं का परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो इसके पीछे की क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी?
2: स्ट्रेटेजी तो सिंपल थी, बट रेगुलर पढ़ाई के साथ हम 92% आराम से ला सकते हैं। जैसे कि बच्चे बहुत मिस कर देते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं है, कि जैसे स्कूल लगे, स्कूल मिस कर दिए, पढ़ाई नहीं करी, टीचर पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो वही फील रहता है ना कि हमें रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए और टीचर से इतनी परेशानियां पूछनी चाहिए। अगर लगातार आप दिन में 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी एग्जाम टाइम में, वो भी एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कनिष्का जी, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, तो इसमें आपकी क्या राय है?
2: ये तो बहुत बढ़िया है और मैंने स्मार्ट वर्क के साथ ही अपने और स्मार्ट वर्क ही करा है मैंने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने टीचर से पूछे थे, मतलब दिन में 2-3 घंटे सफिशिएंट।
1: तो कनिष्का जी, जैसे कि आजकल बच्चे स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी लगाते हैं, काफी ट्रेंड में है, तो क्या बिना कोचिंग के भी बच्चा ये मार्क्स अचीव कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, बिना कोचिंग के हम पढ़ाई कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, ऑनलाइन अच्छे खासे हमारे डाउट सॉल्व हो सकते हैं, हमें परेशानियां आराम से सॉल्व हो सकती हैं हमारी, हम जो कुछ सर्च करेंगे हमें आराम से मिल जाएगा, तो क्यों इतना भागा दौड़ी करना हमें ट्यूशन के लिए।
1: जी तो कनिष्का जी, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं अब?
2: मैंने तो अभी कॉलेज में, मैंने अभी बीए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ।
1: अच्छा, आपका बीए करने का इरादा है इसके बाद, तो उसके पीछे का हम रीजन या वजह जान सकते हैं कि आपने बीए ही क्यों चूज किया?
2: क्योंकि मेरे पास 12th में ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस, विशेषज्ञ, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट रहे हैं, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन, मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन यही लगा।
1: अच्छा अच्छा, हाँ तो कनिष्का जी, जैसे आपने बताया कि अभी आपने 12th किया, इसके बाद आप बीए में एनरोल हो रही हैं, तो अल्टीमेटली बीए के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं?
2: मैं कार्टोग्राफर बनना चाहती हूँ।
1: तो जैसे कि हमारे जिन श्रोता साथियों को नहीं पता, क्या आप उन्हें बताएंगी कि क्या होता है
2: कार्टोग्राफर? वो होते हैं कि हमें डिजिटल हमारे फोनों में जो हम मैप देखते हैं वो असलियत में बनते कहते हैं, ठीक है, हमने एक पेपर पे मैप का नक्शा बना दिया, हमें वहां वहां जाना है, बट ऑनलाइन कैसे बना कि लोग अचानक से एकदम ऑनलाइन खोल के मैप देख लेते हैं, अरे हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो वो असलियत बनते कैसे हैं, उसके पीछे की रिसर्च क्या होती है और उसके अंदर काफी डिटेलिंग होती है, और अर्बन सेक्टर का करना, गांव का इलाका कैसे बना है, शहरी इलाका कैसे बना है, तो वही सब।
1: जी जी, अच्छा तो कनिष्का जी, कोई आखिरी संदेश जो आप हमारे युवाओं को देना चाहेंगी?
2: अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग आप सबको लगातार पढ़ाई करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए 2-3 घंटे, ये नहीं कि एग्जाम आ गए तो हमें एग्जाम में ही पढ़ना चाहिए 6 घंटे की लगातार पूरे दिन पढ़ रहे हैं, बट हमें लगातार पढ़नी चाहिए तो आप आराम से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और अपने डाउट जरूर पूछना चाहिए, अपनी परेशानियां हमेशा पूछनी चाहिए, ये नहीं कि आपने परेशानियों का खूब सारा पहाड़ बना दिया फिर वो एकदम से आप पूछ रहे हैं, हाथ के हाथ पूछिए।
1: कनिष्का जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
2: जी धन्यवाद।
0: साथियों, कनिष्का गुप्ता जी ने हमें बताया कि कैसे दिन में 2-3 घंटे पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको उनके विचारों से जरूर कोई ना कोई प्रेरणा मिली होगी।
1: आइए साथियों, आनंद लीजिए हमारे साथ इस गीत का।

0: साथियों, बढ़ते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट करियर डायरी की ओर, जिसमें हमारा पहला सब सेगमेंट है साप्ताहिक रोजगार समाचार।
1: दोस्तों, हमारी आज की पहली जॉब अपडेट है MPESB कृषि विस्तार अधिकारी रिक्रूटमेंट 2026, जिसमें अगर कुल पदों की बात करें तो 2784 पद हैं। और आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन आवेदन 3 जुलाई 2026 को शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है। इसी के साथ इसमें आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और आवेदन करने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। आइए दोस्तों, बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो आपको बता दें कि उम्मीदवारों के पास भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर बात करें इसके आवेदन शुल्क की, तो सामान्य कैटेगरी के लिए ₹560 है और ओबीसी एससी एसटी के लिए ₹310 है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं esb.mp.gov.in पर।
0: साथियों, हमारी अगली जॉब अपडेट है दिल्ली हाई कोर्ट हायर जुडिशियल सर्विसेज HGS रिक्रूटमेंट 2026। पदों की कुल संख्या 27 पद है। बात करें आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है। साथियों, आयु सीमा की बात करें तो आवेदन की न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 45 वर्ष। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ डिग्री यानी कि LLB होना चाहिए और वे भारत के किसी भी बार काउंसिल से अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। साथियों, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवारों को कम से कम 7 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है। बात करें आवेदन शुल्क की, तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹2000 और एससी एसटी के लिए ₹500 है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: साथियों, हमारी अगली

0: जो 30 वर्ष है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹850 और SC ST के लिए ₹175 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: साथियों, हमारी आखिरी जॉब अपडेट है UP SSSC हवलदार परीक्षक भर्ती 2026। पदों की कुल संख्या है 209 पद। बात करें आवेदन की तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि 19 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 9 जुलाई 2026 तक है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की तो उम्मीदवारों के पास UP SSSC पैट 2023 का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए और उन्हें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बात करें आवेदन शुल्क की तो सभी वर्गों के लिए शुल्क समान है ₹25। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट UPSSC.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जॉब अपडेट्स में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने अगले सब सेगमेंट स्टार्टअप की ओर।
2: दोस्तों, आज के समय में लोग खाने के स्वाद के साथ साथ शुद्धता भी ढूंढते हैं। मार्केट में मिलने वाले कई प्रोडक्ट में मिलावट की खबरें सुनने को मिलती हैं और इसी वजह से लोग अब फिर से देसी और पारंपरिक चीज़ों की तरफ लौट रहे हैं। इसी बदलती सोच के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है एक शानदार बिजनेस मॉडल, फार्म टू होम देसी घी स्टार्टअप।
1: दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर फार्म टू होम का मतलब क्या है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है पारंपरिक तरीके से शुद्ध देसी घी तैयार करके सीधा ग्राहकों तक पहुँचाना।
2: आज शहरों में लोग हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। ऐसे में देसी घी का बिजनेस एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है।
1: साथियों, आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है। सबसे पहले जरूरत होती है अच्छे दूध और भरोसेमंद डेयरी नेटवर्क की। अगर किसी गांव में दूध उत्पादन अच्छा है तो वहीं छोटे स्तर पर शुरुआत की जा सकती है।
2: इसके बाद पारंपरिक तरीके यानी बिलोना विधि के जरिए घी तैयार किया जाता है, फिर साफ सुथरी पैकिंग और ब्रांडिंग के साथ इसे बाजार में बेचा जा सकता है।
1: साथियों, आजकल लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, हम उनकी कहानियाँ खरीदते हैं। अगर ग्राहक को ये पता चले कि घी सीधा गांव से आया है, कैसे बना है और कितना शुद्ध है, तो भरोसा तेजी से बढ़ता है।
2: दोस्तों, सोशल मीडिया ने छोटे बिजनेस को भी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो और ग्राहक रिव्यू शेयर करके आसानी से मार्केटिंग की जा सकती है।
1: साथियों, इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको FSSAI लाइसेंस, ब्रांड रजिस्ट्रेशन और सही सप्लाई सिस्टम पर भी ध्यान देना जरूरी है।
2: अगर सही क्वालिटी और ब्रांडिंग हो तो देसी घी सामान्य घी की तुलना में काफी अच्छे दाम पर बिकता है। कोई छोटे स्टार्टअप आज लाखों में कारोबार कर रहे हैं और गाँव के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।
1: दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं है, ये किसानों को सीधा बाजार से जोड़ने, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने और लोगों तक शुद्ध भोजन पहुंचाने का भी काम करता है।
2: तो दोस्तों, फार्म टू होम देसी घी स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं बल्कि परंपरा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को जोड़ने वाला एक नया अवसर है।

0: साथियों बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर, यानी कि स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब की ओर। हमने आपसे सवाल किया था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स किस मंत्रालय की पहल है, और इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी।
1: उत्तम सिंह, नानक खन्ना, नानंद कुमार, सुदर्शन शाह, प्रखर शाह, पल्लवी शाह, नीति शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह, फागुराम यादव, जॉन डी कैस्ट्रो, अशोक सिंह, भागवत चौबे, ओम गिरवाड, भाई रफत साहब, हिरमानी वर्मा, रियासत हुसैन सिद्दीकी, अजीत कसाना, बीपी गौतम, आफ्ताब अंसारी, बलवंत कुमार वर्मा, हाजी गफ्फार खान, बलबेश पवार, बोधराज खोरवाल, लाल मोहम्मद अंसारी, गजानन येले, सुरेश जायसवाल, भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, मोहम्मद जाहिद अली, शकील अहमद इदरीसी, नवी हसन अब्बासी, विनोद बरासा, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, राष्ट्रपाल गजभैये, सोहन जोशी, शाहजी भोटके, सिद्धार्थ गोंडाने, रामकुमार रिवार, निसार सलमानी, मुजफ्फर अली खान, रामशरण, विमल सक्सेना भारती, संजय ढींगिया, चौधरी राजवीर सिंह, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, धर्मेंद्र छिपा, कमल बालूजा, सोनू जी, विठल सुरोशे, लक्ष्मण, नारायण लाल साहू, मसरूर हसन, अजीत भावसार, हुकुम करमकर, विनोद मुनत, मोहम्मद सईद अब्बासी, उदय सिंह ठाकुर, गुरमीत सिंह, सुरेश गनेजा, भुवन प्रकाश, सुनील पाठक, गंगा सिंह रावत, अरविंद कुमार, जाकिर मंसूरी, परवीन चौहान, मोहम्मद यमीन, मोहम्मद यासीन, आकाश रस्तोगी, धीरज भाई राबरी, राधेश्याम पांडे, शाहरून नूर अंसारी, राजवीर सिंह यादव, रवि रस्तोगी, राजू मिगलानी, मिसबा शमसी, अब्दुल गफ्फार खान, विठल सुरोशे, दुर्गाराम साहू, उमेश कुमार, अनोखे लाल, नवी हसन अब्बासी, अनोखे लाल, दुर्गाराम साहू, शकील अहमद इदरीसी। दोस्तों आप सभी ने दिया है सवाल का सही जवाब।
0: साथियों, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल योजना है, जिसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान बनाना है। इस प्रणाली में छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। जब कोई छात्र किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय से कोई कोर्स पूरा करता है तो उसके क्रेडिट्स ABC में आ जाते हैं, जिनकी उपयोग बाद में डिग्री पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ दे या डिजिटल कॉलेज बदलना चाहे तो उसके क्रेडिट सुरक्षित रहते हैं। ये योजना नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शुरू की गई है और छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करती है। साथियों अब बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताना ना भूलिएगा। हमारे इस पते पर, हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवाड़ी अनुभाग द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901।
1: साथियों, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, हमारा नंबर है 9410087876। आप हमें ईमेल के द्वारा भी बता सकते हैं। साथियों, हमारा ईमेल एड्रेस है patrmila@rampur.gmail.com।
0: तो दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त अपने रेडियो साथी आफताब खान
1: और नव्या अग्रवाल को कार्यक्रम संपन्न करने की। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव वाणी। कार्यक्रम पेश कर रही थी नव्या अग्रवाल और आफताब खान। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं
2: ये समय है गुमशुदा सूचनाओं का।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती धूपा देवी, पति श्री राजपाल, निवासी धनगांव, थाना बिलसांडा, पीलीभीत, जो दिनांक 1 मई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया, उम्र करीब 27 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य, चेहरा गोल, काली आंखें, ऊंचाई करीब 4 फीट 5 इंच, रंग सांवला, बाल काले, हरे रंग की साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। यदि किसी को भी इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया इन नंबरों पर सूचना देने की कृपा करें। राजपाल 9368911-7872, जांच अधिकारी 8299106010।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती हिमांशी, पति श्री शिव कुमार, पिता उमरायलाल, बिलासपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत की रहने वाली हैं, जो दिनांक 17 मई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया, उम्र करीब 19 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य, चेहरा गोल, आंखें काली, हरे रंग का सूट पहने हुए हैं, लंबे और काले बाल हैं, ऊंचाई करीब 4 फुट 5 इंच, रंग गोरा है। यदि किसी को भी इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो इस नंबर पर सूचना देने की कृपा करें। 8439171153, 8439171153, सूचना समाप्त हुई।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में राब्ता फिल्म से।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को आपकी बहन मीना
1: और आपके भैया पंकज की
0: राम राम, राम। और सुनाओ पंकज भैया, कैसे हाल चाल है आपके?
1: मीना बहन बढ़िया हैं, और हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान साथी बढ़िया होंगे और अपने जो खेती बाड़ी को जो काम है आपको समय रहते पूरे कर रहे होंगे। मीना बहन
0: हाँ भैया, और इस समय देखो धान की रोपाई चली रही है
1: जी मीना, हाँ, और कुछ लोगों ने रुपाई कर भी दी है।
0: हाँ भैया, और आपने कर ली भैया?
1: हाँ हमने कर ली।
0: अच्छा,
1: लगभग 8 दिन है मीना बहन। हाँ, और मीना बहन एक चीज और है, देखो जो बरसात को मौसम है वो पूरे रंग में है।
0: हाँ भैया,
1: कहीं खेतों में धान की रुपाई चल रही है तो कहीं मक्का बाजरा अरहर उड़द की जो फसलें हैं वो लहरा रही हैं।
0: हाँ भैया,
1: ऐसे समय में थोड़ी सी लापरवाही भी नुकसान कर सकती है मीना बहन।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: और थोड़ा सा ध्यान अगर हम कर लेंगे ना तो पैदावार अच्छी भी हो सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा पंकज भैया, किसान भाई सुबह से शाम तक खेतन में मेहनत कर रहे हैं।
1: हाँ मीना बहन,
0: लेकिन मेहनत तभी रंग लाएगी जब समय पर सही कृषि कार्य भी किए जाएं।
1: जी
0: इस समय ना भैया पंकज भैया
1: जी बहन,
0: हाँ खेतन में कौन कौन से जरूरी काम करना चाहिए?
1: और मीना बहन अभी सबसे पहले हम अगर धान की बात कर लेना तो जिन किसानों ने रुपाई कर दी है वे खेत में पानी को जो स्तर है जरूरत के हिसाब से रखें, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम वाको मतलब बराबर मात्रा में रखेंगे तभी सही है ना।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: क्योंकि लगातार अगर हमारे खेतों में पानी ज्यादा भरो रहेगा तो जो पौधों की जो बढ़वार है वो रुक जाएगी, और जब पौधों की बढ़वार रुक जाएगी तो फिर पैदावार भी कम हुई।
0: हाँ बिल्कुल भैया, और पंकज भैया ना
1: जी बहन,
0: और एक बात किसान भाई जरूर याद रखें,
1: का
0: रोपाई के बाद खेत में जो खरपतवार तेजी से निकलता है ना
1: जी,
0: अगर समय रहते उनकी सफाई नहीं की गई तो वही खरपतवार खाद और पानी का बड़ा हिस्सा खा जाएंगे, इसीलिए समय पर निराई गुड़ाई या जरूरत के अनुसार खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे।
1: बिल्कुल बात सही है मीना बहन, और मीना बहन देखो एक चीज की और ध्यान रखना आवश्यकता है, जिन किसान साथियों में मक्का की फसल वाले जो किसान हैं तो वे भी खेत में अपने पानी न रोकने दें।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: बरसात के दिन में होता ना कि जल निकास की व्यवस्था थोड़ी सही नहीं हो पाती, और जब अपने खेत में जो ध्यान रखें कि जल निकास की व्यवस्था जरूर सही रखें, क्योंकि साथ ही मक्का के जो पौधों की जो जड़ों पर हल्की मिट्टी जरूर चढ़ा दें, बासा होएगा का इससे पौधे ज्यादा गिरेंगे ना।
0: हाँ भैया बिल्कुल, और भैया जैसे अरहर उड़द और मूंग की फसल में भी समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें, कहीं पत्तियां मुड़ती दिखें, कीट दिखाई दे या रोग के लक्षण नजर आए तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें, बिना सलाह के कोई भी दवा ना छिड़कें।
1: बिल्कुल बात सही कही, और साथियों देखो आजकल हमारे मोबाइल पर भी कृषि विज्ञान या कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह आसानी से मिल जाती है, और अगर हमारे किसान साथियों को समस्या है तो वे हमारे आकाशवाणी रामपुर में फोन करके जिस दिन हमारे कृषि संघ का समाधान आता है वह दिन फोन करके वे अपने समस्या समाधान पूरा कर सकते हैं।
0: हाँ भैया बिल्कुल, और पंकज भैया ना
1: जी बहन,
0: बरसात के मौसम में एक और जरूरी बात है,
1: वो कौन सी बहन?
0: खाद का संतुलित प्रयोग। कई बार किसान भाई सोचता है ना
1: जी
0: कि ज्यादा खाद डालेंगे तो ज्यादा पैदावार होगी।
1: अच्छा
0: हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मिट्टी की जाँच के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना सबसे अच्छा रहता है भैया।
1: हाँ ये बात बिल्कुल सही कही आपने, और अगर नैनो यूरिया या जैव उर्वरकों प्रयोग कर रहे हैं ना हमारे किसान साथी,
0: हाँ।
1: तो बाकी देखो सही मात्रा में सही समय पर ही इस्तेमाल करें।
0: हाँ भैया,
1: क्योंकि इससे क्या होगी कि लागत भी हमारी कम होगी, हम सही मात्रा में प्रयोग करेंगे और जो फसल को वो अच्छा लाभ मिलेगा।
0: बिल्कुल भैया, और किसान साथियों बारिश के साथ साथ कीट और रोग भी बढ़ जाते हैं, इसलिए सप्ताह में एक दो बार खेत का चक्कर जरूर लगाएं, जितनी जल्दी समस्या पकड़ में आएगी उतनी जल्दी उसका समाधान हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात कही, और मीना बहन एक चीज और है कि जिन भैया बहनों ने हमारे किसानों ने सब्जियां लगाई हैं,
0: हाँ,
1: है ना,
0: हाँ,
1: वे भी ध्यान रखें।
0: हाँ, वे तो भी जरूर ध्यान रखें,
1: हाँ, कि खेत में पानी जमा न हो।
0: हाँ बिल्कुल,
1: क्योंकि सब्जी वाली फसल बड़ा नाजुक होती है, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, भिंडी है, तो बाकी समय रहते समय समय पर निराई गुड़ाई करता है, और रोग कीट की भी निगरानी जरूर करा रोजाना।
0: और पंकज भैया ना
1: जी,
0: जो हमारे भैया पशु पाल रहे हैं ना,
1: हाँ,
0: बरसात में सबसे पशु उनका खास ध्यान रखें।
1: हाँ बिल्कुल सही बात,
0: साफ पानी पिलाएं, सूखा चारा रखें, और जहाँ गौशाला है ना उनकी
1: जी,
0: नियमित सफाई करें, गीली जगह पर पशु बांधने से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं भैया।
1: देखो मीना बहन ये बात आपने हमारे मन की कह दी, क्योंकि मीना बहन आपने जहाँ पशुपालन की बात करी ना, तो हम सब लोग जानते हैं कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के साथ ही है।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: खेत से हम चारों मिलता है हरो
0: हाँ।
1: और पशुओं से गोबर, जिससे जैविक खाद बनती है और दूसरा फायदा मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी बढ़ती है।
0: और भैया वह दूधो मिलता है।
1: हाँ मीना बहन बिल्कुल सही बात करी आपने।
0: पंकज भैया एक और जरूरी बात।
1: का बहन?
0: बारिश के दिनों में खेत की मेड़ मजबूत रखें।
1: अच्छा,
0: इससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा और वर्षा का पानी खेत में ही रुकेगा, जिसका फायदा फसल को मिलेगा। भैया
1: बिल्कुल सही बात है। और एक बात और रखें मीना बहन, अगर कहीं तेज बारिश या लगातार बादल बने रहें तो मौसम विभाग की जानकारी जरूर लेते रहें और उसी के अनुसार हमारे जो किसान साथी हैं वे खेत में काम करें। और मौसम की जो जानकारी है ना वो हम अपने आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान साथियों को रोज साझा करते हैं।
0: हाँ भैया, अब उसके लिए समय रहते रोज
1: सुने
0: हमारे किसान भैया और उसको फायदा
1: ले। हाँ
0: पंकज भैया, कुल मिलाकर यही कहेंगे कि इस मौसम में समय पर रोपाई, संतुलित खाद, खरपतवार नियंत्रण, कीट रोग की निगरानी, जल निकास और खेत का नियमित निरीक्षण, ये 6 बातें अगर ध्यान में रख ली जाएं तो अच्छी पैदावार की उम्मीद काफी बढ़ जाती है।
1: अरे बहन जी, आपने तो हमारे किसान साथियों को ये 6 बातें बहुत अच्छी बात बताई है।
0: हाँ भैया,
1: साथियों इन्हीं 6 बातों जरूर ध्यान रखें आप, क्योंकि जब समय बरसात का मौसम चल रहा है हम कौन से समसामयिक अपनी फसलों में कार्य करें, तो इन्हीं बातों को ध्यान रखें। और साथियों मेहनत आपकी है, साथ वैज्ञानिक खेती को है, यही सफलता की पहचान है। छोटी छोटी सावधानियां बड़े लाभ को रास्ता खोलती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आज की जो बात आई वो हमारे साथियों को जरूर पसंद आई होगी। और मीना बहन,
0: हाँ भैया,
1: हम रोजाना कोई ना कोई दिवस तो मनाते हैं।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: तो आज और कौन सी चर्चा में आप बात कर रही हैं?
0: आज हमारे दूसरी चर्चा को विषय है भैया विश्व ग्रामीण विकास दिवस।
1: अच्छा बहन।
0: हाँ
1: तो बिल्कुल मीना बहन, हम अपने गांव पहले जैसे ना रहे अब।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: क्योंकि खेतों में नई तकनीक आई गई।
0: हाँ भैया,
1: किसान उन्नत बीज अपना रहे हैं, सिंचाई के बेहतर साधन बढ़ रहे हैं और कई किसान खेती के साथ डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम भी कर रहे हैं, इससे आमदनी के नए रास्ते खुल गए हैं।
0: सही कहा भैया। और गांव का विकास सिर्फ अच्छी सड़क या बिजली तक ही सीमित नहीं है। जब किसान की फसल अच्छी होगी, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और युवाओं को अपने गांव में ही काम मिलेगा, तभी असली ग्रामीण विकास होगा भैया।
1: और मीना बहन,
0: हाँ भैया,
1: हमारी जो सरकार है ना वो कई योजनाओं का लाभ भी गांव तक पहुंचा रही है।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं।
0: हाँ भैया,
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं और किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से किसान मिलकर अपनी उपज को बेहतर दाम भी प्राप्त कर रहे हैं।
0: एक बात और भैया।
1: का बहन?
0: हमें अपने गांव को साफ सुथरा रखना है, पानी की एक एक बूंद बचानी है, मिट्टी की जांच करानी है और संतुलित मात्रा में खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना है। इससे खेती भी टिकाऊ बनेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: तो हमारा आज को जो उद्देश्य हो वो जय है।
0: हाँ,
1: कि गांव का विकास तभी हो साथियों जब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, नई जानकारी अपनाएंगे, सरकारी योजनाओं को लाभ उठाएंगे और अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे।
0: हाँ,
1: तो हम तो मीना बहन हम प्रण लेते हैं कि हम भी आज अपने गांव को साफ सुथरा बनाएंगे और अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मीना
0: भैया बिल्कुल।
1: तो साथियों हम सब लोग खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं, लेकिन खेती बाड़ी में हम ऐसे कौन से कार्य करें जो हमें अधिक लाभ दें, क्योंकि जो पुरानी परंपराएं हैं वे उनको हम थोड़ा थोड़ा कम करके अपनी नई तकनीकी अपनी खेतीबाड़ी में लेकर आ रहे हैं। और ऐसी हम किस प्रकार की खेती करें जिससे हमारे किसान साथियों को अधिक से अधिक लाभ हो, तो साथियों इसी से संबंधित हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता जाको विषय है मिश्रित एवं अंतर्वर्ती खेती के लाभ। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं वो दे रहे हैं श्री अविनाश चौहान जी और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे हैं हमारे भैया जसवेंद्र सिंह। तो साथियों सुन लेते हैं जो भेंट वार्ता।
2: हमारे ज्यादातर किसान साथी फसल लेने के बाद ये बोलते हैं कि बहुत सारी हमने लागत लगाई खेती में और उसके बावजूद भी हमें बहुत अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ऐसा रह जाता है हमारे किसान साथियों के बीच कि जो वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ऐसे ही कई सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री अविनाश चौहान जी को। चौहान जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: सबसे पहले हमारे किसान साथियों के दिमाग में ये बात रहती है कि हमने उत्पादन लेने के लिए बहुत सारी खाद दी, रासायनिक क्रियाएं की, उसके बावजूद भी हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण ऐसा रहता है। आज हम आपसे बात करेंगे मिश्रित और अंतर्वर्ती खेती के बारे में। सबसे पहले हमारे किसान साथियों को थोड़ा सा ये बताइए कि मिश्रित अंतर्वर्ती खेती है क्या आखिरकार।
3: देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मिश्रित खेती की, तो बहुत सारी आप आज के समय में देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे सूखा पड़ने की संभावना हो रही है या मौसम का बदलाव हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि हमें किसान को ये श्योरिटी नहीं है कि वो उसकी फसल एक प्रकार की चलेगी या नहीं चलेगी
2: जी।
3: तो उसमें वो किसान जो है एक फसल के साथ में दूसरी फसल के बीज मिला करके उनकी बुआई करता है, जिसमें अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मौसम का, तो उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं दूसरी फसल जो कि मिश्रित फसल के रूप में बोई है वो उसकी फसल बच जाए
2: जी।
3: जिस तरह से जैसे सूखे से जो प्रभावित करने वाली फसलें होती हैं उनको हम मिला देते हैं
2: जी।
3: जैसे हमने बाजरे की फसल है जो अधिक सूखे की मौसम में भी चल जाती है
2: जी।
3: तो इस फसल को हम अन्य फसलों के साथ में मिलाकर हम जब बुआई करते हैं तो उसे मिश्रित खेती में हम लेते हैं।
2: ऐसे ही बात होती है अंतर्वर्ती। वर्ती खेती क्या है हमारे किसान साथी नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए।
3: अंतर्वर्ती खेती जो है जिसको हम इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं, यह एक बहुत ही अच्छी प्रकार की खेती है जिसमें हम एक ही समय में एक से अधिक फसलों को ले सकते हैं
2: जी।
3: हम अपना उत्पादन एक ही समय में एक ही इकाई वाली जमीन से हम कई गुना उसको बढ़ा सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, बात आती है जैसे आपने बताया कि मिश्रित खेती में हम एक ही समय में दो या तीन फसलों को एक साथ बोते हैं। हमारे किसान साथी कभी यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी फसल के साथ कौन सी फसल ली जाए ताकि जो उनका उत्पादन है उस पर प्रभाव ना पड़े, तो थोड़ा सा ये बताइए कि कौन सी फसलों के साथ हमारे किसान साथियों को कौन सी फसलें लगानी चाहिए।
3: देखिए, जब हम बात करते हैं मिश्रित खेती की, तो मिश्रित खेती में हमारा उद्देश्य होता है कि अगर मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हमारी कोई एक फसल बच जाए
2: जी।
3: जिसमें हम कोशिश ऐसी करते हैं कि अगर एक फसल हमारी ऐसी है जिसकी जड़ें ऊपर रहती हैं, तो दूसरी फसल हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि जिसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, जो कि प्रतिकूल मौसम में भी हमारी फसल चलती रहे। वहीं जब हम अंतर फसली की बात करते हैं, इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं, तो उसमें जो उद्देश्य होता है वो यह उद्देश्य रहता है कि जो जगह है, जो हमारी फसल उगाने की जो जगह है, बीज की जो जगह है, उसका उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके, जमीन का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके, सूर्य के प्रकाश का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक पैटर्न के साथ में हम खेती करते हैं, मतलब कि आप ये लगाइए कि अगर हम दो लाइनें गन्ने की लगाएंगे तो उसके साथ में दो लाइनें सरसों की या मटर की या फिर किसी अन्य दलहनी फसल की हम उसमें लेते हैं, जिसका उद्देश्य रहता है उत्पादन को बढ़ाना
2: जी। जैसे आपने बात करी एक पैटर्न पे फसल लगाना है, तो मिश्रित फसल में क्या ऐसा कुछ रहता है कि उसमें भी हम पैटर्न का उपयोग करें?
3: नहीं, देखिए, मिश्रित फसल में जैसा मैंने आपको पहले बताया, मिश्रित फसल में क्या है कि अगर हम प्रतिकूल मौसम कहीं पड़ता है तो प्रतिकूल मौसम में हमारी ऐसी फसल जो कि खराब मौसम के प्रति ज्यादा सहनशील है वो फसल बच जाए, उस फसल के बीजों को हम अन्य फसल के बीजों के साथ में मिला के लगाते हैं और इन बीजों को पहले ही हम एक साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम अंतर फसल की बात करते हैं तो इसमें जो है अलग अलग बीजों को रखा जाता है, बीजों को शुरुआत में मिलाया नहीं जाता।
2: जैसे आपने बात कही मिश्रित खेती और इंटरक्रॉपिंग की, इसमें दो तरह की या तीन तरह की जो फसलें आपने बताई कि लगा सकते हैं हमारे किसान साथी, तो फसलें चाहे कोई सी भी हों, देखा जाता है कि कीट और बीमारी आना निश्चित है
3: जी।
2: तो हमारे किसान साथी उसमें कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें?
3: देखिए, जो हम अगर हम अंतर फसल की बात करते हैं तो इंटरक्रॉपिंग में अंतर फसल प्रणाली में हम अलग अलग फसलों पे अलग अलग कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको एक डेफिनेट पैटर्न में लगाया है। दो लाइनें हमारी अगर गन्ने की लगी हैं, उसके साथ में दो लाइनें हमारी सरसों की लगी हैं, तो यदि हमें सरसों पे कोई किसी प्रकार का रोग या कीट का प्रभाव आता है तो हम सरसों के ऊपर उसमें कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर हम मिश्रित खेती की बात करते हैं तो मिश्रित खेती में हम बीजों को बुआई से पहले ही इसमें मिला लेते हैं, तो उसके कारण क्या है कि हमें इस तरह के कीटनाशकों का उपयोग करना होता है जो कि दोनों ही फसलों पे हम जिसका उपयोग कर सकें, जिसका किसी भी फसल पे कोई नुकसान ना हो।
2: बात सिंचाई की करें तो सिंचाई का प्रबंधन हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि जो मिश्रित खेती है उसमें तो हमने बीजों को पहले ही मिला लिया है, लेकिन अगर इंटरक्रॉपिंग अगर हमने की है तो कभी कभी कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है और कुछ फसलों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो वहां कैसे प्रबंधन करें हमारे किसान साथी?
3: जी, अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो इसमें अगर हम जो फसलें ऐसी हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है तो हम उसको बेड के ऊपर बना लगाते हैं जो थोड़ा ऊंचाई पे रहता है, वहीं जो जिन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है उन फसलों को हम ट्रेंच में हम उनको लगाया जाता है
2: जी,
3: जिसमें हम जब सिंचाई अगर हमें ज्यादा जिस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता है उसे पानी उसमें सिंचाई करनी है तो हम सिर्फ ट्रेंच में पानी देते हैं, उसी पानी से जो है हमारी पूर्ति उस फसल की भी हो जाती है जिसमें हमें पानी की आवश्यकता कम रहती है
2: जी। बात आती है जैसे बुवाई से पहले जो बीज चयन करते हैं उनमें किस तरह के बीजों का चयन करें ताकि हमारे जो किसान साथी हैं अच्छे से इंटरक्रॉपिंग और मिश्रित जो खेती है फसल है उससे अधिक उत्पादन ले सकें।
3: देखिए, हमें इसमें अंतर फसली प्रणाली है तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि किसी भी फसल का दूसरी फसल के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए
2: जी।
3: जो प्रभाव होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि एक फसल दूसरे फसल की बढ़वार में सहायता प्रदान करे। जैसे कि अगर हम अनाज की फसलें ले रहे हैं, जैसे हम मक्का अगर ले रहे हैं, मक्का के साथ में हम दलहनी फसलों का चुनाव करना चाहिए ताकि जो है जो हमारा वातावरण में नत्रजन है वो हमारी अनाज वाली फसलों को मिल सके
2: जी।
3: ठीक है, इसी तरह से जो दलहनी फसलें होती हैं इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं तो ये गहराई से जो है अपने जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में गहराई से पोषक तत्वों को ले सकती हैं। वहीं जो ऐसी फसलें हैं जिनकी जड़ें ऊपर रहती हैं वो जड़ें ऊपर ही सतह से अपनी फसलों में पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं।
2: कई बार देखा जाता है कि कुछ फसलें जल्दी तैयार हो जाती हैं और कुछ फसलें देर से पकती हैं यानी कि देर से तैयार होती हैं, तो क्या इसका भी हमारे जो फसल उत्पादन है उस पर प्रभाव पड़ता है?
3: जी बिल्कुल, जब हम अंतर फसल की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक फसल ऐसा होता है कि जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कि अगर हम गन्ने के साथ में हम बात करते हैं तो गन्ने की फसल हमारी एक साल तक करीब चलती है, 10 से 12 महीने 14 महीने इस तरह से हमारे खेत में रहती है। वहीं इसके साथ में हम जो अंतर फसल हम लेते हैं, जैसे हमने अगर सरसों ली है या मटर ली है या दलहनी किस्म की फसल ली है या फिर सब्जी में हम इसमें प्याज और आलू लेते हैं तो ये फसलें 3 से 4 महीने में हमारी पूरी हो जाती हैं। वहीं अगर मिश्रित खेती की बात करें तो मिश्रित खेती में क्या होता है कि ज्यादातर जो फसलें होती हैं उनकी कटाई एक ही साथ होती है और उसमें क्या है कि जो कटाई की प्रक्रिया होती है वो हाथों द्वारा ज्यादा की जाती है।
2: अच्छा, बात अगर हम करें अंतर फसल और मिश्रित फसल से तो इन दोनों जो खेती हमारे किसान साथी कर रहे हैं उनसे किस तरह से फायदेमंद हो सकते हैं यानी कि जो उत्पादन में जो लागत है उसको कैसे कम कर सकते हैं?
3: जी देखिए, अगर हम अंतर फसल की बात करते हैं तो इसमें हम जो भी हम इनपुट दे रहे हैं चाहे वो खाद है या फिर कीटनाशक जो हम दे रहे हैं तो वो दोनों फसलों के लिए काम करता है
2: जी।
3: ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि हमें एक फसल तो हमें जो मिलनी है वो मिलनी ही मिलनी है, उसके साथ ही उसी की लागत में हमें दूसरी फसल अधिक पैदावार के साथ में मिल जाती है जो कि एक अन्य आय के रूप में कार्य करती है।
2: डॉक्टर साहब, इसके अलावा बात आती है जैसे आपने अंतर फसल और मिश्रित खेती के बारे में जो बात करी, हमारे किसान साथी किस तरह से इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और कहां कहां पर कौन कौन सी और मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान रखना आवश्यक रहता है?
3: देखिए, जब हम बात करते हैं अधिक उत्पादन की, जब किसान को हमें अधिक उत्पादन देना है तो हमें बात करते हैं अंतर फसल खेती
2: जी।
3: ठीक है, वहीं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे मौसम का प्रतिकूल प्रभाव रहता है, जहां पे सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है, तो प्रतिकूल मौसम का एक खतरा है, उस जगह पे हम बात करते हैं मिश्रित खेती की
2: जी।
3: ठीक है, तो जिन जगहों पे हमें उत्पादन अधिक लेना है उन जगह पे हमें मिश्रित अंतर फसली खेती पे जाना चाहिए। इसमें क्या है कि किसान हमारा कम लागत के साथ में एक फसल की लागत के साथ में एक से अधिक फसल ले सकता है।
2: बात करें हम अगर जो आपने बताया कि अंतर फसल में हम जो चयन कर रहे हैं अपनी फसलों का उनमें कुछ और बातें भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कुछ फसलों को ऐसे भी हमारे किसान साथी बो देते हैं जिनमें बहुत अधिक बीमारियां लगती हैं तो जो हमारी मुख्य फसल है वो भी प्रभावित होती है, तो इन यहां पर हमारे किसान साथियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
3: देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फसलें हमारी ऐसी होती हैं जिनमें अधिक बीमारी लगती है, अधिक रोग लगता है, परंतु हम उसको इस तरह से नहीं देखते हैं। जैसे अगर हम गन्ने की बात करते हैं, गन्ने के संग में जब हम दलहनी फसलों को हम उपयोग करते हैं तो जो कीट हैं गन्ने की फसल के ऊपर आने वाले होते हैं, वो कीट जो है हमारे दलहनी फसलों के ऊपर जाते हैं। तो वो एक तरह से हमें तो लग रहा है कि जैसे कि दलहनी फसलों में ज्यादा कीट लग रहे हैं, परंतु वो एक तरह फायदा हमारी मुख्य फसल को फायदा देता है कि हमारी मुख्य फसल में जो है किसी भी प्रकार का कीट का जो प्रकोप है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उस कीट के लिए अधिक जो उत्तम फसल है, जो दलहनी फसल है, वो उसके ऊपर पहले जाता है। उसके ऊपर कीटनाशक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो कीट को हम अपनी जो सह फसल हमने खेती कर रखी है उस फसल के साथ ही रोक सकते हैं, मुख्य फसल में उसका प्रकोप देखने को कम मिलता है।
2: कई बार हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि जो मुख्य फसल है, चाहे बात गन्ने की करें या कोई अन्य फसल की बात करें, उसके साथ औषधीय फसलों को भी चयन करते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसी औषधीय फसलें भी हैं जिनमें कीट और बीमारी जो मुख्य फसल है उसमें भी कम कर देते हैं। तो हमारे किसान साथियों को वहां पर किस तरह से उनका प्रबंधन करना चाहिए?
3: देखिए, औषधीय फसलों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि हमारे पास में किसान के पास में क्या मांग है
2: जी,
3: किस क्षेत्र में किस तरह की औषधीय फसलों की मांग है, क्योंकि औषधीय फसलों के साथ में सबसे बड़ी जो चीज है वो है उसकी मांग
2: जी,
3: वो कहाँ पे उसको विक्रय कर सकता है, किस तरह से उसको स्टोर कर सकते हैं
2: जी।
3: ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा सबसे पहले कि किस तरह की फसलों को हमें उगाना है साथ में।
2: डॉक्टर श्री अविनाश चौहान जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान साथियों को मिश्रित एवं अंतर्वर्ती खेती के जो लाभ हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी, और हमारे किसान साथी आपके द्वारा बताई गई बातों को अपने जो फसल है उसमें उपयोग करते हुए लाभ ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
0: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, मिश्रित एवं अंतर्वर्ती खेती के लाभ जानकारी दे रहे थे श्री अविनाश चौहान, और इनसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे थे हमारे भैया जसविंदर सिंह।
1: और भैया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी पसंद होगी और इसको वे लाभ जरूर उठाएंगे।
0: हाँ भैया, बिल्कुल।
1: और बहन, जब बात लाभ की आती तो क्या होते?
0: मनोरंजन को।
1: तो आप आज मनोरंजन में हमारे किसान साथियों को सुन पा रही हूँ।
0: हम भैया अपने किसान साथियों के लिए मनोरंजन में लेके आए हैं एक प्यारा सा लोकगीत के बोल हैं चरखा वाली तेरा चरखा, और इसे सुर दो है सोनका व अमित जी ने।
1: तो साथियों, सुनवाते हैं आपको जी लोकगीत।

0: चरखने वाली तेरा चरखा बोले हरिबोल। इसी आपने लोकगीत सुना। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोकगीत हमारे किसान साथियों को जरूर पसंद आए होगा। और मीना बहन, आज क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में आप क्या बता रही हो हमारे किसान साथियों को?
1: भैया, हम क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत किसी न किसी गांव में पहुंचते रहते हैं और किसान भैया तक अपनी जानकारी वहां से करा के पहुँचाते रहते हैं।
0: जी बहन, बिल्कुल।
1: और इसी बीच में हमारे पंकज भैया गए थे गांव खिलका फतेहगंज पश्चिमी में, और वहां बात करी थी श्री प्रेमपाल जी से, और बात करी थी आम के बागों की देखभाल किस तरीके से की जाए, इसी संबंध में सुनते हैं जब बातचीत।
0: साथियों, आज हम आए हैं एक गांव में, जो गांव को नाम है खिरका, जो फतेहगंज पश्चिम में पड़ते हैं। यहाँ हमने एक भैया जी से बातचीत करी। भैया का नाम है आपको?
2: हमारा नाम है प्रेमपाल।
0: आप जब खिरका गांव के निवासी हो?
2: जी, खिरका गांव के निवासी हैं,
0: जिसको ब्लॉक जो है वो फतेहगंज पश्चिम पड़ता है। प्रेमपाल भैया, आपके पास लगभग कितनी जमीन है?
2: हमारे पास जमीन तो ज्यादा ना, ऐसी 8-10 बीघा जमीन है।
0: आप कौन कौन सी फसल करते हो उन खेत में?
2: वैसे बटाई ठेका हम और करते हैं, जमीन करते हैं हम 30-40 बीघा। ज्यादातर गन्ने करते हैं, गेहूं भी करते हैं, धान ना करते हैं मतलब।
0: और इसके अलावा आप क्या करते हो?
2: इसके अलावा तो सही काम है हमारा, आम के बाग,
0: आम के बाग का काम है। साथियों, हम सब जानते हैं आम फलों का राजा कहे जाते हैं, क्योंकि आम में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, पोटेशियम व कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और साथियों, देखो आम को सीजन चल रहा है, भैया जी कह रहे हैं कि हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो आम के बागों का है। भैया, हम देख रहे हैं कि आपका आम का बाग लगभग 20 बीघा है ये, तो आपके बाग में कौन कौन सी प्रजाति के पेड़ हैं?
2: हमारे इसमें चौंसा भी है, लंगड़े के भी हैं, बम्बई के भी हैं, दशहरी के भी हैं, कटहा के भी हैं, 2-4 पेड़।
0: इस समय आपके बाग में जो आम गिर रहा है वो कौन सी किस्म का गिर रहा है?
2: इस समय गिर रहा है दशहरी।
0: तो भैया, ऐसा क्यों कि दशहरी पहले पकता गया?
2: सबसे पहले पकता है बम्बई। आधी सीजन जब बम्बई हो जाती है उसके बाद में दशहरी चालू होती है। दशहरी की आधी सीजन हो जाएगी उसके बाद में लंगड़ा चालू होगा, लंगड़े की आधी सीजन हो जाएगी उसके बाद में चौंसा चालू होगा।
0: बम्बई आम आपका बेच दिया आपने?
2: आम हाँ, इसमें बिक गया तोड़ के,
0: तो वो पका कर बेचा आपने?

0: कच्चा बम्बई बेच
1: दिया। पकाकर बेचा हमने,
0: कुछ बाग मालिकों का मतलब दिया था, कुछ बचा वो हमने अपने बेच दिया।
2: और इस समय जो आम चल रहा है वो आपके बाग में दशहरी का आम चू रहा है।
0: हाँ, दशहरी का चू रहा है इस समय
2: भैया। की जो मार्केट में जो वैल्यू है आम की, सबसे ज्यादा महंगा आम आपका जो बाजार में कौन सा बिकता है?
0: देखो, समय समय पे हर चीज की वो है। जब शुरुआत बम्बई की होती है तो बम्बई और हिसाब की बिकती है बढ़िया।
2: अच्छा,
0: उसके बाद में शुरू में दफेरी चलती है, उसका रेट सही होता है। फिर बम्बई के बाद जब लंगड़ा चलता है पालगा, तो दफेरी फिट जाती है, लंगड़ा चालू हो जाता है। और चौसा तो सबका राजा है ही।
2: चौसा आम अच्छा माना जाता है?
0: कोई आम ही नहीं रहता है फिर तो उसी के पैर लगना है।
2: तो चौसा आम बढ़िया होता है, क्योंकि कहा जाता है कि चौसे में जो होता है मीठापन ज्यादा होता है, तो वो आपका आम महंगा बिकता होगा भैया।
0: हाँ, लास्ट में जब जो चीज नहीं रहेगी, माल है थोड़ा, लेने वाले हैं सारे, तो वो तो महंगा बिकेगा ही।
2: अच्छा।
0: और खान का भी टेस्ट अलग है।
2: तो आपने कहा भैया इस समय आपके बाग में दशहरी, लंगड़ा और
0: चौसा
2: है।
0: हाँ।
2: तो मैं बात करूं, इस समय आप उनकी देख रेख के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हो?
0: देख लेख के तो ऐसा है, अब ये बाग टूट जाएगा जो भी है। तोड़ने के बाद इसमें सुड़ी वाली एक तो लगेगी स्प्रे, क्योंकि चौमासे के महीने में सुड़ी लगती है, कल्ली खा लेती है। ठीक। उसके बाद में सुड़ी की स्प्रे के बाद में इसके थौले बनकर डीएपी वगैरह है तो एमपी भी लगा देते हैं, मिक्स लगा देते हैं, कैल्शियम एक आता है मिक्सचर बोलते हैं जैसे, वो लगा देते हैं। थौले बनाए, वो डाली या थौले पाट दी, बात खत्म। पूरे चौमासे जब पानी पीता है तो बढ़िया उसका कलर ही अलग बनता है।
2: थौले को पाट देते हो?
0: हाँ।
2: तो जो पाटने का कारण क्या है इसमें?
0: पाटने का कारण ये है, डीएपी ऊपर से आप कितनी भी डाल दें, जब तक मिट्टी में नहीं मिलेगी इसकी गैस होती है, मिट्टी में मिलेगी जब ही असर करेगी।
2: तो जुताई का तो कोई ऐसा भी कार्य नहीं है कि हम जुताई कर पाए इस बात की?
0: हाँ, तोड़ने के बाद जुताई भी होगी, सबसे पहले नंबर तो जुताई है। हाँ, मर्जी है कि बारिश के बजाय गीला है, नहीं जुत पा रहा है, तो स्प्रे मार दो, थौले बना दो, जैसे ही उठ दोगे उसके बाद में जोत दो।
2: आम की तुड़ाई की बात करूं तो तुड़ाई करते समय आप फल का ज्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए आप क्या क्या कार्य करते हो?
0: देखो, तुड़ाई में तो ऐसी है, इस समय गीली मट्टी है
2: जी।
0: ठीक, पेड़ के तले लकड़ी पड़ हुई नहीं हो, ना कोई उठकुर्रा हो, तो आप तले गिरा सकते हैं अमिया को।
2: अच्छा।
0: कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगी, सिर्फ अमिया पर अमिया नहीं गिरना चाहिए।
2: अच्छा। हाँ। ज्यादातर लोग जो है वो झाले से आम तोड़ते हैं,
0: झाले जब तोड़ते हैं, जब मट्टी खरार में जो पिछला टाइम निकल गया मट्टी टाइट थी, जो अमिया तले गिर गई वो खत्म है।
2: अच्छा।
0: ऐसा बन जाता है उस जगह,
2: बेचने में आपको दिक्कत आती?
0: हाँ, दिक्कत आती, नुकसीला हो गया वो तो भी,
2: क्योंकि नुकसान होगा। और ये भी देखते हो आप क्या, किस समय हमें फल को तोड़ना है और किस समय फल को नहीं तोड़ना है? तो ऐसा भी कोई इसमें वो होता है कि हम जब बारिश का मौसम हो तब फल को तोड़ना चाहिए, या बारिश का मौसम ना हो तभी फल को तोड़ना चाहिए?
0: तोड़ने का तो ऐसा बात है, बहुत से लोग देखते हैं महंगाई। ठीक, मगर सबसे पहले कायदा तो ये है, अगर बाग का माल लेना है और बाग कल्याणा है, तो बाग अगर कच्चा माल तोड़ोगे तुम, छुआओगे नहीं, तो वो बाग कल्याएगा, उसकी जानदारी अलग रहेगी।
2: अच्छा, दूसरे साल आएगा बाग।
0: हाँ, और उसे अगर छुआओगे बाग को तो उसकी जानदारी कम हो जाती।
2: हाँ, वो बात तो ठीक है आपकी। और भैया, इस बार हमारा कुछ दिनों पहले आंधियां भी आई थी, आम के बागों में मौसम का क्या प्रभाव पड़ा?
0: पर्याप्त पड़ा, देखो मौसम का तो ये पर्याप्त पड़ा, ये आंधी तूफानों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे बाग में तो फली कम था, है जो भी था ऊपर वो सब सारा गया गिर।
2: हाँ,
0: दशहरी, दशहरी की जो थी बम्बई तले की, ऊपर का माल गिर गया, मतलब अदवर पेड़ से ऊपर का तो सब झड़ गया, तले का माल रह गया। और टाय फाय डोंगे फटना, पेड़ टूटना, वो तो एक मतलब तूफान, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है।
2: अच्छा भैया, बस हम एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे किसान साथी खेती बाड़ी तो करते हैं सब लोग, लेकिन कुछ लोग हमारे किसान साथी सोच रहे हैं कि भैया हम इस सीजन आम के पेड़ लगाएंगे
0: जी।
2: तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे प्रेमपाल भैया, कि जो हमारे किसान साथी आम का बाग लगाने चाहें, तो उन्हें लगाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और एक बीघा में लगभग कितने पेड़ लगाना चाहिए?
0: देखो, पेड़ तो वैसा है कितना ही लगा दो, लंगड़े का पेड़ जो है सही 16 मीटर पर लगना चाहिए।
2: हाँ, लगभग एक बीघा में कितने पेड़ आ जाएंगे?
0: कितने पेड़? 4 पेड़ बढ़िया है
2: सही, मतलब लंगड़े के।
0: लंगड़े,
2: और अगर कोई बम्बई लगाना चाहता है, दशहरी
0: लगा दे, तो उसमें दशहरी है तो उसमें 6 भी लगा देते हैं, 7 भी लगा देते हैं, 5 भी लगा देते हैं लोग।
2: और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वो पेड़ कब लगाएं, इस मौसम में लगाएं, जुलाई में लगाएं, या कुछ दिन बाद लगाएं?
0: देखो, अभी जो है पिछले दौर में जो अभी कल्ली आई थी उसमें
2: जी,
0: ठीक
2: जी,
0: तो पौध होती है उसमें भी ताजी कल्ली होती है, जब ताजी कल्ली होती है अभी वो पेड़ लाओगे ताजी कल्ली है उसका खतरा रहता है। इस महीने के बाद जब पूरा सारा बाग एंड हो जाए उसके बाद पेड़ ना, वो कल्ली जाती है, जानदारी आ जाती है कल्ली में।
2: मतलब आपका कहना मतलब इस समय जुलाई चल रही है?
0: जुलाई चल रही है, अगले महीने
2: अगस्त में बाग लगाना चाहिए। तो बाग लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: सावधानी क्या, सबसे पहले तो उसमें अगर आपको आपकी पिंडी 1 फीट चौड़ाई है, जी, तो उसमें आप गड्ढा खोदें 3 फीट चौड़ाई का, 3 का खोद लें, 2.5 का खोद लें, 2 का तो जरूरी खोद लें, 2 फीट की चौड़ाई और 1 फीट की चौड़ाई की आपकी पिंडी है उसकी, वो बीच बीच वो गड्ढे में रखें, उसके बाद में मट्टी डाल दें इधर उधर सब, क्योंकि पिंडी को उसमें जब नाजुक बारे निकलते हैं तो उसे मट्टी भरान वाली मिल जाती है, टाइट मट्टी नहीं मिलती। बहुत से लोग करते हैं अगर 1 फीट की उसकी चौड़ाई है पिंडी की, तो 1 ही फीट चौड़ाई गड्ढा खोदा, अब उसमें से जब बारे निकले तो वो टाइट जमीन को कैसे पकड़े, वो हुई गोलमड़ा का पेड़ सूख जाता है।
2: ये चीज को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी आम से संबंधित जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आम के बागों की देखभाल कैसे करें। अब मीना बहन,
3: हाँ भैया,
1: अब समय हो चुको कृषि संकेत को।
3: हाँ भैया, बिल्कुल।
1: तो कृषि संकेत में आज जो हम जानकारी लेके आए हैं अपने किसान साथियों को, वह है जैव पदार्थों का ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग। तो मीना बहन, सुबह के समय हम चौपाल पर बैठे बड़े बड़ी काम की बात कर रहे थे।
3: अच्छा भैया,
1: सोचा क्यों ना वही बात आज आपसे भी साझा कर ले।
3: हाँ भैया, बिल्कुल। पंकज भैया, खेत में काम करते समय अक्सर हम देखते हैं कि पराली, गोबर, सूखे पत्ते, गन्ने की पत्तियां और दूसरे खेती के बचे हुए अवशेष इधर उधर पड़े रहता है।
1: हाँ, पड़े
3: कई लोग इन्हें बेकार समझकर जला देते हैं भैया।
1: बहुत तो जला ही देते हैं, लेकिन पराली तो जलाना चाहिए।
3: बिल्कुल ना जलाना चाहिए भैया।
1: मीना बहन, एक बात बता मैं।
3: हाँ भैया बताओ।
1: आप समय बदल लो।
3: हाँ बिल्कुल बदल लो।
1: यही चीजें जिन्हें हम बेकार समझते हैं ना, आज ऊर्जा को बड़ो खजानों बन रही है वे।
3: हाँ,
1: इन्हें ही जैव पदार्थ या बायोमास कहा जाता है।
3: सही कहा पंकज भैया, हमारे गांव में तो जैव पदार्थों की कोई कमी ना है भैया।
1: अच्छा।
3: हाँ भैया, खेतों के अवशेष, पशुओं का गोबर, पेड़ों की सूखी टहनियाँ, भूसा, धान की पराली, गन्ने की खोई, सबका सही उपयोग करके ऊर्जा बनाई जा सकती है भैया।
1: अच्छा बहन।
3: हाँ भैया,
1: लेकिन बहन एक चीज और है, इसके दो फायदे होते हैं।
3: कहा भैया?
1: पहलू, खेत और गांव साफ सुथरा रहते हैं।
3: हाँ भैया,
1: और दूसरों, गैस, बिजली और ईंधन जैसी जरूरतें पूरी होती हैं।
3: हाँ पंकज भैया, आपने देखा होगा कि पहले गांव में गोबर के उपले बनाए जाते थे।
1: हाँ, बनाए जाते।
3: अब उसी गोबर से बायोगैस प्लांट लगाकर साफ ईंधन तैयार किया जा रहा है, उसी गैस पर खाना बनता है और खर्च भी कम होता है भैया।
1: बिल्कुल भी ना मैं, और सबसे अच्छी बात यह है ना कि बायोगैस बनने के बाद जो घोल बचता है वो बहुत बढ़िया जैविक खाद बन जाता है। यानी एक ही चीज से गैस भी मिल जाती है और खेत के लिए खाद भी,
3: ये दोनों लाभ हो जाते हैं एकदम।
1: जी बहन, बिल्कुल।
3: पंकज भैया, यही तो समझदारी की बात है, खेती के एक चीज का पूरा उपयोग। आज किसान भाई अगर खेत के अवशेषों को जलाने की बजाय उनका सही इस्तेमाल करें तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा भैया।
1: बिल्कुल मीना बहन। और मीना बहन, पराली जलाने से ना जो मिट्टी के अच्छे जीवाणु होते हैं वे मर जाते हैं।
3: हाँ भैया,
1: धुआं फैलता है, हवा भी खराब होती है, जबकि यही पराली अगर बायोमास प्लांट में जाकर काम करती है तो बिजली बनाने के काम में आ सकती है।
3: पंकज भैया, कई जगह किसान मिलकर ऐसे संयंत्रों तक फसल अवशेष पहुंचा रहे हैं और उससे अतिरिक्त आमदनी भी कमा रहे हैं।
1: अच्छा।
3: यानी जो पहले कचरा लगता था ना
1: जी,
3: भाई अब कमाई का जरिया बन गया भैया।
1: अरे मीना बहन, और मीना बहन एक चीज और है, गन्ना उगाने वाले किसान भी ध्यान दे दें।
3: हाँ भी बिल्कुल,
1: क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमारे प्रदेश में तो गन्ना बहुत पैदा होते
3: हैं,
1: चीनी मिले जो होती है ना, जो खोई बस्ती है उससे बिजली बना दी जाती है, और कई जो चीनी मिले हैं वे अपनी जरूरत की बिजली खुद बनाती हैं, और जो अतिरिक्त बिजली होती है वो बिजली विभाग को भी देती है। मीना बहन,
3: पंकज भैया, धान की भूसी, मूंगफली के छिलके, मक्का के डंठल और सरसों के सूखे डंठल भी ऊर्जा उत्पादन में काम आता है, इसलिए इन्हें बेकार ना समझे भैया।
1: और अगर गांव में पशुपालन ज्यादा है ना तो बायोगैस प्लांट लगाना बहुत फायदेमंद हो सकता है।
3: हाँ भैया,
1: इससे रसोई गैस को खर्चों भी घटाए, धुएं से भी राहत मिलाई और महिलाओं की जो मेहनत थी वो भी कम हुई,
3: और खेतों में रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कुछ हद तक कम की जा सकती है, क्योंकि बायोगैस प्लांट से निकलने वाली इसलिए अच्छी जैविक खाद होती है भैया।
1: तो मीना बहन, एक पंथ द्विकाज जाते हैं।
3: हाँ भैया,
1: तो मीना बहन, हम जो देख रहे हैं ना घड़ी की तरफ, अब घड़ी की सुई इजाजत दे रही है कि हम अपने किसान साथियों से और बातचीत करें, तो हम अपने किसान साथियों को कल जो चर्चा का विषय रहा बता दें।
3: हाँ,
1: कल जो चर्चा का विषय रहा है वो रहा है ड्रैगन फ्रूट की खेती से अधिक लाभ कैसे लें। भेंट वार्ता डेयरी फार्म प्रबंधन, जब इस पर जानकारी देंगे डॉक्टर पंकज और उनसे बातचीत करेंगे अनिल कुशल भैया। लोकगीत सुनवा जाए कल आपको कृषि संकेत में, मसाले वाली खेती कर अधिक लाभ कैसे करें। ये बात बताई जाएगी आपको, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुना जाएगा, मौसम की जानकारी दी जाएगी। तो मीना बहन आप घड़ी इजाजत बिल्कुल ना दे रही है, तो चलते चलते हम कल के मौसम की जानकारी अपने किसान साथियों को दे दें।
3: क्योंकि
1: अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। वायुमंडल में आर्द्रता की बात करें तो 80% और हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की उम्मीद है। तो साथियों आज की जानकारी यहीं तक, कल हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई पंकज
3: और अपनी बहन मीना को दे अनुमति। राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। आइए अरविंद गौतम से सुनते हैं शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की भूमिका।
1: हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति विश्व की प्राचीन वैभव संपन्न संस्कृतियों में अद्वितीय है। यहाँ की विविधता, अनेकता में एकता, सह अस्तित्व एवं धार्मिक सहनशीलता की सोच ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए मानवता का संदेश दिया है। यद्यपि वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय समाज के जीवन मूल्यों का अभिन्न अंग है, तथापि यहाँ समय समय पर आए विदेशी प्रवासियों ने आश्रय ही नहीं पाया अपितु यहाँ के शासक भी बन गए। भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक एवं भौगोलिक स्वरूप को जब जब किसी ने भी विद्रूपित करने का कार्य किया, तब तब इस पावन भारत वसुंधरा पर महान विभूतियों ने जन्म लेकर भारत की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने का पुनीत कार्य किया। 20वीं शताब्दी में भारत के बंगाल प्रांत में बंगाल टाइगर के नाम से सुविख्यात महान शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी के घर कोलकाता में 6 जुलाई 1901 को जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो अपने जीवन के 52 वर्षों के अंतिम 14 वर्षों की राजनीति के अल्प समय में महान शिखर पर पहुंचकर भारतीय इतिहास में अमर हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, आधुनिक भारत के ऐसे महान सपूत, शिक्षाविद, राष्ट्रवादी विचारक, समाजसेवी, राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मत था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी संस्कृति एवं वहाँ के जागरूक नागरिकों में निहित होती है। वे ऐसी शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे जो विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ ही साथ उनमें चारित्रिक, नैतिक एवं राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित भावना को विकसित करें। डॉक्टर मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका ही नहीं निभाई अपितु भारतीय सांस्कृतिक मूल्य एवं परंपराओं पर आधारित राष्ट्रवाद को अग्रसर किया। उन्होंने अपने माता पिता के उच्च आदर्शों एवं अनुशासित जीवन शैली को अपनाकर शिक्षा को भारतीय पुनर्जागरण का माध्यम बनाया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने स्नातक एवं कोलकाता विश्वविद्यालय से आंग्ल भाषा में परास्नातक की उपाधि उत्कृष्ट अंकों के साथ उत्तीर्ण की। तदुपरांत वे कानून की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड गए और सन 1926 में बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्षों की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय में सबसे युवा उपकुलपति नियुक्त हुए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एवं नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। उपकुलपति के अपने कार्यकाल में डॉक्टर मुखर्जी ने विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास, दर्शन, संस्कृति को शिक्षा के केंद्र में स्थापित करने का प्रबल प्रयास किया। वे शिक्षा को एकमात्र राजकीय सेवा प्राप्त करने का माध्यम

0: ही नहीं अपितु राष्ट्र के प्रति समर्पित संस्कारवान नागरिक पैदा करने की अवधारणा को साकार करना चाहते थे। उन्होंने सन 1937 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बांग्ला भाषा में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। यह डॉक्टर मुखर्जी जी का भारतीय भाषाओं के प्रति अगाध अनुराग का ही परिचायक है। वे आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के साथ भारतीय परंपराओं एवं मूल्यों के समन्वयकर्ता भी थे। कुशल संगठनकर्ता मुखर्जी जी का अभिमत था कि भारत की नीतियां उसकी संस्कृति परंपराओं और जीवन मूल्यों से जुड़ी होनी चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, पुनर्जागरण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही साथ सामाजिक समरसता के लिए समर्पित था। उनका विचार था कि संस्कृति किसी भी राष्ट्र का केंद्र बिंदु होती है। यदि कोई समाज अपनी संस्कृति एवं लोक परंपराओं से विमुख होता है तो उस राष्ट्र का भविष्य भी प्रभावित हो जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कला, संगीत, योग, आध्यात्मिक दर्शन के पोषक थे। यही कारण है कि भारतीय मूल में जन्मे बौद्ध धर्म के अनुयायी देशों के प्रति उनका विशेष अनुराग रहा है। उनका दृष्टिकोण था कि बौद्ध धर्मावलंबी राष्ट्र भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारिक दृष्टि से आयात निर्यात का हिस्सा बन सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा भाव होने के कारण ही वे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम गैर बुद्धिस्ट अध्यक्ष बने। बौद्ध राष्ट्र लंका, बर्मा, कंबोडिया, तिब्बत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया। डॉक्टर मुखर्जी की सोच थी कि भारत बौद्ध धर्म की मातृभूमि है, जो विश्व को शांति, समता, बंधुता के साथ करुणा मैत्री का संदेश देने में सक्षम है। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गैर कांग्रेसी होकर भी पंडित नेहरू मंत्रिमंडल में प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए, जो इनकी लोकप्रियता का द्योतक है। उस समय राष्ट्र के सामने औद्योगिक एवं आर्थिक निर्भरता की चुनौतियां कम नहीं थीं। ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी निर्णायक क्षमता, अनुभव एवं कौशल से भारत की उद्योग क्रांति में अभूतपूर्व कार्य किए। राष्ट्र के व्यवस्थित औद्योगिकरण के लिए निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों के बीच तार्किक समन्वय की आवश्यकता के वे पोषक थे। उन्होंने भारत के लघु तथा कुटीर उद्योगों को पुनर्व्यवस्थित एवं विकसित किए जाने हेतु अनेक कार्य किए। डॉक्टर मुखर्जी जी ने अपने मंत्रित्व काल में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, वस्तु अनुसंधान केंद्र आदि की स्थापना कराई। राष्ट्र के विकास के लिए सबसे सफल चार परियोजनाओं का शुभारंभ कराया। चितरंजन में स्वचालित इंजन कारखाना, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री लिमिटेड, जेट एयरक्राफ्ट, स्टील रेल कोच आदि की स्थापना में डॉक्टर मुखर्जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने केंद्रीय ऊन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कर छात्रों एवं श्रमिकों को प्रशिक्षित कराए जाने की परियोजना को मूर्त रूप प्रदान किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य को अलग संविधान, अलग झंडा एवं अलग कानून की छूट प्राप्त थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक भूमिका जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण पर रही। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने पर उद्घोष किया था, एक राष्ट्र में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। उनका मंतव्य था कि भारत एक अखंड राष्ट्र है और उसके किसी भी भाग को विशेषाधिकार दिया जाना राष्ट्रीय एकता में बाधक है। नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सरदार पटेल सहित कई केंद्रीय मंत्री नहीं चाहते थे कि डॉक्टर मुखर्जी मंत्री पद से त्याग पत्र दें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के समर्थन में बंगाल से आने वाले केंद्रीय मंत्री श्री केसी नियोगी ने भी अपना त्याग पत्र देकर राष्ट्रीय भावना को प्रदर्शित किया। भारत सरकार से त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ नामक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं पर आधारित राष्ट्रवाद को अग्रसर करना था। स्वतंत्र भारत के 1952 में हुए प्रथम लोकसभा आम चुनाव में उनके 3 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर की धारा 370 के विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में सन 1953 में प्रवेश किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें वहां की तत्कालीन सरकार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक सांसद, विपक्ष के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर मुखर्जी के प्रति इस सरकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं रहा, फलतः वे अस्वस्थ होते गए। अंततोगत्ता 23 जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने जेल में बंदी रहते हुए अंतिम सांस ली। कानपुर में भारतीय जनसंघ के प्रथम वार्षिक समारोह में तत्कालीन राष्ट्रवादी युवा नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना निजी सचिव बनाया था, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार में प्रथम कानून मंत्री रहे पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सत्ता पक्ष के दल के सदस्य न होते हुए भी राष्ट्रहित में नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल हुए। पंडित नेहरू जी की दोषपूर्ण नीतियों के विरोध में ये दोनों नेता अपने अपने विचार प्रकट करते हुए देखे गए। नेहरू सरकार से राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए एक ने हिंदू कोड बिल पारित न कराए जाने के विरोध में तो दूसरे ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 के विरोध में अपना अपना त्याग पत्र दे दिया, लेकिन राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति समझौता नहीं किया। भारतीय राजनीति के इतिहास में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वाभिमान के प्रति समर्पित रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनेता ही नहीं, वे एक विचारधारा, एक आंदोलन और जनमानस, विशेष रूप से युवा वर्ग के हृदय सम्राट थे। स्वदेशी आत्मनिर्भरता, समान नागरिक अधिकार, अखंड सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा सशक्त सरकार का होना जैसे सिद्धांत उनके चिंतन के आधार बिंदु थे, जिनकी भारतीय राजनीति में आज महती आवश्यकता है। आज हम भारतवासी डॉक्टर मुखर्जी जी के त्याग एवं बलिदान के ऋणी हैं। उनके विचारों को आत्मसात कर एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे अरविंद गौतम से शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की भूमिका। कार्यक्रम था विविधा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ये समय है कार्यक्रम विवरण का।

आज शाम हमारे केंद्र से सुनिए 7:31 पर विशेष प्रस्तुति, जो सही हो बात वो बात हम बोलेंगे। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गाता चल। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा सबरस। कलाकार हैं इंदु शर्मा। रात्रि 10 बजे फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो रामपुर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:05 पर कल सवेरे। 6:30 पर कार्यक्रम होगा आज का चिंतन।

कल सवेरे 6:35 पर सुनेंगे डॉक्टर विनय वर्मा से रोग प्रतिरोध क्षमता की जानकारी। कल सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की भाग संख्या 351। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। 7:31 पर कार्यक्रम होगा सुबह सवेरे।

8:45 पर होगा कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गौरव भारत देश के। कल सवेरे 9:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। 10:05 पर कार्यक्रम होगा आपके अनुरोध पर। 10:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर 70 के दशक के फिल्मी गीत।

0: ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रमों की और कल सवेरे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: उत्पादन

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या इंडिया पोस्ट डॉट

0: UV.in पर लॉग ऑन करें।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बताया कि बैठक में चंपत राय की जगह ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव का कार्यभार कृष्ण मोहन को सौंपा गया है।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे।
0: श्री गिरी ने बताया कि न्यास की अगली बैठक 22 तारीख को होगी और उम्मीद है कि तब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बैठक में उस रिपोर्ट पर चर्चा के साथ ही अतिरिक्त ट्रस्टी नियुक्त करने पर फैसला होगा। इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि इस मामले का किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही और सरकारी वकील शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी याचिका उच्चतम न्यायालय में पहले ही लंबित है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला ने याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
2: आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है। 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। और आज स्टार्टअप मिशन गवर्नमेंट

0: टेंडर में सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी, इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
1: वहीं श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल और वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है। उन्होंने बताया कि इस ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर श्रमिकों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा।
2: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है, मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
1: संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। खेल मंत्री गिरीश यादव ने बताया कि बैठक में ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के काली घाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है, आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा लेगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है।
3: महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम सब आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं और सी प्रेरणा के स्रोत ये महापुरुष हम सब के लिए हैं और वही तो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि अगर विकास करना है हमें विरासत का सम्मान करना होगा और विरासत का सम्मान कैसे करना है ये प्रयागराज से ज्यादा कोई नहीं जानता, प्रयागराज ने तो करके दिखाया है।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रेलवे ने काफी प्रगति की है, रेल ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशनों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल, रीठा साहिब आदि, कैलाश और नानकमत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से पीलीभीत के विकास को गति मिलेगी।
4: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है क्योंकि ये ट्रेन से जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
1: इस दौरान श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।

0: आकर रवाना किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी जनपदों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने जबकि पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण। कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओ लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर उम्रलेश शंखधार की जयंती पर विशेष प्रस्तुति, जो सही है बात वो बात हम बोलेंगे। प्रस्तुत करता है असीम सक्सेना।

0: डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार, शब्दों का वो दीप जो आज भी उजाला बांट रहा है। कुछ व्यक्तित्व समय की सीमाओं में नहीं बनते, वो अपनी रचनाओं से, अपने विचारों से, अपनी संवेदनाओं के कारण युगों तक जीवित रहते हैं। हिंदी साहित्य के ऐसे ही विलक्षण गीतकार, गजलकार और जनकवि हैं डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार। 6 जुलाई 1951 को बदायूं जनपद के इस्लाम नगर में जन्मे डॉक्टर उर्मिलेश को साहित्यिक संस्कार मिले अपने पिता जनकवि पंडित भूप राम शर्मा भूप से। शिक्षा पूरी हुई, अध्यापन को कर्म बनाया, लेकिन उनका वास्तविक परिचय उनकी लेखनी बनी। वो मंच के एक ऐसे हस्ताक्षर थे जिनकी वाणी में ओज था, गीतों में करुणा थी और गजलों में सुनाई देती थी समय की धड़कन। डॉक्टर उर्मिलेश की कविता किसी एक विषय तक सीमित नहीं रही। राष्ट्र प्रेम, मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक विसंगतियां, पारिवारिक रिश्ते, प्रकृति, आशा, संघर्ष, जीवन दर्शन, सारे विषयों को उन्होंने अत्यंत सहज भाषा में अभिव्यक्ति दी। कठिन बात भी इतनी सरलता से कह जाते कि श्रोता उसे अपना अनुभव मानने लगते थे। डॉक्टर उर्मिलेश के प्रमुख काव्य संग्रहों में धूप निकलेगी, सोत नदी बहती है, घर बुनते अक्षर, फैसला वो भी गलत था, धुआं चीरते हुए, जागरण की देहरी पर, गंधों की जागीर जैसी कितनी ही कृतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हिंदी गीत और गजल को डॉक्टर उर्मिलेश ने नई ऊंचाइयां प्रदान की। वो आशा के कवि, संवेदना के कवि, जनमन के कवि थे। संघर्षों में भी मुस्कुराने की प्रेरणा देते और मनुष्य को मनुष्य बने रहने का संदेश भी। रिश्तों की गर्माहट और जीवन की सादगी का अद्भुत चित्रण अपनी कविता में करते तो वहीं सामाजिक विडंबनाओं पर तीखा व्यंग भी करते। डॉक्टर उर्मिलेश का योगदान केवल लेखन तक सीमित नहीं था, उन्होंने अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों को नई पहचान दी, नवोदित रचनाकारों को मंच प्रदान किए। बदायूं महोत्सव जैसी सांस्कृतिक पहल उनके व्यक्तित्व की व्यापकता का प्रमाण है। अनेक अलंकारों से वो अलंकृत हुए, यश भारती से उन्हें सम्मानित किया गया। आज जब हम डॉक्टर उर्मिलेश को याद करते हैं तो एक कवि को नहीं बल्कि एक ऐसी साहित्यिक चेतना को नमन करते हैं जिसने शब्दों को समाज की सेवा का माध्यम बनाया। उर्मिलेश जी की कुछ बातें, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें साझा करते हैं डॉक्टर उर्मिलेश के इस कविता पाठ को सुनते हुए।
1: आकाशवाणी रामपुर द्वारा आयोजित शत शत नमन कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग कविताओं के माध्यम से शत शत नमन करना चाहते हैं देश के उन स्वतंत्रता यज्ञ के होताओं का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। हम शत शत नमन करना चाहते हैं देश के उन वीर बहादुर सैनिकों का जिनके कारण हमारी ये स्वतंत्रता आज अक्षुण है और इसकी पहरेदारी में वो सन्नद्ध खड़े हुए हैं। केवल 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए अपने सभी सैनिक बंधुओं को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और देश की आजादी से वास्ता रखते हुए देश के तमाम स्वतंत्र नागरिकों को कहना चाहूंगा

0: हूं तुम्हें देश के जवानों और देश के किसानों को अर्पित कर रहा हूं।
1: वाह,
2: स्वागत
1: स्वागत
0: कि प्यारी धरती से लेके आसमान तक, संस्कृति से लेके अपने

यानी पूरे भारत की पहचान तक, कृषक जवान हम दोनों एक हैं, भारत किसान हम दोनों एक हैं, कृषक जवान हम दोनों एक हैं, भारत किसान हम दोनों एक हैं, कि आराम हराम हम दोनों के लिए, काम से ही काम हम दोनों के लिए, फर्ज हम नाम हम दोनों के लिए, देश तीर्थ धाम हम दोनों के लिए, चाहे शीत धूप चाहे बरसात हो, चाहे खुला दुनिया अंधेरी रात हो, धारे अनुष्ठान हम दोनों एक हैं, भारत की शान हम दोनों एक हैं, कृषक जवान हम दोनों एक हैं, भारत की शान हम दोनों एक हैं। और सैनिक बंधु कह रहे हैं अपने किसान भाइयों से कि मेरा घर और परिवार दूर है, तू भी तो खेतों पे लेटा मजबूर है, मेरी नजरों में जंग का सुरूर है, तेरी नजरों में फसलों का नूर है, सीमा पे खड़ा मैं पहरेदार बन कर, खेतों में खड़ा तू चौकीदार बन कर, दोनों सावधान हम दोनों एक हैं, भारत की शान हम दोनों एक हैं, कृषक जवान हम दोनों एक हैं, भारत की शान हम दोनों एक हैं।

भाई मेरे रक्त बिंदु ज्योतियों की तरह है, कर्म में प्रधान हम दोनों एक है, भारत की शान हम दोनों एक है, कृषक जवान हम दोनों एक है, भारत की शान हम दोनों एक है, ढोलक और बांसुरी तुझे रिझाती है, और मुझे बूटों की परेड भाती है, पूर्वा आकर तुझको जगाती है, पछुआ बारूदी मुझको सुहाती है, मेरा और तेरा मन एक जैसा है, जीवन का हर क्षण एक जैसा है, जिस्म और जान हम दोनों एक है, हम दोनों एक है, कृषक जवान हम दोनों एक है, भारत की शान हम दोनों एक है। अंतिम पंक्तियां हैं कि आए हम देश को जगाए मिलकर।

0: खेत हो या रंग खेत एक जैसा है, फिर आगे अपना विराम कैसा है। बोले सीना पान हम दोनों एक है, भारत की शान हम दोनों एक है, कृषक जवान हम दोनों एक है, भारत की शान हम दोनों।
1: कितनी ओजपूर्ण वाणी थी, कितना प्रभावपूर्ण संदेश था डॉक्टर उर्मिलेश की रचनाओं में। डॉक्टर उर्मिलेश एक कवि तो थे ही, एक पिता के रूप में वो अपने परिजनों की स्मृतियों में हैं। एक मुलाकात डॉक्टर उर्मिलेश की सुपुत्री सोनरूपा विशाल से। जो सही है वो बात बोलेंगे। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है गीतों के सशक्त हस्ताक्षर, अनेक संवेदनपूर्ण विषयों को स्पर्श करने वाले डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार की स्मृति को। कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार की सुपुत्री सोनरूपा विशाल। आपकी मनस्थिति हम इस वक्त समझ सकते हैं कि वो सारी बातें आपके दिलो दिमाग में तैर रही होंगी, जो एक पिता का रिश्ता होता है अपनी बेटी के साथ। और कहते हैं कि पिता का रिश्ता बेटी के साथ जिस गहराई से जुड़ा होता है, उतना बेटे के साथ भी जुड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक पिता के रूप में उर्मिलेश जी कैसे थे और घर पर किस तरह का उनका व्यवहार रहता था, खासतौर से आपके साथ?
2: नमस्कार असीम जी, सबसे पहले आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और एक बहुत भावपूर्ण कार्यक्रम में मैं अपने उद्गार अपने पिता के प्रति अगर व्यक्त कर सकती हूँ तो उसके लिए मैं आकाशवाणी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि असीम जी ने मुझसे पूछा कि एक बेटी और पिता का जो रिश्ता होता है वो कहीं ज़्यादा कोमल होता है बनिस्पत एक बेटे और एक पिता के। एक पिता के रूप में अगर मैं अपने पिता को याद करूं तो वो एक बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों के लिए पजेसिव पिता और बहुत प्रोटेक्टिव पिता, जो वो चाहते थे कि एक मेरी बेटी बहुत सौम्यता संस्कारवान, जैसा एक भारतीय स्त्री का स्वरूप होता है, वो परिपक्व अगर आगे हो बेटी मेरी तो उस स्वरूप में वो अपने आप को देखे और मैं एक ऐसे बेटी का पिता बनूं जिस पर वो गर्व कर सके। उन्होंने अनेक मुक्तक भी ऐसे लिखे हैं। जब हम छोटे होते तब हमें नहीं पता कि हमारा प्रशिक्षण किस तरह से हमारे माता पिता शनै शनै करते हैं अपनी बातों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। उस वक्त हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि ये तो चीज़ें हमें बचपन से ही सिखा दी गई थी जो हमारे जीवन में अब कितनी महत्वपूर्ण है। एक मुक्तक मुझे याद आता है, अगर सही सही मुझे याद आ गया, कि दिव्यताओं ने उसको ढाला है, संस्कारों ने उसको पाला है, सारे रिश्ते हैं पुस्तकों जैसे, बेटी रिश्तों की पाठशाला है।
1: क्या बात।
2: तो ऐसे ही कई सारे मुक्तकों का एक सिलसिला है जो उन्होंने बेटी को दृष्टिगत रखते हुए लिखे हैं। तो अगर मैं अपने जीवन से जुड़े हुए अगर बहुत सारे रिश्तों को देखूं तो मुझे लगता है कि मैं इसको अपना प्रेरक मुक्तक मानूंगी कि सारे रिश्तों को मुझे कैसे सहेजना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण है एक स्त्री के लिए अपने दोनों परिवार, क्योंकि अब मैं विवाहित हूँ, दोनों परिवारों को किस तरह से सामंजस्य बिठाना चाहिए। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पिता ने ऐसी शिक्षाएं मुझे दी और बहुत लाडली थी मैं अपने पिता की, बहुत लाडली।
1: उर्मिलेश जी ने लिखा है कि ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं,
2: मगर

0: के साथ उठना बैठना, बहुत सारे लोगों का काम कराना, क्योंकि एक सिद्ध हस्त एक व्यक्तित्व जो होता है तो लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। जिस गांव से जुड़े थे तो वहां के गांव के लोग अगर आ रहे हैं तो इस तरह से हमेशा बहुत ज्यादा मतलब चेयरफुल एक जिंदगी उन्होंने जी है।
1: कोई भी रचनाकार हो तो उसको सृजन के लिए एक माहौल चाहिए होता है। उर्मिलेश जी को किस तरह का माहौल चाहिए होता था कोई भी रचना लिखने के लिए?
0: उनको जिस तरह का माहौल, ठीक है, हमारी तरफ से अगर कोई माहौल हमें देना होता था तो हमें तो यही कई बार ऑर्डर भी मिलते थे। और जिस वक्त के हम, मैं पुत्री हूँ, उस वक्त अपने पिता से थोड़ा सा एक हमारी एक मतलब दूरी सी रहती थी। इस तौर पे हम लोग मतलब रिस्पेक्ट बहुत करते थे। आज एक जो पेरेंटिंग है वो दोस्ताना व्यवहार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज के समय को देखते हुए। लेकिन एक जो हमारा संस्कार हमें दिया गया था या हमें खुद ब खुद हमारे अंदर जो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो हम पापा की अपने बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और जिस वक्त वो रचनाशीलता में संलग्न होते थे या तो कई बार ऐसा होता था कि हमें बिल्कुल शोर नहीं मचाना होता था। कोई बच्चे बच्चे हम लोग बिल्कुल अपने एकांत कमरे में हैं, अगर कोई कविता वो सृज रहे हैं और उन्हें जल्दी उन्हें सृजनी है। कई बार ऐसा होता था देश में कोई घटना घटी और तुरंत उस घटना पर लिखना उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके बारे में लोग अक्सर अभी भी बात करते हैं। और दूसरी बात है कि जो नैसर्गिक रचनाकार होता है वो हर पल का रचनाकार होता है। उसके मन में किसी पल क्या पता कौन सी, अगर मैं सामने भी अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो अगर मैं भी लिखने वाली एक रूप में अगर अपने आप को देखती हूँ तो शायद हो सकता है मेरे मन में कोई भाव आ जाए और मैं फटाफट मोबाइल पे देख लूं। तो उस वक्त मैं ये देखती हूँ कि मेरे पिता सिगरेट भी पीते थे तो उनके सिगरेट की डिब्बी पर भी गजल लिखी होती थी कई बार। एक बार ऐसा हुआ कि वो भाई साइड में रखी उनके बेड में, वो उसकी जो खाली थी तो वो फेंक दी, तो उन्होंने तुरंत आवाज दी, नहीं इसमें मेरी गजल लिखी हुई है। तो हो सकता है रास्ते में उन्हें गजल ऐसे हो गई याद, मतलब भाव उमड़े तो उन्होंने वहां पे उतार दी। तो मतलब उनका ऐसा कोई विशेष पल नहीं था और नैसर्गिक रचनाकार का कोई विशेष पल होता नहीं, वो हर वक्त एक रचना प्रक्रिया में रहता है।
1: सुन रूपा जी, उनकी कौन सी स्मृति आपके मन में आज भी है वैसी की वैसी?
0: बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत ही सारी स्मृतियाँ हैं और वो अमिट हैं और इतनी ताज़ा हैं जैसे कल ही मेरे साथ वो घटित हुई हैं। एक मैं कविता के रूप में ही वो मैं अपने परिचय दिया करती थी। बहुत मतलब मैं चाहती हूँ कि मधुर स्मृति को ही साझा करूँ। मैं छोटी थी तब से ही मुझे लगता है कि प्रशिक्षण हम कहते हैं ना कि हमें मिलता रहता है, तो मेरे पिता कहते थे कि अपने कविता के माध्यम से ही अपना परिचय दिया करो अतिथियों को। तो कभी अतिथि हमारे यहाँ आते थे और विशेष तौर पर जब कभी, एक बार बलवीर सिंह रंग जी हमारे यहाँ आए थे, हिंदी के बहुत बड़े गीतकार, प्रसिद्ध गीतकार, तो पापा को लगता था कि मैं अपना कॉलर ऊंचा करूं, मैं अपने ये दिखाऊं कि भाई ऐसे ऐसे रचनाकार आ रहे हैं, तो मैं अपने बिटिया को किस तरह से कविता के माध्यम से परिचित करवा सकता हूं अतिथियों से। तो जब मैं आई ट्रे में दो ग्लास रख के और उन्होंने पूछा बिटिया आपका नाम क्या है, तो मैंने वो कविता सुनाई थी, उसका कुछ अंश मैं आपको सुनाती हूँ।
1: स्वागत
0: कि मीतू मेरा नाम है, मेरा नाम जो घर का है वो मीतू है। मीतू मेरा नाम है, पढ़ना मेरा काम है, उर्मिलेश की बेटी हूँ मैं, रितु से जेठी हूँ छोटी बहन, अक्षत मेरा भैया है, घर का कृष्ण कन्हैया है। और इस तरह से मैं बहुत लंबा एक परिचय था, अपनी मम्मी का भी परिचय दिया, मैं पानी की ट्रे लेकर आई हूँ। वो तो अच्छा लगता है उन स्मृतियों को दोहराना, क्योंकि बहुत कोरी स्मृतियां हैं, वो कभी भी धुंधली नहीं होती।
1: क्या कभी साहित्य से जुड़े हुए विषयों, किताबों या समसामयिक परिस्थितियों पर अक्सर उनसे चर्चा होती थी आपकी?
0: मेरी चर्चा तो नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त वही होता है ना कि हम बहुत छोटे थे, तो शायद उसके उस मानसिक स्तर के समकक्ष हम नहीं होते बच्चे तो हमारे। लेकिन चारों ओर किताबों की एक ऐसी दुनिया थी, लाइब्रेरी तो ही थी, उनके बेड के किनारे पर इंडिया टुडे, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सरिता, इस तरह की पुस्तकें, मैगजीन्स रखी रहती थी। चारों तरफ हमारे पढ़ने पढ़ाने का माहौल था और उनका ये मन बहुत करता था कि मेरे बच्चे भी किताबों को पलटें ज़रूर। लेकिन उस समय हम लोग बहुत शैतानियों में इतने ज़्यादा संलग्न रहते हैं तो वो सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन उनके मन में कहीं था कि हमारे बच्चे भी, मेरे बच्चे साहित्य से जुड़े, हिंदी से जुड़े। और एक बार ऐसी बात है, मैं छोटी छोटी कविताएं तो लिखती थी, लेकिन एक बार जब मेरा एक आर्टिकल, मेरी सहेली करके एक मैगजीन आती थी हेमा मालिनी जी की, उसमें मेरा आर्टिकल मैंने चुपचाप भेज दिया, क्योंकि मुझे कभी कभी डर लगता था कि इतने बड़े पिता की संतान हूँ मैं, कहीं अगर मेरे से मेरी लेखनी मैं अच्छा नहीं लिख पाई तो पता नहीं पापा मुझे

0: डांटेंगे कि भाई तुमने क्या लिख दिया। और वैसे भी वो डे टू डे लाइफ में वर्तनी पे बहुत ध्यान देते थे, नुक्ता नहीं लगाया तो उस पर टोकना, चल कैसी रही हो, बोल कैसे रही हो, लिख कैसी रही हो, तो उस चीज पे वो हमेशा मतलब बहुत टोकते। कई बार उन्होंने ये भी है कि मतलब जो चीज आमतौर पर लोग नहीं बोलते, अगर मैं जीने से भी नीचे उतर रही हूँ तो वो टोकना सौंदर्य बोध नहीं है जीने से उतरने का, कायदे सोत्र। तो ये चीजें होती है तो धीरे धीरे संस्कार में ढल जाती हैं। तो मेरी सहेली भी पत्रिका थी, उसमें मेरा आर्टिकल आया था और उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, तब जाके मुझे थोड़ा सा चयन मिला और वो मैंने पत्रिका मैगजीन उनको दिखाई और उसे देखकर वो बहुत खुश हुए, कहीं उनके अंदर एक आशा की किरण जगी कि भविष्य में मेरी बिटिया लिखेगी।
1: एक बहुत मुश्किल सवाल वो ये कि बहुत सारे गीत डॉक्टर उर्मिलेश ने रचे
0: जी।
1: और कवि सम्मेलनों की वो तो शान हुआ करते थे और कहते हैं ना कि कवि सम्मेलन उन्होंने लूट लिया, तो कई कवि सम्मेलन ऐसे थे जो डॉक्टर उर्मिलेश के नाम हुए, उनके बहुत सारे गीत चर्चित भी हुए, बहुत सारे गीत आपको पसंद भी होंगे
0: जी।
1: एक मुश्किल सवाल ये है कि कौन सा गीत ऐसा है जो बहुत ज्यादा आपको प्रेरित करता है, आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है डॉक्टर उर्मिलेश का?
0: बहुत सारे गीत हैं ऐसे और मुझे तो, मैं तो हतप्रभ थी क्योंकि हमारे घर में अगर कोई ऐसे व्यक्ति है, मुझे नहीं पता कि उनका स्टारडम, आज तो यूट्यूब का सोशल मीडिया का जमाना है, लोग रील्स भी वायरल हो जाती हैं और अपने आप को किस तरह से लोग दिखा सकते हैं, बस उस वक्त वो ट्रू स्टारडम मैंने उनका देखा है। एक बार हम लोग हैदराबाद गए थे, जिस तरह से उनका लोग ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लगी हुई थी, तो देखकर वास्तव में ऐसा लगा कि हम सच में किसी स्टार के साथ हैं। और वंदे मातरम एक उनका गीत है, आप लोग उनसे परिचित हैं, और वो गीत ऐसा है जिसने पूरे देश को उस समय एकता के सूत्र में पिरो दिया। और जिस गजल के मिसरे से आपने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक सच्चे साहित्यकार की पहचान भी यही होती है कि वो सत्ता के पीछे ना चले, सत्ता उसके पीछे चले। वो कहते हैं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे।
1: डॉक्टर रुमिलेश की तरह बोलिए
0: उनकी तो आवाज का गर्जन और ओज दूसरी था कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे।
1: एक अपना ही ढंग था डॉक्टर उर्मिलेश का, अपना ही एक अंदाज था, अपनी ही एक शैली थी
0: जी।
1: उनकी जो शैली थी उसको सुनकर ही पता चल जाता था कि ये शब्द किसके हो सकते
0: हैं, किसके हो सकते,
1: और लोग अंदाजा लगा लेते थे डॉक्टर उर्मिलेश के। बहुत सारी बातें इस वक्त आपके जहन में घूम रही होंगी, घूम रही होंगी, तो उसमें से कुछ यादें जो खास इस वक्त आपको बेचैन कर रही हैं,
0: क्या मैं गजल के माध्यम
1: बिल्कुल,
0: से
1: बिल्कुल
0: कह सकती हूँ?
1: बिल्कुल।
0: एक गजल मैंने उनको समर्पित की है, और एक कवि के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, बदायूं महोत्सव के संस्थापक के रूप में आप उनसे परिचित हैं, लेकिन एक पिता के रूप में मैं जैसे आपको परिचय कराना चाहती हूँ वो गजल के माध्यम से। सारी यादों का कुछ सत मैंने उसमें दिया है, एक ग्रंथ की तरह होता है पिता का जीवन।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।

0: कृपिता।
1: सुन रूपा जी, जो कविता आपने सुनाई निश्चित रूप से आंखों में आंसू से तो आ ही गए, और हम महसूस कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा पिता को इस तरह से शब्दों में ढालना। लेकिन ये वर्ष उनका अमृत जयंती वर्ष है
0: जी,
1: 6 जुलाई उनकी
0: जयंती
1: का दिन, और बहुत सारे उनके काम अधूरे भी होंगे, तो आप किस तरह से उनके छोड़े हुए कामों को या उनके आदर्शों को या उनके व्यक्तित्व को या उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं?
0: उनको गए हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, और अनवरत इतने काम न केवल हमारे द्वारा बल्कि उनके प्रशंसकों द्वारा किए जा रहे हैं उनकी स्मृतियों को अक्षुण रखने के लिए। हम अपने शहर की ही मैं अगर बात करूं तो उनके नाम पर एक सड़क भी है, एक मूर्ति भी है, 2 पुस्तकालय भी हैं, और कई सारे भवन हैं, और उनका विद्यालय भी उनको बहुत मन से याद करता है। इस वर्ष ही उनके स्मृति में जो स्मारिका निकलेगी वो स्मारिका उनको उनके नाम रहेगी, और निरंतर कई सारी प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं। मैंने भी एक पुस्तक का संपादन, 2 पुस्तकों का संपादन किया है। एक पुस्तक डॉक्टर उर्मिलेश हिंदी गजल और डॉक्टर उर्मिलेश, क्योंकि न केवल मंचों पर बल्कि अकादमिक स्तर पर भी उनका एक अलग स्वरूप है, एक अलग पहचान है, तो उस पुस्तक को संदर्भ में लेते हुए कई सारे शोध कार्य भी हो रहे हैं। इस वक्त भी लगभग 13 शोध कार्य उन पर उनके काम पर हो चुके हैं। इस समय JNU में, BHU में, वर्धा विश्वविद्यालय में कार्य हो रहे हैं, और उनकी पुस्तकें आज भी इतनी डिमांड में है कि सच में ये लगता है कि इंसान जो कालजयी होता है, जो रचनाकार जिसने अपने वक्त से पहले का सब कुछ अब लिख दिया है, वो बिल्कुल ऐसे रचनाकार है जो आज के वक्त में भी उनकी कविताएं वैसी इंप्लीमेंट होती हैं जैसी तब के वक्त में होती थी। तो निरंतर शोध कार्य के माध्यम से और हमारे शहर में और आसपास भी कई जगह पर उनको याद किया जाता है, उनके जन्मदिवस पर और उनकी पुण्यतिथि पर भी, मतलब कार्यों की जो फेहरिस्त है वो आनंद है, ऐसा है मुझे लगता है।
1: बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही इतना विशाल था कि हर पहलू पर चर्चा की जाए तो समय बहुत लगेगा, लेकिन समय सीमित है
0: जी।
1: सुन रूपा जी के लिए उर्मिलेश जी की बेटी होना क्या मायने रखता है?
0: मुझे लगता है कि अगर मैं हूँ तो उसका कारण डॉक्टर उर्मिलेश है। न केवल मैं उनकी रक्त पुत्री हूँ बल्कि शब्द पुत्री भी मैं हो गई, और अब मैं खुद को पहचान पाई शब्दों के माध्यम से, और वो बीजारोपण अगर बचपन से मेरे अंदर नहीं होता तो शायद मैं खुद को गुम देती है। एक स्त्री होती, कई बार होता है कि हम अपने व्यक्तित्व को रिवील ही नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी बीत जाती है, और कई बार मैंने अपने आप को खोजा कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, कुछ अनुत्तरित रही कई सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं खुद को बयां करती हूँ, लिखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये मैं हूँ, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, क्या पूरी तरह से कारण, मेरे पिताजी हैं।
1: अपनी बातचीत को हम विराम दें डॉक्टर उर्मिलेश के शब्द और आपके स्वर।
0: जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक गज़ल का मतला बहुत ही अप्रोप्रिएट रहेगा इस कार्यक्रम के अंत के लिए, क्योंकि यहीं से जिंदगी फिर से प्रारंभ होगी। बेवज

0: रखिए। तो एक छोटे से जीवन में भी इतना बड़ा जीवन जिया जा सकता है, तो वो डॉक्टर उर्मिलेश का जीवन हो सकता है।
1: सुन रूपा जी, आज अपनी यादों में से आपने कुछ यादें हमारे श्रोताओं के साथ बांटी, और यकीनन ये पल हम सब के लिए अविस्मरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार की जयंती पर विशेष प्रस्तुति जो सही है बात वो बात हम बोलेंगे। प्रस्तुतकर्ता थे असीम सक्सेना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गाता चल।

इस कार्यक्रम में हमारे पास पहली फरमाइश आई है मोताला महाराज से। फरमाइश करने वाले हैं कुमकुम सुरलकर, विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर। और व्हाट्सएप पे हमारे पास अगली फरमाइश आई है अकारा हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गौहणकर, सुमित गौहणकर, कुमारी ध्वनि गौहणकर परी, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गौहणकर, सिद्धांत गौहणकर, अर्जुन गौहणकर टुक टुक, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहणकर राही, श्रीमती सरिता गौहणकर, प्रिंस एकांश गौहणकर। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है गंजडुडवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज़िश शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है हर्ष, दिलीप, उर्वशी, ज्योत्सना परमार, जी के परमार। ये फरमाइश है गांधीनगर गुजरात से। साथ ही साथ हमें इस गाने की फरमाइश लिखकर भेजी है अनूपपुर मध्य प्रदेश से। फरमाइश करने वाले हैं जयमंत्री केटव, अंजलि केटव, रुद्राणी केटव, कृष्णा केटव और चंचल केटव। और अगली फरमाइश आई है हमारे पास दमदन एयरपोर्ट कलकत्ता से, बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमनी तनुश्री गुप्ता और पिहारा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमार, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, आयुषी, अनुरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह, जय प्रकाश साव, वसंत लाल साव, हीरा मोती, पन्नालाल साव। और साथ ही साथ इस गीत की हमें फरमाइश लिखकर भेजी है कस्बा बराला जिला अंबाला से, रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरप्रीत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक संसोलिया, ग्राम

सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक संसोलिया, ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। सादुल शहर, राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, धनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रियांश प्रजापति, ग्राम कलापार सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरशिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पू भाटिया, जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमनी, उमा डोमनी और जानवी डोमनी, चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव, खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से प्रभा जटोलिया, तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू, सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा डोमेन, प्रमिला, आशा, निशा डोमेन और पुमा

छरोड़ा शेरवानी स्कूल डडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। बिहारपुर खंडवा से राकेश, पिंकी और दुर्गा। जलंधर से मीना कौर और संदीप कौर। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्र और कुमकुम मिश्र। बिहार एनक्लेव लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी, प्रकाशवीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी। रेशमा अंसारी, शकील अंसारी और रेहान अंसारी। तालुका निवासा खोपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवदास पोपलघट, हरिभाव भिड़वे। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शर्माली, मीना शर्माली। बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया जालंधर से आकाश अशोक जाटव। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनाज अंसारी अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुभान, अरजान, सुहान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सईमा नवाज, हसन अब्बास, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत और सादिया। गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है गंगोला दातागंज से इसहत खान, शायरा बेगम, रूहूब खान, सवरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आज़म खान।

उद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभयनंद आर्या और परमानंद आर्या, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, शिव मंदिर हकीकपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस, मऊनाथ भजन

कुछ कुछ होता है फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरिमणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। और अगली फरमाइश हमारे पास व्हाट्सएप पर आई है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। वरवट बाकाल बुलडांडा से नारायण हांगे, कमल हांगे, दिव्य हांगे और जय हांगे। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। गांव फ्रांसीसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। नंदुरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक।

बल्हार शाह से सूरज, प्राची और एकलव्य। छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। प्रसिद्ध कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र से सैयद भाई, आसिफा परवीन, मोहम्मद सैफ और अल्फिया सरफ। मेरठ कैंट दिग्दर्शन और कविता गौड़। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राज जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे कुमार, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षदा देशमुख। सुशीला देवी, सदानंद मंदुकर, कुमार गौरव मंदुरकर, डाबली रोड अकोला से। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, शेब खान, साइमा खान, पुत्रा मुस्तफ़ा और आफिया खान और शाहिद भाई और राहु भाई। पंकज वडोदरे, आर्य, प्रियंका और बीटी वडोदरे पुणे से। चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम वली जाटव। बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और आपार डिंगिया। बबलू ठेकेदार, शेख वजीर, सुहेल शेख, मुताला बिहार से। और साथ ही साथ इस गाने की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमन, वैष्णवी डोमन, चंचल डोवन, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवसारे। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाली प्रिया, दिशानी और निमिता आहूजा। याकूब आसमा फकीर, जेल रोड मथुरा से। सरफुद्दीन बेलदार, कल्लू बेलदार, यूसुफ आसमा फकीर, सोनम वली बेलदार। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। डब्लू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, छटिया पोखरा डुमराव से। रुड़की कैंट से राज वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिका वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राज। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामणि शेंडे, प्रतिभा गोंडाने। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से।

राजकुमार और झरना, जिला मुरादाबाद, ग्राम धोलापुर, उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। सरोजनी, जिला महोबा, बुलंद खंड, उत्तर प्रदेश से। उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बिगले। मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट बिजनौर से। मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर। ततरिंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती वर्मा, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। बल्लू निषाद, तरुणा यादव, सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, जेल रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। एयरपोर्ट वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्ते, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। रामगंज खंडवा से विजय, कविता, वैशाली, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवानी, शिवी सालोनी और पेंटर बाबू। कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी और पुष्पराब मरावी और ऋषभ मरावी। थाना डीन रामपुर से इकराम वाली प्रेमी, फैजान, एहसान, इमरान और आसिफ भाई। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। कमरुल्ला मुरादाबाद से अयूब खान, इरमगुड़िया, शुएब खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। राजद्वारा कोठी अफसराला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफ्सा, जीनत, अमान और शमा मिक्की। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश लिखकर हमें भेजी है।

कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है वर्निंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हिंगोली महाराज से शाहजी भोड़ के श्रीमती नंदा भोड़ के हनुमान भोड़ के और उत्तम जमदाड़े बिलाईगढ़ से देव डूकर तुषार और अजय देव सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक डिंगरिया विजय और अनुश्री डिंगरिया वीरमगांव सिटी से अजीता मेहरा और सुनीता मेहरा रवि रेजी डेंगी राजकोट से हेमा सुधा और संध्या सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गायत्री मल्होत्रा और विनोदपुरी जयपाल यादव अनारकली बाजार जंगराव

दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए साथियों सुनते हैं केके की आवाज़ में ओम शांति ओम फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में

देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश

0: भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत, एक

0: श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर

0: सचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरे ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह

मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल

रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव

ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकरूरी का भी फैसला किया है। 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि वो तकरूरी के लिए मुनासिब नाम तजवीज करे। मीटिंग के दौरान गोपाल नागरकोटे का नाम भी ट्रस्ट के खसूसी मदुईन की फहरिस्त से निकाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि पूरे मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में दिए गए जेवरात और दीगर कीमती अशिया को दिखाया और वजाहत की कि दान में

0: 2371 1106। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के अवाम की भारतीय हुकूमत से मदद की अपील खित्ते में जारी बहरान की गहराई को उजागर करती है। पीओजेके में एक महीने से ज्यादा वक्त से एहतजाज जारी है। एक सरकारी अहलकार ने बताया कि अपील की नौयत बिलखसूस इसलिए तशवीशनाक है कि पीओजेके के लोग भारत से दवाइयां और जरूरी गजाई अशिया तलब कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाकिस्तानी इदारों ने पिछले 20 दिन से खित्ते के लिए राशन और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। लोगों को गजाई साजो सामान की इंतहाई कमी का सामना है। इस नाकाबंदी का आगाज गजाई अशिया की सप्लाई की मौतली से हुआ और बाद में इसमें दवाइयां भी शामिल हो गईं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय हुकूमत से लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है। यह दरख्वास्त पाकिस्तानी फौज के उस हालिया फैसले के तनाजुर में सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर एहतजाज में कमी न आए तो गोलियां चलानी शुरू कर दी जाएं। इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंसानी हकूक के कौमी कमिश्नर ने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पत्थर की एक कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने के सबब 7 महाजिर मजदूरों की मुबैना हलाकत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी दो जबानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत व जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से कदा नजर मयारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक नए कोर्स को नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक के दूरदराज मकामात पर कल शदीद से शदीदतर बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुंबई और साहिली महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है।
2: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की रात तक इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। मावल तालुके के पटन गांव में आज एक घर पर मिट्टी के तोदे खिसकने से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से देवप्रिय भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: आला रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खां अली खामनई के जज्बे खाकी के जुलूस के लिए आज ईरान की राजधानी तेहरान में सौगवार सियाह लिबास में मलबूस थे। ईरानी परचम में लिपटे खामनई के जनाजे के साथ उनके मुतअद्दिद अहले खाना के जनाजे भी शामिल हैं जो इसराइल और अमरीका की जानिब से जंग के आगाज में 28 फरवरी को फजाई हमलों में मारे गए थे। उनके जज्बे खाकी को इमाम के रोजे से मुशाबहत करते हुए एक ट्रक पर रखा गया है। हुकाम ने सोख के दौरान सड़कों व मुल्की फजाई हदूद को बंद कर दिया है और रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात को मुअत्तल कर दिया है। यह सोख शनिचर से शुरू हुआ और जुमेरात तक जारी रहेगा। जनाब खामनई को मशहद में

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। कलाकार थे इंदु शर्मा, ढोलक संगतकर्ता थे रवि सागर, हारमोनियम पर थे सरन बाबू वाल्मीकि। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो रामपुर। इस कार्यक्रम में आइए देखते हैं हमारे पास पहली कॉल किसकी आई है। हेलो फ्रेंड्स।
1: हाँ जी हेलो।
0: हेलो हेलो रामपुर जी, हमारे कौन से साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: जिला अमरोहा में व्यक्ति फतेहपालगढ़ से बाहरी व्यक्ति बोल रहा हूँ।
0: बहरुल हसन जी, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं भाई साहब। उस टाइम पे गर्मी में गर्मी मोरा मजा लिए जा रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, और बताइए, काफी गर्मी है, कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं?
1: परिवार में देखिए ज्यादा से ज्यादा धूप से ज्यादा बचाया जा रहा है, खाने पीने में ज्यादा एहतियात बरती जा रही है।
0: हाँ ये तो है,
1: ज्यादा इस्तेमाल करे जा रहा है
0: क्योंकि गर्मी ज्यादा है और मतलब इस टाइम बेशुमार गर्मी है। एक तो
1: टाइम है और बारिश भी नहीं हुई है, तो बस बर्सात हो जाए गर्मी से कुछ राहत मिल जाए बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी, सभी को फायदा हो।
0: जी जी जी, क्योंकि गर्मी इस कदर है और सभी को गर्मी लग रही है, बच्चों को, बड़ों को, सबको गर्मी लग रही है। और मौसम भी कुछ इस तरह है कि हवा थोड़ी कम चल रही है और बरसात का मौसम है तो और ज़्यादा सफोकेशन होती है, तो हमें ज़्यादा ही थोड़ी गर्मी लगती है।
1: हाँ देखिए, इस टाइम बिल्कुल देखिए छत पे बैठे हुए आप नहीं तो बिल्कुल हवा चल रही है, बिल्कुल एक घुटन सी हो रही है, तो बरसात का और कुछ राहत मिल जाएगी। और इस टाइम कूलर और पंखे वो भी गर्म हवा फेंक रहे हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा मिल जाए तो अच्छा रहेगा सभी के लिए।
0: क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिनको क्या बोलते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो गर्मी में सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन इस वक्त सफोकेशन वाली जो भपके वाली गर्मी है वो काफ़ी परेशान करने वाली है।
1: जी बिल्कुल ठीक है
0: जी, तो आज आप जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: वो सभी को फायदा देगी।
0: जी जी, पेड़ पौधों की तो बहुत लगाने चाहिए। और क्या बोलते हैं, हमको याद ही तब आता है जब हम गर्मी से जूझते हैं या हमको जब किसी चीज़ की अहमियत मालूम होती है तो।
1: जी हाँ
0: जी जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: देखिए मैंने आपको दो तीन बताई थी, उसमें से एक को बताई थी राधा का संगम।
0: जी जी,
1: उसमें से मिले आपको तो वो सुना देना। और एक फूल बने अंगारे फिल्म बताए कोई कर मिले तो
0: हम आपको राधा के संगम से बोल राधा बोल सुनवाते हैं।
1: और कुछ नाम थे भाई साहब?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, दुतिया लीसा सिद्दीकी, सुल्तान सिद्दीकी, माविया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, याकिन अंसारी, सुदेश चौहान, अतीक तौफीक, दानिश सिद्दीकी, मेजपुर के अंसर, शिवराम प्रेम, साग रामपुर, माउदीन भाई रामपुर, दूलापुर मोड राजपुर, राशिद अंसारी, ये बात करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। और हेलो रामपुर में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद भाई।

0: हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर, नमस्कार सचिव।
0: नमस्कार, हमारे कौन से साथी बात कर रहे हैं?
1: सचिव बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। सर जी, और आपको नमस्कार।
0: नमस्कार
1: और आपके
0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम कॉल लगी है तो आकाशवाणी ने, आपको जानते हो गए, आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो
0: जी
1: 7 साल बची हैं, तो 2-10 साल बची हैं तो सेंचुरी हो जाएगी आकाशवाणी की, तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सेंचुरी हो और इसी तरह आपका प्यार और आपकी मोहब्बत हम तक पहुंचती रहे और आप इसी तरह आकाशवाणी से जुड़े रहें।
1: सर जी, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपके पहले जो मीडियम बैंड पे आपका जो पहले चैनल पकड़ता था रात को, तो दिन को भी, तो फरुखाबाद में खूब साफ पकड़ता था काफी साल पहले, जैसे 2008 में 9 में खूब साफ पकड़ता था। अब तो उसकी रेंज इतनी कम हो गई, पकड़ता ही नहीं है, रेडियो नहीं पकड़ता है, मोबाइल पे मुझे सुनना पड़ता है इसलिए।
0: अब तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और नई नई एप्लीकेशंस हैं, आप उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं।
1: नहीं,
0: और
1: उसी से
0: क्योंकि
1: मैं अपनी कैंसिल सुनता हूँ उसे, जैसे जो रेडियो में आवाज नहीं, जो रेडियो मजा आएगा तो मोबाइल पे नहीं है, जो रेडियो का मजा अलग है, जो रेडियो बजा के और 4 आदमी सुनो तो वो उसका आवाजी गाना की क्वालिटी, आवाज बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल पे वो बात नहीं है जो रेडियो मजा आता है,
0: जी जी
1: ये
0: बिल्कुल
1: बात है।
0: बिल्कुल, लेकिन अब 4 आदमी इकट्ठे करना, उनका टाइम लेना, वक्त की कीमत, हर कुछ है। इसी वजह से तो सुविधाएं दी गई हैं कि हम कहीं पर भी बैठे हों, किसी भी सिचुएशन में हों, कहीं पर भी हों, चाहे सफर में हों, खेत में हों या अपनी छत पर हों, कहीं पर भी हों तो मोबाइल के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं।
1: हम
0: रेडियो भी एक
1: मोबाइल पे
0: अच्छा,
1: ऐसा है सर, ये एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मोबाइल पे कहीं भी हो तो सुन सकते हैं, जैसे घर में जैसे बच्चे अच्छे आएंगे और जैसे मैडम वैडम आएंगे और जैसे मम्मी पापा आए तो सभी रेडियो सुने तो सबके साथ तो और आनंद रहता है। जैसे आप सबके साथ खाना भी खाना अच्छा लगता है, सबके साथ रेडियो भी सुनना अच्छा लगता है, बहुत बात सही है। लेकिन मोबाइल बजाओ तो मोबाइल वही जो मोबाइल में जो रेडियो में आवाज ज्यादा आती है, लेकिन मोबाइल में आवाज स्पीकर वगैरह छोटा होता है, इसलिए
0: जी जी जी जी मोबाइल के मुकाबले रेडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है।
1: हाँ, रेडियो देव, रेडियो पुराना चीज है, रेडियो रेडियो देव, रेडियो ऐसा है, मोबाइल की शरीकत रेडियो नहीं कर पाएगा और रेडियो
0: जी जी
1: शरीकत मोबाइल नहीं कर पाएगा, ये बात होती है।
0: दोनों की अपनी अपनी अलग अलग खूबियां हैं।
1: हाँ, और आपके आपको जैसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे एक नाम, एक माँ के नाम पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि गर्मी का गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है तो सर्दी पड़ती है, तो एक एक अपने माँ के नाम पर सभी व्यक्ति लगाना चाहिए तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पर्यावरण की बहुत जैसे दिक्कत आ रही है पर्यावरण में।
0: जी जी जी, हर इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने सतीश जी।
1: हाँ, और कहीं भी जैसे अभी तो बारिश हो रही है तो कहीं भी कचरा अचड़ा है तो अपना ठिका ना होने दें, तो कम पानी आनी है तो अपने साफ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि बीमारियां फैलती रहती हैं, तो डेंगू को कछुआ तो साफ सफाई रखना जरूरी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और जैसे अभी तो गर्मी बारिश हो रही है तो अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे गर्मी के टाइम पे जैसे अच्छी अच्छी रहते तो उनको पानी रखना अच्छे चाहिए, लेकिन ज्यादा तो बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो
1: पशुओं का ख्याल रखना चाहिए। और गाना सुनवा दीजिए सर जी, और गाना का बोल है, मूवी का नाम है 5 मिनट की रात, गाने बोला सावन का महीना है घटा से बरसा पा, क्योंकि सावन आने वाले हैं ढीन, तो उसे बढ़िया तरह से कांवर यात्रा ले जाते हैं, तो बढ़िया तरह कांवर यात्रा लेकर जाइए और बढ़िया अपने घर पे स्वयं बढ़िया तरह से आना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा सर।
0: शुक्रिया शुक्रिया।

0: हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, हमारे कौन से साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: सर मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: सतीश रघुवंशी जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम तो बढ़िया हैं सर जी, आप बताएं सर आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं, हम खैरियत से हैं और आकाशवाणी रामपुर परिवार में भी सब लोग खैरियत से हैं। आप बताइए, आपकी तरफ गर्मी कैसी हो रही है?
1: सर अभी हमारे इधर सर बारिश हो रही है सर जी, और बारिश का आनंद ले रहे हैं सर हम लोग।
0: बढ़िया बढ़िया, उस जगह पर बारिश हो रही है, अच्छी बात है। कि हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ भी बारिश हो, क्योंकि यहाँ पर काफी गर्मी है
1: जी।
0: तो सतीश जी क्या करते हैं आप?
1: सर मैं बिजली ऑफिस में हूँ सर, ऑपरेटिंग का काम करता हूँ, मतलब सभी के घरों उजाला रोशन करता हूँ सर।
0: बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि कभी भी बिजली का काम कीजिएगा तो पूरी सेफ्टी के साथ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग सेफ्टी के साथ काम नहीं करते हैं, वो काफी खतरनाक भी हो सकता है।
1: बिल्कुल सर, सर बरसात के दिनों में अधिकतर सर जैसे लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ सावधानी बरतना पड़ता है सर, जैसे हाथ में हैंडग्लव्स पहन के काम करते हैं, हमारे पैरों में जूते पहन के काम करते हैं सर, तो इससे करंट का डर नहीं रहता सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत होशियारी भी दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं होता है या ऐसा है वैसा है। हमेशा हमें पूरी सेफ्टी के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, हमारे पीछे हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप हैं, हम जिन लोगों की देखभाल करते हैं, हम जिन लोगों की जिम्मेदारी है, वो भी उनका भी हमारे ऊपर जिम्मा है।
1: जी बिल्कुल सर,
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ भी बारिश हो जल्द से जल्द। तो आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: सर मुझे फिल्म का नाम है सर आशिकी, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे, ये वाला गीत सुनना सर जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे, और हेलो रामपुर में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और सर कुछ दोस्तों का नाम दे सकते हैं सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: सर, सबसे पहले तो डेडिकेट आपको है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और हमारे मित्र हैं सर जी, गुरदन कड़ू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी, आत्मराम पाटिल जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, और जो भी लोग सर कार्यक्रम से जुड़े सर सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। थैंक यू सर।

0: हेलो रामपुर।
1: जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम। हमारी कौन सी साथी हम बात कर रही हैं?
1: मैं जिला राम या एक मिनट शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ।
0: शबनम अब्बासी जी,
1: जी
0: तो कैसे हैं आप?
1: सर, हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए। आप
0: हम भी बहुत ठीक हैं, बहुत खैरियत से हैं, और आकाशवाणी रामपुर परिवार में भी सब लोग बहुत ठीक हैं। आप बताइए, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: सर, घर परिवार में सब लोग अच्छे हैं और छत पर लेटे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ गूंज रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो शबनम जी, आप क्या करती हैं? कुछ करती हैं, जॉब वगैरह या फिर?
1: नहीं सर, मैं ब्यूटिशियन हूँ, बालन में काम करती हूँ, घर पे पार्लर हैगा और मम्मी के साथ और आरजे भी।
0: अच्छा, अच्छी बात है। तो अपना भी खर्च निकालती हैं और घर का भी हाथ बटाती हैं। अच्छा, अच्छी बात
1: सर,
0: है।
1: अच्छा सा काम चल रहा है, बस यही हुआ है, काम चलता रहे और कार्यक्रम चलते रहे, अच्छे और सीखते रहे और कॉल लगती रहे।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शबनम अब्बासी जी, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं आप आज?
1: सर, उससे पहले आपके लिए दो लाइनें हैं, कहना चाहती हूँ। एक चेहरा मेरी आंखों में आवाज हो गया, एक चेहरा मेरी आंखों में आवाज हो गया, उसे इतना पड़ा कि आपको याद हो गया।
0: बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा शेर। आप खुद लिखती हैं या फिर?
1: जी बस खुद लिखते हैं, बस तो क्या चाहिए।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
1: सर, फिल्म का नाम है रंग, गाने के बोले तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, और सर दो नाम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सब में है हाजी कफार का, शमा के शमा परवीन, सारू नूर अंसारी, शमा आप और सभी श्रोता सुनने वाले।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हेलो रामपुर में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो रामपुर,
1: हेलो रामपुर।
0: हेलो रामपुर, हमारे कौन से साथी बात कर रहे हैं?
1: मैं बात कर रहा हूँ।
0: दोबारा से बोलिएगा थोड़ी
1: मेरा
0: आवाज।
1: विश्वनगर डिस्ट्रिक्ट से तालुका है।
0: अच्छा, थोड़ा एक बार नाम और बताइएगा, हमें आवाज नहीं आई आपकी।
1: जी, मेरा नाम है अनूप कुमार भट्टाचार्य।
0: अनूप कुमार
1: जी,
0: कैसे हैं आप?
1: तो जी मतलब फिर भी अपने फोन उठा ही लिया, तो इसलिए
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: सपने राह में मुश्किल होंगे, पर दिल से जिए वो हर आसन आ सके, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। आप
1: मैंने मांग लिया, मैंने राह में फोन इन करना है, मतलब लग गए और अभी गाने से मैं। हेलो
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोले से जब दिली वादे दिली बजा करके गाने के और कुछ दूसरों को मैं क्या पहले त्रिपुरा से हमारे अविनाश जी है, प्रेम जी चक्रवर्ती जी है, आप सिंह साहब जी है, और लोकेंद्र वर्मा जी है, कुमार जी है, और है नाम है विजय सिंह लखरा जी है, और श्रीकांत जोशी जी है, और सुन रहे हो फिर भाई के लिए। तो चलिए यही से विराम दे दिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।

0: हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर,
0: हेलो, हमारे कौन से साथी बात कर रहे हैं?
1: सबसे पहले आपको प्यार भरा आदाब।
0: आदाब भाई साहब, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खैम से मोहम्मद दानिश सिद्दीकी बोल रहा हूँ।
0: दानिश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं साहब, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में श्रोताओं से बात कर रहे हो और उनका जो गीतों का अध्ययन और गीतों की फरमाइश है वो सुनकर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दानी जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: मौसम तो साहब बहुत गर्मी हो रही है और बस कुछ कह नहीं जा सकता, इस गर्मी में बहुत परेशान है।
0: तो बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं?
1: जी हाँ, बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं साहब। बारिश का मौसम तो इस टाइम बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रही।
0: तो रामपुर के लिए भी दुआ कर रहे हैं या सिर्फ मुरादाबाद के लिए दुआ कर रहे हैं?
1: नहीं सर, सबके लिए दुआ कर रहे हैं। सब बारिश अगर पड़े तो सब में बारिश हो जाए और सबको जो है बारिश हो जाएगी तो सबको जो है निजात मिल जाएगी, पशु पक्षी सबको जो है, खेती को भी बहुत राहत मिलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दानी जी, क्या करते हैं आप?
1: सर दूध का काम है, अपना दूध का काम करते हैं और आकाशवाणी रामपुर के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं जब मिलता है सुन लेते हैं। वैसे तो बहुत पुराने लिसनर हैं आकाशवाणी रामपुर के, पत्रों के माध्यम से, फोन इन के, ईमेल वगैरह सब शामिल होते रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त आपके जो पशु हैं उनको भी काफ़ी गर्मी की वजह से दिक्कत हो रही होगी?
1: जी सर, जब इंसानों को इतनी परेशानी है तो पशुओं तो सर उनसे ज़्यादा हो रही है।
0: चलिए, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपके रामपुर शहर में भी, मुरादाबाद शहर में भी और बरेली शहर में भी सब जगह बारिश हो और रहमत की बारिश हो।
1: जी जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है साजन, गीत के बोले हैं तुमसे मिलने की तमन्ना है, ये सुनवा देना और कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जैसे साथ में बड़े भाई साहब तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब, अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, ग्राम खेत टांडे से मोहम्मद कामिल, मकसूद भाई हैं, बहादुर सिंह सिद्दीकी हैं, राजा हुसैन हैं, मुकेश भाई हैं और ये कांटरूट लगावली से हैं, भाई अजीत कसाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, हमारे कौन से साथी बात कर रहे हैं?
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप।

0: और अच्छे दामों में बिकें।
1: जी सर बिल्कुल।
0: चलिए अच्छी बात है। तो आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।
0: जी जी
1: जी के बोले इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी
1: फरमाइश। नाम है सर?
0: जी जी बिल्कुल।
1: जयपाल यादव जी हैं, मकसूद हुसैन जी हैं और रफत भाई हैं और दानिश सिद्दीकी जी हैं और मेरे बड़े भाई साहब सोनू सुरेश राजपाल काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्मी मोहिनी ऋतिक बलबीर जी और हमारी वाइफ है शीतल कश्यप। इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मोबाइल ऐप के जरिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमसे और हम हमारा साथ देते रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए और हम भी आपसे इसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो रामपुर।
1: हाँ हेलो रामपुर।
0: हेलो राम
1: जी, आदाब।
0: आदाब, हमारे कौन से साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खैरटांड से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद कामिल जी, कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत ठीक हैं, बहुत खैरियत से हैं। आप बताइए, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: सब एकदम अच्छे हैं सर, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं सर।
0: बढ़िया बढ़िया। तो मोहम्मद कामिल जी, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं रेस्टोरेंट में, अपना गुड़गांव में रेस्टोरेंट चलाते हैं सर, घर पे रहता
0: हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो कामिल जी, दिल्ली जाते आते रहते होंगे फिर आप?
1: हाँ सर, घर आना जाना तो लगा रहता
0: है। अच्छा अच्छा, गर्मी कैसी है उधर?
1: सर गर्मी से तो बस कुछ पूछेगा सर।
0: बहुत ज़्यादा गर्मी है
1: जी सर, लोगों की लाइफ में इतनी गर्मी नहीं देखी, आप कैसे हैं?
0: हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बेखबर हो गए हैं पेड़ पौधों से और दूसरी चीज़ों से। हमने धरती का एक तरीके से जो सिस्टम है उसको भी हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके साथ भी, तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें कुछ तो गुस्सा दिखाएगी, कुछ तो हमारे लिए होगा।
1: जी सर, बदला ले रही
0: है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद कामिल जी, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आज आप?
1: सर एक फिल्म का नाम है कितने दूर कितने पास, इसका टाइटल सॉन्ग सुनवा देना सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और साथ में सुनने वाले हैं सर।
0: जी जी बिल्कुल।
1: मोहम्मद तालिब परवेज, बसी मकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीस रहमान, ये सब सुनना चाहेंगे सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया हेलो रामपुर में कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो रामपुर अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आप

0: के सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the